स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: men, all religions are good and equal. Only the followers of different religions quarrel with one another and thereby deny their respective religions. The essence of true religious teaching is that one should serve and befriend all. I learnt this in my mother's lap. Free India will be no Hindu Raj. It will be Indian Raj, based not on the majority of any religious sect or community, but on the representatives of the whole people, without distinction of religion. Hindi Anuvad, Gandhi Vichar. मैं सभी धर्मों के महान संतों और पैगंबरों में विश्वास करता हूँ. मैं ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता रहूँगा कि वह मुझे सहनशीलता दें, ताकि मैं उनके प्रति क्रोध न रखूँ जो मुझे गाली देते हैं, बल्कि उनका भी अहित ना सोचते हुए उनके ही हाथों मरने को तैयार रहूँ. मैं दावा करता हूँ कि हिंदुत्व सबका समावेश करने वाला है. धर्म की रक्षा उसके अनुयायियों के आचरण की पवित्रता एवं नेक कामों के द्वारा ही की जा सकती है. अन्य धर्मावलंबियों से झगड़ा करके कतई नहीं की जा सकती. भगवान से डरने वाले लोगों के लिए सब धर्म अच्छे और समान हैं. विभिन्न धर्मों के मानने वाले जब आपस में लड़ते हैं तो वे अपने अपने धर्म को ही नकारते हैं. सच्ची धार्मिक शिक्षा का सार यही है कि इंसान सबकी सेवा करें और सबके साथ मैत्री रखें. मैंने यह अपने माता की गोद में सीखा है. स्वतंत्र भारत हिंदू राज नहीं होगा, वह भारतीय राज होगा जो किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय के बहुमत पर आधारित नहीं होगा, अपितु धर्मों में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी लोगों के प्रतिवेशियों का राज होगा.
1: गंधर्व महाविद्यालय की प्रस्तुति बापू का प्रिय भजन.

0: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग
2: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: कोई मिल गया
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: क्या मेरी कसम
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय
6: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप जुड़ चुके हैं एक और नई सुबह में, एक और ताजगी सी भरी बेहतरीन सुबह में आपका आगाज करते हैं। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आपका अपना चमचमाता हुआ रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, RJ आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, और आज की सुबह में एक अलग ही ताजगी है, आज की सुबह में एक अलग ही खूबसूरती है। आज की सुबह हमें मानो जैसे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आज की सुबह सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपकी फेवरेट रेडियो स्टेशन और आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग, जहां मॉर्निंग गुड नहीं बिंदास होती है, RJ आनंद के साथ। आप सभी का एक बार फिर से पूरे दिल के साथ स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। आज बात करें तारीख की, तो 2 अक्टूबर की तारीख अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। आप सभी जानते हैं श्रोताओं, आज की तारीख कितनी महत्वपूर्ण है हमारे दिन के लिए, हमारे इतिहास के पन्नों के लिए और हमारे खूबसूरत से एक महान शख्सियत के लिए। लेकिन इससे पहले शुरुआत करेंगे आज अपने एक ब्यूटीफुल विचार के साथ कि कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकता, माफ़ करना तो ताकतवर की खूबी है। और ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ये कौन कहते हैं, चलिए उनके बारे में बताते हैं। नमस्कार, राम राम, सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से एक नई सुबह लेकर आई है आपके लिए, ढेर सारी उम्मीद और ढेर सारी खुशियाँ। और आज की सुबह एक ऐसे ही विचार के साथ शुरू किया है हमने अपने सफ़र का सिलसिला। आज है 2 अक्टूबर, यानी महात्मा गांधी जी की जयंती पर जो है आज हम उन्हें याद करेंगे, उन्हें शत शत नमन करेंगे और उनके खूब सारे विचार अपनी ज़िंदगी में उतारने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको 2 अक्टूबर की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज का दिन बहुत खास है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी भी है, ऑफकोर्स आज ऑफिशियल छुट्टी है, तो आप इंजॉय करने वाले हैं। चलिए बापूजी को याद करेंगे इस खूबसूरत से ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ, करेंगे आज के सफर की शुरुआत, दे दी हमें आजादी, बहुत ही खूबसूरत गाना। चलिए आशा ताई ने गाया है, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: एक बार फिर से श्रोताओं आप सभी का स्वागत करते हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी ठीक 9 बजे एक प्रोग्राम होने वाला है मुरादाबाद में। और देखिए, स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है वो कब हुई थी ये आपको पता है या नहीं? लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे से पता है और मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा थोड़ी सी देर में। लेकिन फिलहाल तो अभी प्रोग्राम का आगाज हुआ है श्रोताओं, और आपने बहुत ही खूबसूरत गीत अभी सुना है ना। आज था 2 अक्टूबर का दिन, और आज ही के दिन 2 महान लोगों का जन्म हुआ था श्रोताओं। आप सभी जानते हैं ऑफ कोर्स उनके बारे में। और आज आपसे ढेर सारी बात हो रही है। महात्मा गांधी जी के कुछ प्रमुख विचार कहते हैं, सत्य जीवन में हमेशा जो है इंसान को विजय बनाता है, और जब आप सत्य का साथ देते हैं तो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल होता है। अहिंसा, हिंसा के बजाय शांति और प्रेम से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सादगी बहुत ज़रूरी है जीवन में। ज़रूरत से ज़्यादा दिखावे की बजाय सरल जीवन जब आप जीते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही और बेहद ही खुशी का एहसास होता है। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, चाहे शरीर की हो या घर की। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छता का इंपॉर्टेंट, स्वच्छता का मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा शरीर स्वच्छ होगा, हमारा शरीर साफ होगा, तो हम हर एक चीज़ का सामना अच्छे से कर पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे, है ना। वैसे हमें अपने आसपास भी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम ये करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बापू को बहुत पसंद थी। आत्मनिर्भरता को सबसे पहले महत्व देना, अपने काम और अपनी ज़रूरतों के लिए स्वयं को सक्षम बनाने की कोशिश करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज बापू के कुछ महत्वपूर्ण विचार से जो है हम शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम की। हालांकि प्रोग्राम की शुरुआत तो हो ही चुकी है श्रोताओं, और मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि गांधी जी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आज उनकी तस्वीर पर भले ही फूल ना चढ़ाना, बल्कि उनके विचारों को आज अपने जीवन में आप ज़रूर उतारें। देखिए, सत्य, अहिंसा, सादगी या स्वच्छता, ये सब वो चीज़ें है ना जो मतलब कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज देकर जाती है। तो श्रोताओं, आप भी अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आज 2 अक्टूबर है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हमारे बापूजी का कौन सा विचार पसंद है ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा मैसेज करके 9837896896 पे। 8:37 का समय हो रहा है, हमारे स्टेशन क्लॉक में आप जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद पर आरजे आनंद के साथ। चलिए श्रोताओं, फिलहाल एक खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट पे और निकाल रहा हूँ मैं आज की सुबह, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। और देखिए, आज का दिन बहुत खूबसूरत है तो इस खूबसूरती पर हम बात करते रहेंगे। फिलहाल एक खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल गया है आज की मॉर्निंग, आगे बढ़ेंगे।
1: रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सीताराम।
0: क्या बात है, साथ में मिलकर गुनगुनाएंगे सारे लोग।
1: रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन।
0: 2 अक्टूबर की सुबह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की आप सभी को।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम में। तमाम सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। बाकी आप जहां भी जा रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंच रहे हैं, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर वर्षिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह प्रोग्राम में। लिखते हैं गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। और भी तमाम सारे संदेश लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, जरूर हम आपके संदेशों को शामिल करेंगे। अभी जरा सी देर में लौट कर आते हैं।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज की सुबह ये फ्राइडे की मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। जुमे का दिन है, 8:50 हो रहे हैं, 2 अक्टूबर की तारीख, और बहुत सारे लोग छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज की सुबह। बहुत ही अच्छी बात है जी, आप अपनी छुट्टियां मनाते रहिए। आगे बढ़ते हैं, फेस्टिव सीजन है, ढेर सारी चीजें आपको एक साथ अब मिलने वाली है। एंड अभी फिलहाल बात करते हैं आज की तारीख के बारे में। तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे आज के इतिहास के पन्नों की ओर और जानेंगे आज की तारीख क्यों खास है इतिहास के पन्नों के लिए।

चलिए साथियों एक नजर डाल लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों पर। तो सबसे पहले आपको बता दें भाई साहब, आज का दिन तमाम सारी बातों के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब जो है चर्चित है। काफी प्रमुख घटनाएं हैं जो आज के दिन को थोड़ा सा स्पेशल बना देती है। आपको बता दें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आज के दिन 1952 में, और बंबई अब जो है मुंबई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गठन हुआ था 1961 में आज के दिन। श्रोताओं और आपको बताते चलें आज ही के दिन जो है 1988 में कोरिया और सियोल में 24वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ था आज ही के दिन। एंड तमिलनाडु में मंडपम और पमन के बीच समुद्र ऊपर सबसे लंबा जो है उसके ऊपर पुल खोला गया था आज ही के दिन। श्रोताओं और आपको बताते चलें रूस के राष्ट्रपति जी ने जो है आज ही के दिन भारत की 4 दिवसीय यात्रा जो है पूरी की थी दिल्ली पहुँचकर सन 2000 में आज ही के दिन। श्रोताओं एंड इसके अलावा आपको बताते चलें उत्तर व दक्षिण कोरिया के बीच दूसरी शिखर बैठक संपन्न हुई थी सन 2007 में आज ही के दिन। और बात करें कि आज के दिन जन्मे कुछ खास लोगों की, तो सबसे पहले लवीना जी का नाम आज के दिन आता है। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी है, 1997 में जन्म हुआ इनका। एंड 1985 में एक ऐसा नाम जिनका नाम है भव्य लाल, जो नासा में भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, आज के दिन जन्म हुआ था इनका। श्रोताओं और आपको बता दें हंगपन दादा का जन्म हुआ अशोक चक्र से सम्मानित तो भारतीय सेना जाबाज सैनिक थे, 1979 में जन्म हुआ था आज के दिन। एंड प्रीतम जी का भी जन्म हुआ था 1974 में, भारत महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान, आज के दिन जन्म हुआ इनका। बाकी 1869 को जन्म हुआ आज ही के दिन हमारे बापू जी का, यस महात्मा गांधी जी का, जो भारत के राष्ट्रपिता आप सभी जानते हैं बापू जी को। और आगे बढ़े तो एक और खूबसूरत नाम, सन 1904 में जन्म हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी का, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, आज ही के दिन जन्म हुआ था। श्रोताओं और आज ही के दिन जन्म हुआ था बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री 1942 को आशा पारख जी का, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। यस आशा पारिख जी का जन्म हुआ था श्रोताओं आज के दिन। बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं एंड ऑफकोर्स आप सभी जानते हैं। खूबसूरत गीत जो है काफ़ी सारे हमें मिले हैं, और आज के दिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मनाई जाती हैं वो सब कुछ आपको पता लगेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप बस ट्यून इन रहिए। पता है कुछ नाम बड़े मुश्किल हो जाते हैं कभी कभी एंड बट जब आप उन्हें एक दो बार लेने का प्रयास करते हैं तो फिर वो क्लैरिटी के साथ भी आ जाते हैं ना। और पुरानी जो कलाकार थे उनकी तो बात ही अलग होती थी यार। 8:54 हो गए। हमारे साथ शिखा जुड़ चुकी है मानसरोवर कॉलोनी से, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। तारिक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड इसके बाद जुल्फी भाई का मैसेज पहुंचा है, 2 अक्टूबर की शुभकामनाएं आनंद जी, थैंक यू सो मच। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग माय नेम इज प्रिया, हाय प्रिया गुड मॉर्निंग। एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है अंकुर जी का, गुड मॉर्निंग, ये भी पहुंचाते हैं। 2 अक्टूबर की शुभकामनाएं तमाम सारे श्रोताओं ने साझा करी है। आप मुझे मैसेज करके बताइएगा हमारे जो महात्मा गांधी है, जो हमारे प्यारे बापू जी है, उनका पूरा नाम क्या था, कितने लोगों को पता है जरा आप मुझे बताइए मैसेज करके 9837896896। छोटा सा काम करना है, फटाफट से आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है हमारे बापू जी का पूरा नाम, किस किस को पता है जरा मैसेज करो।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: हाँ मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना कार्ब

0: लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: कोई मिल गया,
2: कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: वेलकम बैक है आप सभी का, यू आर लिसनिंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6। आनंद के साथ हैं आप, 9:02। कैप्टन स्मिथ के बारे में आज हर कोई बात कर रहा है, हर किसी को बहुत ही प्राउडली फील हो रहा है अपने उस इंडियन कैप्टन स्मिथ पर, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। और ऑफकोर्स आज की सुबह मुझे भी बात करनी चाहिए यार। कहते हैं ना, जब इंसान कुछ अच्छा काम कर जाता है तो मतलब ऐसा अंदर से घूसबम्स आते हैं यार। स्मिथ भाई के लिए मेरे अंदर से भी घूसबम्स आ रहे हैं। कैप्टन स्मिथ ने काम ही ऐसा किया है यार। थोड़ी देर में उनके बारे में जरूर बात करेंगे, और हर कोई बात कर रहा है तो डेफिनेटली हम डेफिनेटली बात करेंगे, और आपको जो है उनसे क्या सीखना चाहिए ये भी मैं बताने वाला हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। सुबह के 9 बज चुके हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं। आज की सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूँ महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, क्या आप लोगों को पता है? तो मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो आप, 9837896896 पे मैसेज कर सकते हो आज की सुबह, एंड आप मुझे शेयर कर सकते हो अपना ब्यूटीफुल आंसर। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद मी, नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। फिलहाल हो गई मेरे लास्ट आर की शुरुआत, जहां पर हम आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पर, और अभी आपके साथ हम जुड़ेंगे और तमाम सारी बातें आपको बताने वाला हूँ आज ही के दिन से जुड़ी। तो आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए, बस अभी तो मेरी आपकी शुरुआत है। आज 2 अक्टूबर है, बहुत कुछ खास है, पता लगेगा अभी आपको। लौट कर आ रहा हूँ जरा सी देर में, फिलहाल 9:03, घड़ी मिलाओ, ढेर सारे लिसनर जुड़ चुके हैं, लौट कर आ रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं। आप कहीं मत जाओ, सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते।

क्या बात है जी, चन्ना मेरिया ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना, ए दिल है मुश्किल का एक गाना। अब आप सुन रहे हैं आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। वेलकम बैक है लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्राइडे की सुबह है, वीकेंड वाली वाइब है, 2 अक्टूबर की तारीख है। बहुत सारे लोग निकल रहे हैं अपने अपने, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम से, तो आप जा ही रहे हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग तो छुट्टी सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन देखो मेरी भी छुट्टी नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आज छुट्टी नहीं है। लेकिन कोई नहीं यार, मैं तो आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, मेरी छुट्टी नहीं भी होगी तो चलेगा यार। वैसे कैप्टन स्मिथ के बारे में हर कोई बात कर रहा है, बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है। वो कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या बड़े बड़े लीडर्स हो, आज हर कोई ने सल्यूट कर रहा है। बिकॉज एक ऐसा भारतीय स्टार, जिसे हम कह सकते हैं ग्लोबल स्टार, आज ही बन गए हैं। मतलब इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया है ना, मतलब मेरे को उनके बारे में बात करते हुए भी घूस बम्स आ रहे हैं। इमेजिन एवरीबडी, आप तक को तो डेफिनेटली न्यूज़ पहुंची होगी कैप्टन स्मिथ के बारे में, कि उन्होंने कैसे इजराइल के 174 लोगों की जान बचाई है अपनी जान पर खेलकर। और ये एक भारतीय की सबसे खूबसूरत बात होती है यार। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज बड़े बड़े लीडर्स उनको सल्यूट कर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ को हम भी जो है बिग शाउट आउट देते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं अपने पूरे एफएम इंटायर फैमिली की ओर से। यार मतलब जब कहते हैं ना, जब दिल में जज्बा होता है, जब आपके अंदर जुनून होता है, और जब आप एक अच्छे मकसद से बाहर निकलते हो, तो यकीन मानिए आपका वो मकसद डेफिनेटली कामयाब होता है। बस वो वाली चीज़ है कि आपके अंदर वो जुनून, वो डेडिकेशन होना चाहिए। बस वो जुनून और वो जज्बा इनमें था, और इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है, उसके बाद हर कोई इन्हें सल्यूट कर रहा है। बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि अब वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से वापस अपने काम पे कमबैक करें, और हर कोई इनके बारे में आज बात कर रहा है। और बहुत ज़रूरी है बात करना कैप्टन स्मिथ के बारे में। अगर आप और जानना चाहते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू गो गूगल एंड चेक आउट ऑल द डिटेल्स, आपको सब कुछ वहाँ पता लगेगा। और आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे ना, आप भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि मतलब सच में यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने इनके बारे में, कल से हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है यार। 174 पीपल की जान बचाना। एफएम मुरादाबाद की तरफ से एक बिग शाउट आउट कैप्टन स्मिथ को। और ये गाना आज की सुबह

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां हल्का फुल्का जाम है या कहीं पर कोई ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन है, आप चाहते हैं कि रेडियो तक पहुंचे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर। कोई भी अपडेट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आपको लगता है कि डेफिनेटली एफएम पर जानी चाहिए, रेडियो पर जानी चाहिए, रेडियो के थ्रू हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, तो फटाफट आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ सच में वंडरफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म डंकी। 9:21 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बैक टू बैक और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, एंड तमाम सारे मैसेजेस बैक टू बैक मेरे पास पहुंच रहे हैं। आज मैंने आपसे पूछा था महात्मा गांधी जी का पूरा नाम कितने लोगों को पता है, एंड बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच इतने वंडरफुल मैसेज पहुँचाने के लिए, मतलब अप्रिशिएट करना तो बनता है यार, इतने वंडरफुल मैसेज। आपको बता दें आज दिल्ली में कई व्यापारी मनाएंगे नो यूपीआई डे, क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स पर जो है डाला जाएगा काला कपड़ा। एग्जैक्टली, जो उनका साउंड बॉक्स होता है उस पर बताया जा रहा है कि वो काला कपड़ा डालकर आज नो यूपीआई डे मनाने का जो है उन्होंने फैसला किया है। 2 अक्टूबर है आज। हाँ जी, 2000 रुपये से अधिक यूपीआई भुगतान पर जो है 15 अक्टूबर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। एंड अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं दिल्ली में जो आज के दिन कह रहे हैं कि भैया नो यूपीआई डे आज हम मनाएंगे, अपने क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स पर डालेंगे ब्लैक कपड़ा। ओ ओ, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, एक कचौड़ी दो समोसा, हमारा कैप्टन हो किनके जैसा, बिल्कुल कैप्टन स्मिथ के जैसा। आज हर कोई ये वाली रील पे बड़ी बातें हो रही हैं, ये वाली जो ऑफकोर्स आपके पास भी पहुंच गई होंगी ये रील, और काफी ट्रेंड में भी चल रही है ये लाइनें। हमने सोचा हम भी इसमें कुछ नया नया क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली वो जल्दी आप हमारी सोशल हैंडल पर देख पाएंगे। फिलहाल अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज डू फॉलो, आप जाके फॉलो कीजिए, मुझे भी कर सकते हैं, हमारी सोशल आईडी को भी डेफिनेटली फॉलो करिए, 9837896896 पे जाके आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे स्टूडियो का नंबर मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम आईडी एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से है। देखो व्हाट्सएप नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई अपडेट देना चाहते हैं, तो यही वो एक रास्ता है जहाँ जो है आपके दिल की बात सीधा हमारे दिल तक पहुँचेगी। एक बार रिपीट करता हूँ नंबर 9837896896। सोशल मीडिया पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे हमारा अकाउंट है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से हम आपको मिल जाएंगे। वहां पर भी बहुत सारी यूरो एक्टिविटीज एंड बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। देखिए भाई साहब, गांधी जी को याद करना ही काफ़ी नहीं है, क्या हम उनकी अहिंसा को या उनके खूबसूरत व्यवहार को अपने जीवन में उतार पाएंगे, मतलब उनके विचारों को उतारना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में ढेर सारी बातें करी हमने आपके साथ और बहुत सारे विचार मैंने आपके साथ साझा किए, तमाम सारे मैसेज मेरे पास पहुँचे हैं, चलिए इमिडिएटली शामिल करते हैं। हाई, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू डूइंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एंड एक वॉइस नोट मेरे पास पहुंचा है, सो इमिडिएटली जरा पहले ये वाला वॉइस नोट सुनते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जो अल्टीमेट मैसेज कर रहे हो ना,
1: मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग,
0: मैं बहुत
1: ही शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: अरे बिल्कुल, मोस्ट
1: गुलाब की पंखड़ियों सी महकती है आवाज मेरी, गुलाब की पंखड़ियों सी महकती है आवाज मेरी, अफरोज नाम के साथ चमकती है हर बात मेरी, रेडियो के इस सफर में जब भी जुड़ती हूँ आपसे, रेडियो के इस सफर में जब भी जुड़ती हूँ आपसे, दिल से निकली हर दुआ बन जाती है सौगात मेरी, दिल से निकली हर दुआ बन जाती है सौगात मेरी। शर्मा फ्रोज फातिमा, आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। थैंक यू सर,
0: थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है सुबह सुबह हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ अपनी प्यारी प्यारी शायरी बातें शेयर कर सकते हैं, जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। और चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अभी लौट कर आता हूँ, कुछ और खास बातें हैं जो आप तक पहुँचानी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी आप भी कुछ पहुँचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली 9837896896 अगेन नंबर रिपीट कर दिया है मैंने, इस नंबर को आप ज़रा सेव करिए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। फिलहाल आने वाला गाना बेनी दयाल की आवाज़, इट वॉज रियली वंडरफुल सॉन्ग, आई लव दिस ट्रैक फ्रॉम द फिल्म रेस 2। आप भी अपनी रेस बढ़ाओ, वॉल्यूम आई मीन म्यूजिक का, म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, इस म्यूजिक का तो मैं फैन हूँ यार, प्रीतम का म्यूजिक ऑफ कोर्स बहुत प्यारा होता है। बेनी दयाल, शर्मली खोलगड़े, एंजॉय करते हैं अमेजिंग वॉइस का कॉम्बिनेशन विद मी।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अजय आनंद इज बैक।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
6: हाँ जी भैया, आप मैं ये कह रहा था, आप जो मैसेज कर रहे हो ना उसके लिए थैंक यू सो मच, और आपके मैसेज को मैं डेफिनेटली अभी शामिल करने वाला हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, टिके रहिए। एंड यामी गौतम का एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना पोस्टर रिलीज हुआ है, एंड इट वॉज रियली अमेजिंग। सारे फैंस उनके बारे में बात कर रहे हैं, एंड क्या लुक है, व्हाट अ प्रीटी लुक। लौट के आने मैं बात करूंगा, एंड ऑफकोर्स रणवीर कपूर की अपकमिंग रामायण के बारे में हर कोई बात कर रहा है। And super excited, everybody, people, super excited. I am also excited, yaar. Diwali is coming soon, and of course, itne achhe occasion pe itna badhiya, you know, mahol banne wala hai. To matlab, I am so excited, yaar. बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, अभी लौट कर आ रहा हूँ। आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। अपने मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में कब से रामलीला स्टार्ट हो रही है आपको पता नहीं है? मैं बताता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, बस आप ऐसे जुड़े रहो, वॉल्यूम बढ़ाओ यार।

0: क्या बात है यार, घर मोरे परदेसिया। देखो भाई, मैं आपके घर डेफिनेटली आता हूँ, मंडे टू सैटरडे सुबह आता हूँ 8 बजे और चला जाता हूँ 10:30 बजे। हाय, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, 9:35 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आप सुन रहे हैं आनंद को। और देखो भाई साहब, थोड़ी सी कड़क अपडेट आपको बता देते हैं। मुरादाबाद और संभल में सबसे ज्यादा मेघा बरसे हैं इस बार। हां जी, एक रिपोर्ट में जो है पता लगा है कि भैया बारिश जो है ना, बारिश ने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। इतनी बारिश बरसी है कि हर तरफ जल भराव ही हो जाता है यार। लेकिन भैया अब तो हम कहना चाहते हैं कि बस अब बारिश और ना बरसे, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हैं सारे लोग। हाँ जी, लेकिन लेकिन लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि भैया देखो, हर जगह पर अलग अलग रिपोर्ट आती रहती है, बहुत सारी रिसर्च होती रहती है, और हम आपको सही रिसर्च और सही जानकारी पहुंचाते हैं आप तक, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। हाँ जी, फिलहाल मैं आपको बता दूं एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए मुरादाबाद से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहती है। एक बार फिर से बनी भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश की उपाध्यक्ष, यस मैं बात कर रहा हूँ किनकी, प्रिया अग्रवाल जी की। एक बार फिर से जो है वो बन चुकी हैं, उनको एक और बार जिम्मेदारी मिल चुकी है ढेर सारी चीज़ों को संभालने की। हाँ जी, महिला मोर्चा प्रदेश की उपाध्यक्ष बनी है प्रिया अग्रवाल जी, उनको ढेरों शुभकामनाएं। एंड आगे बढ़ते हैं, और भी ढेर सारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहती हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज पहुंचा है यहाँ पर। हाय, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम एब्सोल्युटली गुड यार। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी ऑफ कोर्स, इन्होंने मेरे को पूछा है कि आपके रेडियो पर आप जो गाने बजाते हो ये कहाँ से लेकर आते हो? भाई सब कुछ यहीं से रिसर्च करके लाते हैं भाई मेरे। वेल थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े हैं, और अभी हम यहाँ पर आपसे ढेर सारी बात कर ही रहे हैं, एंड आपको ढेर सारी बातें मैं अभी बताने वाला हूँ। और अच्छा, एक खास अपडेट जो आप तक डेफिनेटली पहुँचनी चाहिए, और वो मुझे लगता है कि मैं अभी आप तक पहुँचा ही रहा हूँ। बॉलीवुड की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं, शहर में क्या चल रहा है वो आपको बताते हैं, और तमाम सारी खबरों से रूबरू कराते हैं आपको, इसीलिए तो आपकी मॉर्निंग हो जाती है फिर क्या। गुड नी बाजी बिंदास। चलो भाई, अब आगे बढ़ने का समय हो गया है। आज बहुत सारे स्पेशल डेज मनाए जाते हैं, तो इमीडिएटली ज़रा उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज किड्स म्यूजिक डे, यानी छोटे बच्चे जो म्यूज़िक लवर होते हैं उनका दिन जो है आज मनाया जाता है। इसके अलावा आज एक और बहुत ही खूबसूरत डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड स्माइल डे जो है आज मनाया जाता है। और बहुत ज़रूरी है मुस्कुराना, अगर आप मुस्कुराते रहते हैं ज़िंदगी में तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते रहते हैं यार, बट अगर आप मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है यार। आज के दिन नेशनल बॉडी लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। कभी कभी ना लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं, आपको एनालाइज करते हैं, आपको स्कैन करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आप खाना कैसे खा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके लोग आपको जज करते हैं ना। तो फिलहाल हम किसी को जज तो नहीं कर रहे हैं जी, हम आपको बस ये बता रहे हैं कि आज ये वाला दिन भी मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को नेशनल बॉडी लैंग्वेज डे। और पता है बॉडी लैंग्वेज डे की भी क्लासेस होती हैं, बताइए यार। मतलब मैं जब पहली बार एक इवेंट में गया वहां पे मुझे पता लगा कि भैया ये भी होता है, मैं कहा ओ भाई। इसके अलावा आज कॉलेज रेडियो डे भी मनाया जाता है। बड़े बड़े कैंपस होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में भी अपना एक रेडियो स्टेशन होता है, तो वहाँ पे लोगों को कोर्सेज एंड रेडियो के बारे में ढेर सारी बातें बताई जाती हैं, तो आज का ये वाला दिन भी है। यस, आज बॉडी लैंग्वेज डे के साथ साथ आज जो है कॉलेज रेडियो डे भी मनाया जाता है। जिनके कॉलेज में रेडियो होता है ना, उनकी तो बात ही अलग होती है भाई साहब। मतलब अपने दिल की बात, अपने प्यार की बात, सब कुछ अपने स्टेशन में बैठ के कर रहे होते हैं। चलो जी, आज वर्ल्ड स्माइल डे पे ढेर सारी बधाइयां आपको देना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आप भी मतलब जो है मुस्कुराने की कोई वजह ढूंढते हैं तो आप बस आरजे आनंद को सुन लिया करो, यहाँ सारी वजहें आपको मिल जाएंगी एंड सब कुछ जो है फैंटास्टिक हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और ढेर सारे मैसेज आपके पहुंच रहे हैं मेरे पास, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे मुस्कुराने की वजह आप हो, मेरे मुस्कुराने की वजह। हैप्पी वर्ल्ड स्माइल डे, सही बात पे मुस्कुराओ यार। सो कोल्ड गुम तो लाइफ में आते जाते रहते हैं।
1: गुनगुना
0: आने वाला गाना
1: की वजह तुम हो,
0: ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ अपने सारे लिसनर्स को और अपने रेडियो को। आई लव माई जॉब।
1: पुराने की वजह तुम हो,
0: जरा सी देर में ये वाला गाना ऑफकोर्स आप तक पहुंचेगा। आजकल जैसे मार्केट में निकलता हूँ तरह तरह की मोमोज आ गई है देखने में, मतलब बड़ी टेस्टी लगती है सच में यार। मेरे साथ यही हाल हो जाता है, उनको देखते ही
1: मुश्किल कर दे
0: मन कर लेता है, चलो यार एक आध खा ही लो भाई, बार बार जी करता है यार मोमोज खाने का। वैसे ज्यादा मत खाया करो यार, अगर आपका जी कर रहा है आज छुट्टी है, चलो भाई बच्चों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, कुछ हैंग आउट करने जाते हैं, कुछ चिल करके आते हैं, तो बिल्कुल यार निकलो, जहां मर्जी है वहां जाओ। और मैं कह रहा हूँ मूंग की दाल जरूर खा के आओ यार, मजा आ जाएगा सुबह सुबह। अक्टूबर में छुट्टी लेने का, डांडिया नाइट एंजॉय करने का। चलो अभी लौट कर आता हूँ, फिर और कुछ बातें बताता हूँ। देखिए बहुत सारी अपडेट होती है, मेरे पास तो खूब सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बस कोशिश होती है कि समय रहते सब कुछ आपको फटाफट बताता जाऊँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे लिसनर्स गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं, आप सभी को भी वेरी गुड मॉर्निंग। Amazon, चलो भैया देखो बहुत सारे अभी आपके जो मैसेज आए हैं ना, वो उसके लिए मैं दिल से थैंक यू करता हूँ। और आप लोगों ने जो ये प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे मुझ तक संदेश पहुँचाए हैं, और ये जो आप अच्छी अच्छी बातें मुझ तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। और अभी फिलहाल एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक जिसको सुन के आपको भी मजा आ जाएगा, मतलब बहुत ही प्यारा गाना है। आई

0: यार मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, वापस आ गया हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा ज्यादा। मैंने आपसे कहा था मुझे व्हाट्सएप करके बताओ महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है। भाई बस कुछ ही मैसेज आए हैं, मुझे लग रहा है बाकी लोगों को पता ही नहीं है। क्या पता सबको है, बट वो मैसेज करने में आलस कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है पाजी तुसी आलस ना करो।
1: मेरी शब
0: हाँ मैसेज करो, बताओ मुझे जरा अपने जो बापू जी है, अपने प्यारे बापू जी, उनका पूरा नाम क्या था, मैसेज करो जरा।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
7: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
8: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.

0: बदलापुर का ट्रैक, वरुण धवन यामी गौतम की अमेजिंग मूवी यार, क्या बात है यार। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जो लोग आज अपनी छुट्टी मना रहे हैं उनको बहुत सारी बधाइयां। आगे बढ़ते हैं पाजी, आज 2 अक्टूबर की सुबह, ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, दिस इज फ्राइडे मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है। देखो कितनी बार मॉर्निंग ऐड हो जाता है, मॉर्निंग शो है यार भैया। उनको भी आज 2 अक्टूबर की ढेरों बधाइयां जो हर टाइम जिंदगी में मैनिफेस्ट करते रहते हैं, पैसा पैसा पैसा। तो आपकी जेब पर, आपकी तिजोरी पर बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा बने रहे, जो बापूजी है ना वो हमेशा बस आपके इर्द गिर्द रहे, है ना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आज एक कड़क क्वेश्चन का टाइम हो गया है, 9:52 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में, ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की मॉर्निंग, एंड इसी बात पर एक छोटा सा कड़क क्वेश्चन लीजिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आज की सुबह बस आइडेंटिफाई करना है आपको, ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है ये आपको मुझे बताना है। बहुत अच्छा डायलॉग है,
1: ड्राइडे स्टॉक लेके रखने का,
2: ड्राइडे काय को
0: ध्यान से सुनने का है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा डायलॉग।
1: टेंशन क्या ले सर, बर्थडे है भाई, 2 अक्टूबर का ना बापू का हैप्पी बर्थडे। किसका बापू? बापू बोले तो महात्मा गांधी, अरे वो नोट वाला, करेक्ट। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बीडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने, क्या डर के भाग गए सब लोग।
0: ये जो डायलॉग अभी आप सुन रहे हैं संजू बाबा का, कौन सी फिल्म का है अगर आपको पता है तो फटाफट मुझे मैसेज कर सकते हो आप 9837896896 पे, व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हो। आज की सुबह अभी जो आप स्क्रीन पे ये बढ़िया सा डायलॉग आप सुन रहे हैं, आपके रेडियो पर जो आपको सुनाई दे रहा है, मतलब ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है, यही आपसे मैं पूछ रहा हूँ आज की सुबह। एंड अगर आपको पता है सही जवाब तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर, आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं आज की मॉर्निंग। बहुत ही सिंपल डायलॉग है, एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत बारी सुना होगा ये, एंड ये मूवी भी डेफिनेटली आपने देखी होगी। अगर आपको पता चल गया है कौन सी फिल्म का डायलॉग है तो फटाफट से व्हाट्सएप करने का, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब उसको सेंड करना है मेरे नंबर पे 9837896896, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आज की सुबह। फिलहाल एक और ब्यूटीफुल नगमा, मतलब आई मीन ट्रैक आपके रेडियो पर एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है FM मुरादाबाद 89.6। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, आप एंजॉय करेंगे इसको मेरे साथ। और बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि डायलॉग हम आपके लिए दोबारा से प्ले कर दें तो अगेन एक बार और रिपीट कर देता हूँ, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, आपको आइडेंटिफाई करना है जो अभी डायलॉग चल रहा है, संजू बाबा का डायलॉग है, बहुत ही अच्छा और मस्त डायलॉग है। बस आपको मुझे यही बताना है कि पाजी जो डायलॉग अभी आप सुन रहे हैं ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है, ये आपको मुझे मैसेज करके बताना है फटाफट से 9837896896 पे। अच्छा आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, अगर आपके पास छोटा वाला फोन है तो आप उसमें मैसेज बॉक्स में जाके अपना नाम, अपने शहर का नाम,
1: बापू का है
0: अपना राइट आंसर।
1: किसका बापू? बापू बोले तो महात्मा गांधी, अरे वो नोट वाला, करेक्ट। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बीडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने, क्या डर के भाग गए सब लोग।
0: हाँ जी, आज का सवाल यही, जो अभी आप डायलॉग सुन रहे हैं आपके रेडियो पर ये कौन से फिल्म का है, अगर आपको पता है तो मुझे मैसेज कर सकते हो आप 9837896896। स्टूडियो का नंबर मैंने आपको बता दिया है, यही वो नंबर है जिस पे आपको मुझे अपने फटाफट विचार साझा करने हैं, मतलब आई मीन अपना राइट आंसर साझा करना है बॉस। एंड मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल ये गाना और आगे बढ़ते हैं।

0: morning. Last morning. Midas
1: morning. Midas. Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: कोई मिल गया
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop.

0: मुस्कुराने की वजह मेरी आप हो और आपके लिए वजह हम बन जाते हैं एवरी मॉर्निंग। आज है फ्राइडे, ये है बहुत ही बेहतरीन वाइब जो आपको मिल रही है। 2 अक्टूबर छुट्टी वाला दिन है, बहुत सारे लोग मूवी का प्लान करते हैं, तो बहुत सारे लोग बाहर हैंग आउट करने का प्लान करते हैं। वेल, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट, और अभी आप कहीं नहीं जा रहे मुझे पता है। चलो जी, फिलहाल मैं यहां से जाने वाला हूं। एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। 2 अक्टूबर की सुबह थी, आप आनंद के साथ ढेर सारी फुल ऑन वाइव एंजॉय कर रहे थे। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने यामी गौतम की एक फिल्म के बारे में बात करी थी। एंड आज फ्राइडे है, एंड एवरी फ्राइडे कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। 2 अक्टूबर को भी स्पेशल है। क्या स्पेशल है आज डेफिनेटली बताऊंगा। कौन कौन सी फिल्में ओटीटी पर आ रही हैं, Z5 पर आ रही है, कहाँ क्या आ रहा है, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म नई नवेली जो है वो काफ़ी ट्रेंड में है इस टाइम पे। एंड इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है, जिसमें अगर आप देखेंगे यामी गौतम को काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है नज़र आई है उनकी अदाएं। ओ माई गॉड, मतलब पहले से इतनी फैबुलस है। उनका एक क्रीम वाला ऐड आता था, नाम तो नहीं लूंगा नहीं तो वो प्रमोट हो जाएगा, वो हमें पैसे ना मिल रहे हैं यार। लेकिन उनकी वो क्रीम वाली एड में जब मैं देखता हूँ यामी यार क्या मतलब लगती है, मतलब क्या ब्यूटीफुल एक्टर है। इनकी फिल्म आई थी एक काबिल ऋतिक रोशन के साथ, अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें कमाल की एक्टिंग की है यामी गौतम ने। फिलहाल बात करते हैं बैक टू पॉइंट। हाँ जी, इनकी फिल्म यामी गौतम की एक नई नवेली दुल्हन का जो रोल है वो इसमें कर रही है। नई नवेली इनकी मूवी है जो अपकमिंग आने वाली है, जिसका फाइनली ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो गया है। और ट्रेलर जब आप देखेंगे आउट हो चुका है। इस ट्रेलर के अंदर जो है एक डायन भाभी वाला रोल कर रही है, काफ़ी अलग अंदाज में नजर आ रही है। इनफैक्ट ये डरावना माहौल भी करेगी, उसके साथ ही साथ ह्यूमर एंड क्रिएटिविटी और साथ में कॉमेडी का तड़का भी लगाने वाली है, और काफी इंटरटेनिंग मूवी होने वाली है। फिलहाल अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो यू कैन गो यूट्यूब एंड डू वॉच दिस ट्रेलर। नई नवेली फ्रॉम यामी गौतम बहुत ही अच्छी मुझे लग रही है। इसकी वाइब से लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग तो होने वाला है यार। फिलहाल अब बात कर लेते हैं आज फ्राइडे की। तो आज के दिन अजय पाजी की एक बहुत ही कमाल की फिल्म जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था, Drishyam 3। एग्जैक्टली, एंड इसका 3 वाला जो सेशन है मुझे लग रहा है वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, सिनेमाघरों में OTT पर जो है Drishyam 3 के बारे में बात हो रही है। और आपको बता दूं पूजा मेरी जान जैसी कुछ खास फिल्में सीरीज आज रिलीज हो रही हैं। Drishyam 3 आज जो है अजय देवगन की एक बहुत ही कमाल की मूवी जो है आ गई है सिनेमाघरों में। तो अगर अभी तक आप नहीं गए हैं तो डेफिनेटली जाओ यार। एंड मुझे लगता है कि ये जो मूवी है ना, इसका Part 1 हो या Part 2 हो या Part 3 हो, बहुत ही कमाल का। और अगर आप अजय देवगन के फैंस हैं तो आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप Drishyam 3 जाके आज वॉच कर सकते हैं। आज बताया जा रहा है कि भैया 2 अक्टूबर के चलते जो है फिल्म की ओपनिंग करीब 55 करोड़ रुपए की जो है आज लगाया जा रहा है कि अनुमान रहने वाला है, बाकी तो बाद में पता चली जाएगा। एंड इसके अलावा आप जो है OTT के बहुत बड़े शौकीन है तो यहाँ पर आप प्रेम कीटाणु मूवी जाके देख सकते हैं। बड़ा अजीब गरीब नाम, अपार शक्ति खुराना स्टारिंग बाय। एंड मुझे भी सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि प्रेम कीटाणु ये कैसा ही नाम है यार। वीर पहाड़िया और अपार शक्ति खुराना की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो आप देख सकते हैं जाके OTT पर, प्रेम कीटाणु। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी जिसके बारे में बात कर रहा था, पूजा मेरी जान, मृणाल ठाकुर एंड उमा कुरैशी की क्राइम ड्रामा फिल्म Z5 पर आ रही है भाई, तो डेफिनेटली आप इसके बारे में भी जो है और जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल ये कुछ मूवीज़ हैं जो आज आ रही हैं सिनेमाघरों में और OTT पर। चलो भाई, मैंने आपसे पूछा था एक बड़ा सिंपल सा सवाल जिसका आंसर आपने मेरे को करना था व्हाट्सएप करके 9837896896 पे। डायलॉग जो है वो कौन से फिल्म का है?
1: ये 2 अक्टूबर के
2: राइडे भाई, स्टॉक लेके रखने का क्या?
1: राइडे काय को?
2: कोई आइडिया नहीं भाई, मैं पता लगा दूंगा।
0: बहुत ही अच्छी फिल्म है यार।
2: 2 अक्टूबर का नाम बापू का हैप्पी बर्थडे।
1: किसका बापू?
2: बापू बोले तो महात्मा गांधी। अरे वो नोट वाला। करेक्ट भाई।
1: और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में?
2: भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बिडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था।
1: हाँ।
2: भाई अंग्रेजों की वाट लगा दी उसने।
1: क्या?
2: डर के भाग गए सब लोग, अपने को आजादी भी दिलाई।
0: चलो भाई जरा मैसेज करो, एंड मैं फिलहाल किसी एक लकी कॉलर को आजादी दिलाने वाला हूँ। आई मीन उनको कॉल करके उनकी सुबह को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड फैबुलस बनाएंगे। तो आप जल्दी से मुझे फोन कर सकते हो 9837896896 पे, अगर आपको पता लग गया है कौन से फिल्म का डायलॉग है। सो फटाफट मुझे मैसेज करो 9837896896 पे, आप मुझे इमीडिएटली बता सकते हो अपना राइट आंसर, और फिर हम एक लकी वन को अभी शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो, अगर आपने कर दिया है तो आप अपने फोन के जरा करीब आ जाना, क्योंकि एक किसी लकी वन को हो सकता है हम कॉल भी लगाएं। तो बस आप ऐसे ही ट्यून रहिए मेरे साथ और ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। एक बहुत ही अच्छा गाना, काफी ओल्ड टाइम फेवरेट है आपका, मेरा, हम सभी का फेवरेट गाना है ये। इसको सुन के आपको मजा आ जाएगा, एंड बहुत टाइम के बाद इस गाने को प्ले कर रहा हूं। शी डोंट नो, मिलन गावा, बहुत ही अच्छा ट्रैक। चलो वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय करो। म्यूजिक एमसी।

या कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेज बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई चीटिंग वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

बता दूं, इस गाने में मैं भी डांस करता था, मेरे को भी लगता था मैं भी जस्सी गिल का छोटा भाई हूं, लेकिन फिर मेरे से ना हो पाएगा वाली अंदर से आवाज आ गई और गाना भी सीखा था मैंने, अभी भूल गया यार। नेहा कक्कर हर किसी को देती है टक्कर, लेकिन मैंने बहुत डांस किया यार।

0: चलो जी एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गई है।
1: नाम है
0: हाय हाय हेलो हाय गुड मॉर्निंग। हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो
2: हेलो
0: हाय गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
0: आपके पीछे रेडियो तो नहीं चल रहा है?
2: नहीं।
0: ओके क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम सुहानी है।
0: सुहानी क्या बात है, हमारी भी सुबह सुहानी हो गई आपसे बात करके। सुहानी क्या करते हो, कहाँ रहते हो ये बताओ?
2: मैं शिवपुरी जिला मुरादाबाद में रहती हूँ।
0: शिवपुरी जिला मुरादाबाद, कहाँ पड़ता है वैसे शिवपुरी?
2: ये दलपतपुर की साइड।
0: अच्छा ओके ओके डन डन। अच्छा उधर रामपुर रोड राइट?
2: हाँ उधर की साइड।
0: ओके ओके तो अभी क्या चल रहा है, स्टडी कर रहे हो?
2: हाँ स्टडी है।
0: ओके अभी आप सो के उठे नहीं हो या उठ चुके हो?
2: उठ चुके हैं।
0: तो इतनी धीरी आवाज में बात कर रही हूँ, लग रहा है अभी आपकी शाम हो रही है, अभी सुबह हो रही है बच्चे। तो थोड़ी एनर्जी लानी चाहिए ना सुबह सुबह, मजा आना चाहिए, आवाज में जोश होना चाहिए। जैसे देखो आरजे आनंद सुबह सुबह रॉक मचाता है, मजा नहीं आता आपको?
2: बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ तो अपने अंदर भी थोड़ा जोश जगाओ। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में?
2: हाँ, सब
0: रेडियो सुन के कैसा लगता है ये बताओ पहले।
2: रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा मजा आता है?
2: हाँ बहुत मजा आता है।
0: मेरे को बताओ फिर क्या अच्छा लगता है आपको सुबह सुबह?
2: सुबह आपका शो अच्छा लगता है। फिर खुशी मैम का शो भी अच्छा लगता है।
0: अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलो अभी मैंने जो डायलॉग पूछा था वो कौन सी फिल्म का था पहले ये बताओ सुहानी, फटाफट से मैसेज किया है आपने, राइट आंसर दिया है।
2: ये डायलॉग मुन्ना भाई MBBS मूवी का है।
0: पक्का आपने मूवी देखी है?
2: मूवी नहीं देखी बट डायलॉग सुना है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो जी ताली बजाओ इसके लिए फिर इसी बात पे। चलो आपके लिए गाना भी चला रहा हूँ देखो मैं। वेरी नाइस कंग्रेचुलेशन सुहानी, बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह। लेकिन आपको मूवी देखनी चाहिए, ये पता है इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नहीं देखी है तो मुझे लगता है जरूर देखनी चाहिए, है ना?
2: हाँ देखेंगे।
0: चलो पक्का पक्का बाय। आज छुट्टी है? वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो फिर आपसे बात करके बहुत मजा आया और मुझे अच्छा लगा कि आप जो है आज विनर बनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ कहना चाहती हूँ चलते चलते?
2: मैं सभी से कहना चाहती हूँ रेडियो सुनते रहिए और आर्यन को भी सुनते रहिए।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सुबह सुबह क्या अच्छा लगता है आर्यन के शो में, एक चीज अगर तुम्हें बतानी हो तो?
2: मुझे आपका करेक्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है।
0: अरे वाह
2: इसका आंसर देना।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मेरी बातें अच्छी लगती है आपको, गलत बात?
2: अच्छी लगती है बातें।
0: चलो सुहानी बाय बाय।

चलो जी, आपका पीछा तो मैं वैसे भी नहीं कर रहा था यार, जा ही रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, बहुत टाइम हो गया, खुशी भी आ गई है, मेरा जाने का समय हो ही गया है, ऑलमोस्ट 10:18 हो गए हैं जी, बाकी की जिम्मेदारी उसकी है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, खिसकता हूँ, कल मिलूंगा आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे ढेर सारी बातों के साथ, एंड अभी के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रेडियो बजाते रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 32 किलोमीटर चालू का गाना छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपके लिए जोरदार तालियां, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, आप लोगों ने बहुत ही सही सही जवाब दिए हैं, ढेर सारे मैसेज मेरे पास आए हैं। और सबसे पहले वैसे मैं आपको बता दूं, सुहानी के बाद संकल्प रस्तोगी हमारे साथ जुड़े थे, हमने उनको भी कॉल किया था, बट संकल्प इज़ वेरी बिजी राइट नाउ, तो उनसे बात नहीं हो पाई, बट कंग्रेचुलेशन संकल्प मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, आपने पार्टिसिपेट किया, अमरोहा गेट से जुड़े थे मेरे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, और बाकी आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पर रोहन, प्रीति एंड सोनालिका का मैसेज पहुँचा था, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मंझोली से मेरे पास मैसेज आया था, इसके अलावा रामपुर दोराहा से मेरे पास व्हाट्सएप पहुँचा था, एंड ये मैसेज मेरे पास कश्मीर से पहुंचा था, इसके अलावा मेरे पास ये मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग, लगे रहो मुन्ना भाई का डायलॉग है, आनंद जी कैसे हालचाल हैं, हरिओम महेश्वरी जी जुड़े थे, साथ ही साथ मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद डॉक्टर सैयद शारिक अली महराज अंसारी ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, एंड अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक देवी हमारे साथ कांच रोड लदावली से हमारे साथ जुड़े आज की सुबह, गुलाम जलानी पाशा मेरे साथ जुड़े थे, एंड इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा था प्रियंका का, एंड अगला मैसेज मेरे पास आया था, गुड मॉर्निंग बाबू अंसारी, इरशाद अंसारी, शारिक अली हमारे साथ जुड़ रहे थे, मोहनदास इन्होंने वो गांधी जी का पूरा नाम बताया था, ओके जी थैंक यू सो मच, एंड आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से मेरे साथ जुड़ रही हैं सही जवाब के साथ, एक और संदेश पहुंचा था रिहाना का मेरे पास, राइट आंसर पहुंचा रहे हैं रिहाना, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, विकी सागर लिखते हैं रेडियो वाले आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग, और लिखते हैं आज ये फिल्म का जो डायलॉग था उस मूवी का ये नाम है, थैंक यू। इसके अलावा मेरे पास मैसेज आया था प्रतीका मुन्ना भाई MBBS राइट आंसर पहुंचाते हैं, मेरे पास मुंबई से मैसेज आ रहा है, एंड महात्मा गांधी जी का पूरा नाम इन्होंने बताया, और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर इन्होंने शत शत नमन भी बोला है, थैंक यू सो मच। ये चौधरी मुमताज आलम एंड इनके दोस्त राकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये हेलो गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं गोविंदपुर दुखुर्द से रजा हुसैन साहब, गुड मॉर्निंग आनंद जी कैसे हाल चाल है, हाउ यू, ये प्रताप सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रताप जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम डूइंग गुड, चमन लाल साहब जुड़ चुके हैं मेरे साथ, अफरोज फातिमा जुड़ चुकी है, एंड हमारे साथ गणेश प्रसाद हुसदार काठमांडू से जुड़े हैं, लिखते हैं बिंदास मॉर्निंग FM मुरादाबाद का एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जिसे सुनकर हमारा दिल खुशियों से भर जाता है, अरे वाह। इसके अलावा मेरे पास मैसेज आया है दुर्गेश सैनी जी का कल्याणपुर से, ये भी लिखते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, डॉक्टर वर्षिका जुड़ी है एंड और भी तमाम लोग जुड़ गए हैं, गाइस कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल लवली डे, आज है वर्ल्ड स्माइल डे, स्माइल करते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो।

टेक्स्ट मैसेज पहुंचा था अमरोहा से नेहा जी का, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। इसके अलावा मेरे पास मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग सर कैसे हालचाल है, जसवीर लाइन पार मंझोला से जुड़े थे। एंड हमारे पास ये मुनमुन का मैसेज पहुंचा था, अंजलि ने मुझे राइट आंसर दिया था टेक्स्ट मैसेज पर। और भी बहुत से लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। चलिए कल मिलते हैं, बाय, साइनिंग ऑफ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है आपके? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और बिल्कुल दोस्तों, मुस्कुराने की वजह तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एंड जब हम आपसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, और आपसे दिल से दिल का जो रिश्ता है ना, जब कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब हम आपसे यहाँ पर बातचीत करते हैं। मैगी जी की हाल चाल, दस दो मैनो फ्राइडे मॉर्निंग है एंड 2 अक्टूबर की तारीख है और वक्त हुआ है 10:27 10:27 राइट नाउ। स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है और खुशी यहाँ पर आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ गई है। ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और एवरीवन, हर सुबह एक नई शुरुआत है और ये फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि हफ्ता कैसा भी हो रहा हो, उसे एक खूबसूरत स्माइल, एक नई उम्मीद और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही कंप्लीट करना चाहिए। क्यों दोस्तों? अब देखिए, जो भी लाइफ में हो रहा है ना, उसको पीछे छोड़िए और लाइफ में आगे बढ़िए, मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी का हर पल ना बहुत कीमती है, बहुत स्पेशल है। तो मैं कहती हूँ कि इसको ना टेंशन में नहीं गंवाना है, इसको आप यूटिलाइज कीजिए, हैप्पी रहिए। और जिंदगी को स्माइल के साथ एंजॉय कीजिएगा, जिंदगी को जिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कुल मिलाकर कि जो होगा अच्छा होगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, फालतू की टेंशन को नहीं लेना है, उसको साइड में रखो एंड मेहनत करते रहो जो आप करना चाहते हैं, आपका जो भी ड्रीम है उसके लिए बस आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर एवरीवन। और हम भी आ चुके हैं अपनी मंजिल पर एंड अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये फ्राइडे मॉर्निंग है, आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं आज की सुबह। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और आज की सुबह स्पेशल तो है एवरीवन, क्या कुछ खास है बताती हूँ, अभी लौट कर आती हूँ कुछ अमेजिंग म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे कृषि के साथ, गुड मॉर्निंग।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

ऑफ कोर्स डियर लिसनर्स, जब खुशी आती है तो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आती है और खुशी चाहती है कि आप ऑलवेज हैप्पी रहें। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारी खुशियां। और दोस्तों, आज का दिन भी बहुत स्पेशल है। सबसे पहले मुझे बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप एवरीवन? अपना मैसेज हमें पहुंचाइएगा आज की सुबह। और हाँ, एक प्यारे अपने प्यारे से चेहरे पर ना प्यारे से स्माइल भी जरूर कीजिए। एंड मैं एवरी डे कहती हूँ ना आपसे कि आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना प्यारा लगता है, तो आप मुस्कुराने में ना कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और दोस्तों, आज तो बहुत ही अच्छा डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्माइल डे। हर साल 2 अक्टूबर के महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है और साल 2026 में 2026 में ये खूबसूरत दिन आज 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन का मकसद बहुत प्यारा है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना और दयालुता के छोटे छोटे कामों को बढ़ावा देना। इस साल का संदेश भी दिल को छू लेने वाला है एवरीवन। दयालुता का एक काम कीजिए और किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए। अब जरा सोचिए एवरीवन, इसके लिए आपको कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। किसी की से प्यार से बात कर लेना, किसी की मदद कर देना एंड किसी परेशान इंसान को थोड़ा हौसला देना या बस दिल से मुस्कुराकर किसी को देख लेना, कभी कभी ना इतनी सी बात भी किसी का पूरा दिन बेहतर कर देती है। तो मैं भी आपके दिन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आ चुकी हूँ और अब आप भी स्माइल के साथ अपने प्यारे प्यारे संदेश पहुंचा दीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 98।

3378968 96. और दोस्तों मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज वर्ल्ड स्माइल डे पर, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी छोटी सी बात है जो आपका मूड तुरंत ही अच्छा कर देती है और आपके चेहरे पर ना मुस्कान ले आती है। बताइएगा आपके मुस्कुराने की वजह क्या है। आप अपने संदेश हमें पहुंचाइए, तब तक यहाँ पर जो मैसेज आ चुके हैं ऑलरेडी मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह कश्मीर से मेहराजुद्दीन जी, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी आज की सुबह हमारे साथ जुड़े हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आज की मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, माय नेम इज सुहानी, शिवपुरी मुरादाबाद से, हैप्पी स्माइल डे एंड कीप स्माइलिंग, हैप्पी गांधी जयंती, सेम टू यू डियर। एंड उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर प्रियल का मैसेज आया है और ये न्यू मुरादाबाद से आज की सुबह मैसेज पहुँचा दी है।

पहले एक ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजिए, डेफिनेटली इस ट्रैक को हम सुनवाते हैं। और एवरीवन, आप भी मुझे आज की मॉर्निंग मैसेज पहुंचाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। अभी लौट कर आती हूँ खूबसूरत अपडेट के साथ, आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। फ्राइडे है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है ना, और छुट्टी भी है, तो आज घूमने का प्लान बन रहा है ना आपका? और कुछ तो घूमने के लिए निकल भी चुके हैं ऑन द वे कार में जो हमें सुन रहे हैं। कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ, और अभी वक्त हुआ है 10:53। और दोस्तों, आज ये 2 अक्टूबर और आज ये दिन हमारे देश के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ स्वच्छ भारत दिवस भी मना रहे हैं। दोस्तों, गांधी जी का जन्म हमें सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा जैसे मूल्यों की याद दिलाता है। 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है, और इसी अवसर पर स्वच्छता को लेकर भी देश भर में जागरूकता और जनभागीदारी के कार्यक्रम होते हैं। एंड अब जरा सोचिए एवरीवन, क्लीननेस सिर्फ सड़क या घर साफ रखने का नाम नहीं होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास की जगहों को साफ रखें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करें। और आज का दिन हमें एक खूबसूरत रिमाइंडर देता है कि बदलाव हमेशा किसी बड़े काम से नहीं आता, कभी कभी एक छोटी सी अच्छी आदत से भी शुरुआत होती है। तो आज आपसे मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ एवरीवन, आप अपने शहर, अपने मोहल्ले या अपने घर को साफ और सुंदर रखने के लिए कौन सी छोटी छोटी आदतें जो रोज आप अपनाते हैं, बताइएगा मुझे। आप अपने शहर, अपने मोहल्ले या फिर अपने घर को साफ और सुंदर रखने के लिए कौन सी छोटी सी आदतें रोज अपनाते हैं,

देखिए दोस्तों, स्वच्छ सोच, स्वच्छ आदत और स्वच्छ भारत, यही हमारी असली पॉजिटिविटी है। महात्मा गांधी जी की जयंती पर हम उन्हें शत नमन करते हैं। और दोस्तों, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती सेलिब्रेट की जाती है और उनका एक पॉपुलर नारा है। आप मुझे बताइए उनका पॉपुलर कौन सा नारा है। एंड मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम स्कूल जाया करते थे ना, स्कूल कॉलेज, तो हम ना जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, तो उनके पीछे ना लिखा होता था, बहुत ही खूबसूरत सा वो नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो बताइएगा एवरीवन, वो पॉपुलर नारा कौन सा है, आप मुझे बताइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और जब उस नारे को पढ़ते हैं तो काफी मोटिवेशन आता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो आप अपने संदेश हमें पहुंचाइएगा बिना किसी देरी के, और हम पहुंचाते हैं एक खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और मुझे पता है कि आप भी अपने मैसेजों का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, तो चलिए उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है उत्तराखंड से, हमें मैसेज पहुंचाते हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी।

जय श्री राम। गुड मॉर्निंग खुशी जी, दुर्गी सैनी जी का मैसेज हमारे पास आया है कल्याणपुर मुरादाबाद से। और हमारे पास तमाम मैसेज आ रहे हैं जिनको मैं आकर शामिल करूंगी। अभी सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। वंस अगेन गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप

एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं, तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

अहमदाबाद 89.6 पर एंड आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला शो और वक्त हुए हैं अभी 11:07 राइट नाउ। तो चलिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं आज के वेदर अपडेट पर। आज का तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और दिन में मौसम साफ रहने के साथ साथ अच्छी खासी धूप देखने को मिलेगी और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर करीब 33 डिग्री जबकि मिनिमम टेम्परेचर रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश के फिलहाल कोई आसार नहीं है। हल्की हवाओं के बीच सुबह और शाम मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है। और अब एक पॉजिटिव अपडेट, अक्टूबर की शुरुआत के साथ शहर में त्योहारों की तैयारियां और साफ सफाई के अभियान भी तेज हो रहे हैं। साथ ही पार्कों और सड़कों के सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिससे शहर का माहौल और बेहतर और खुशनुमा बन रहा है। तो मौसम हो या शहर की हलचल, जुड़े रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 के साथ। मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर आती रहूंगी अपनी लोकल शहर की अपडेट आप सभी के लिए। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था आज की सुबह, भूली तो नहीं है ना? नहीं भूले हैं, वेरी गुड। और बता देती हूँ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत आपके बैक टू बैक संदेश भी आ रहे हैं जिनको देखकर दिल बहुत खुश हो रहा है। देखिए दोस्तों, आज सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड स्माइल डे और मैंने कहा था कि देखिए स्माइल तो मैं आपको एवरी डे बोलती हूँ कि आप मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखिए, लेकिन आप है कि थोड़ी बहुत कंजूसी दिखाई देते हैं। जहाँ खुलकर मुस्कुराने का हंसने का मौका मिलता है ना, तो उस मौके को ना मिस मत कीजिएगा क्योंकि एवरीवन पता है दुख के ना, सैडनेस के ना हजार रीजन मिल जाते हैं लेकिन खुशियों के रीजन बहुत कम मिलते हैं। तो इसीलिए कहती हूँ जब मौका मिले ना तो मुस्कुरा लीजिएगा ठीक है। और आज की सुबह मैंने आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और मैंने आपसे पूछा था, उनका एक पॉपुलर डायलॉग भी है, पॉपुलर नारा है एंड आप मुझे बताइएगा वो प्रसिद्ध नारा कौन सा है। अपना सही जवाब हमें पहुंचाएगा हमारे ऑफिशियल नंबर पर। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896 98 3 98 8 96। जब तक आप अपने जवाब पहुंचाते हैं तब तक हम आपके खूबसूरत संदेशों को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे ही होंगे। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह हरिओम महेश्वरी जी मुरादाबाद लाइन पर से। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हमें मैसेज पहुंचाती हैं आज की सुबह नाजिया एंड सना, गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। अगला मैसेज हमारे पास यहां पर पहुंच रहा है गोविंदपुर खुर्द से रजा हुसैन जी का और ये भी कहते हैं, खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम खुशी मैम, कैसे हाल चाल है आपके? बबलू सैनी जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं मुंबई महाराष्ट्र से, कहते हैं आज गांधी जयंती की और आपको एफएम पूरे परिवार को सुनने वाले तमाम दोस्तों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये गाना सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी दंगल से, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। अच्छा फिल्म भी बहुत ही अच्छी थी। चलिए सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाएगा आज की मॉर्निंग।
हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आपकी दोस्त खुशी हाजिर हो गई है आपका अपना फेवरेट शो लेकर मॉर्निंग मसाला। और खूबसूरत बातें तो हो ही रही हैं, आपके संदेश भी यहाँ बैक टू बैक आ रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था एंड उस सवाल के भी बहुत सारे सही जवाब हमें पहुँचाए हैं हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं ने। दोस्तों, आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी श्रद्धा पूर्वक याद कर रहे हैं। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता है। उनका प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान, आज भी देश के सैनिकों और किसानों के सम्मान और योगदान की याद दिलाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की जिंदगी से खूबसूरत प्रेरणा मिलती है। एवरीवन, बड़ा पद मिल जाता जाना ही बड़ी बात नहीं है, उस पद पर रहते हुए अपने मूल्यों और जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहना भी उतना ही जरूरी है। उनकी सादगी और देश के प्रति डेडिकेशन आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। और दोस्तों, सादगी को अपनाइए, जिम्मेदारियां निभाइए और देश के प्रति अपना छोटा सा योगदान हमेशा याद रखिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। जय जवान जय किसान। यही शास्त्री जी का पॉपुलर नारा था और मैंने आपसे यही पूछा था और इसका सही जवाब हमें आज की सुबह पहुंचाया है दुर्गेश सैनी जी ने। जय जवान जय किसान, एग्जैक्टली राइट आंसर यही है। सो थैंक यू सो मच। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, ये संदेश हमें आज की सुबह यहाँ पर पहुँचाते हैं। हाय खुशी दी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग डियर, आप बताइएगा कैसी हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, कांट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुँचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, खुशी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर, उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छे ही होंगे। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज की सुबह अविनाश सतनागर सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। आई होप आपने ट्रैक इंजॉय किया होगा। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। उमेश प्रजापति हमें मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह लोधीपुर मुरादाबाद से। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसकी बात लौटकर खुशी आती है। एंड एक सवाल भी आपसे पूछने वाली है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो आप तैयार है ना?

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज की ये खबर सच में हर भारतीय के लिए चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल लाने वाली है। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला रिकवर तीरंदाजी टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। दोस्तों अंकिता कीर्ति कुमकुम की तिगड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। खास बात यह कि एशियन गेम्स की महिला रिकवर टीम इवेंट में भारत का ये पहला गोल्ड है, यानी बेटियों ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से देश का नाम रोशन करते हुए तिरंगे की शान बढ़ा दी है। तो इस शानदार खिलाड़ियों के लिए एक बार दिल से कहिए वेल डन गर्ल्स, आपने सच में देश को गर्व कराने का एक और खूबसूरत मौका दिया है। दोस्तों बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। और साथियों आज 2 अक्टूबर का दिन देश के लिए बेहद खास है। आज हम महात्मा गांधी जी के साथ साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मना रहे हैं। शास्त्री जी का जीवन सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की एक मिसाल रहा है। उनका दिया हुआ संदेश जय जवान जय किसान आज भी देश के जवानों और किसानों के सम्मान की आवाज है। और साथियों आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

और आज हम भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शशत नमन करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर कुछ खूबसूरत गीत भी हैं जो हम आप तक पहुँचाते हैं। आप सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और इस खूबसूरत गीत की रिक्वेस्ट हमें भेजी दुर्गेश सैनी जी ने।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

क्या बात है दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और सब अभी छुट्टी पर भी हैं, कुछ मेरी तरह ऑफिस भी आए हैं, तो कुछ अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं आज का टाइम। एंड वीकेंड भी स्टार्ट हो गया, फ्राइडे की मॉर्निंग है एंड अभी वक्त हुआ है 11:47 11:47 राइट नाउ। स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है एंड हमारे पास यहाँ पर बैक टू बैक खूबसूरत मैसेज भी आए हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल करना चाहूंगी। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है इटली से आसिफ जी का, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर, क्या हाल है आपका, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। एग्जैक्टली सर, सुबह सुबह आपका शो सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक तरफ अच्छी अच्छी अपडेट्स सुनने को मिल रही हैं तो वहीं एक से बढ़कर एक अच्छे गाने भी सुनने को मिल रहे हैं, सुबह की शुरुआत ही इतनी प्यारी हो गई है, बस शो सुनने का मजा ही आ रहा है। अरे वाह क्या बात है, शो सुनकर मजा आ रहा है, एंजॉय कीजिए आप सब। कहते हैं कि इतना अच्छा शो और इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत जानकारियां वे संगीत हम श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका और एफएम की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह मुस्कुराती रहिए और अपनी प्यारी आवाज़ से हम सबका सवेरा खुशनुमा बनाती रहिए। बिल्कुल सर, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी सुबह को सुहाना बनाया जाए, खुशनुमा बनाया जाए और आपको प्यारे से मुस्कुराने की वजह दी जाए। देखिए जब आप ऐसे प्यारे प्यारे से चेहरे पर, क्यूट चेहरे पर आपकी स्माइल आती है ना, तो खुशी और खुश हो जाती है और आप जो खूबसूरत संदेश पहुंचाते हैं हम उन्हें शामिल करते हैं, क्योंकि आप बड़े प्यार से टाइम निकाल कर हमें अपना मैसेज पहुंचाते हैं, हम समझ सकते हैं एवरीवन आपकी दिल की बातें, जज्बात आपकी। और अभी यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए तो मैं उनको भी शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अमरोहा से, माय नेम इज लीलिमा रानी एंड साथ में नेहा जी का मैसेज आया है, इल्मा रानी एंड नेहा जी का मैसेज हमारे पास आया है। खुशी मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ डियर, आप बताइएगा कैसे हाल चाल है आपके। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जसवीर जी लाइन पार मंझूला से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहां पर आया है, हुमा रानी जी का मैसेज हमारे पास आया है एंड ये भी हमें गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर, इतनी प्यारी प्यारी हमारी लिसनर्स हमें मैसेज पहुंचाती है ना, सच में दिल खुश हो जाता है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दौलत बाग मुरादाबाद से, अंसार हुसैन जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, विशिंग अ वेरी ब्यूटीफुल डे एंड कहते हैं कि बहुत गुड प्रोग्राम पेश करती हैं आप, थैंक यू, शुक्रिया आपका सर। और हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है यहाँ पर, मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, मैं आपको रोज रोज बोलती हूँ और आप रोज रोज भूल जाते हो, हाँ, और देखो कितनी गलत बात है ना, माना कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, एक्साइटमेंट रहता ही है जब हम अपना मैसेज पहुंचाते हैं, लेकिन आप अपना नाम कैसे भूल जाते हो, हाँ मैं रोज रोज याद कराती हूँ और हमारे श्रोता रोज रोज भूल जाते हैं, अब मुझे क्या करना होगा आपको याद दिलाने के लिए? अच्छा ऐसा क्या कीजिए आप, क्या करना है पता है आपको ना, रात को बादाम पानी में डीप करके, पानी में उनको रख देना है भिगो कर डीप करके, ठीक है, एंड अर्ली मॉर्निंग सुबह उसको खा लेना है, तो उससे ना आपकी जो मेमोरीज है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, फिर आप अपना नाम नहीं भूलेंगी। मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। हाय अमेजिंग ट्रैक, एंजॉय।

हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ। और एवरीवन, वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 12:01 और मेरे जाने का भी टाइम हो रहा है। बट जाते जाते एक अपडेट जो आप तक मुझे शेयर करनी है। एंड दोस्तों, इंडिया में जगह जगह पर नारे सुनने को मिल रहे हैं, एक कचौड़ी दो समोसा, इन मर्दों पर क्या भरोसा। और वही एक बहुत ही कह सकते हैं हम एक महान नायक हैं। और कहते भी है ना कि सच्चा नायक वो नहीं जो खतरे से बच जाए, बल्कि वह है जो खतरों में भी दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खड़े रहे। एंड दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, जब मौत सामने थी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने 180 जिंदगियों के लिए लड़ाई लड़ी। एंड हम बात कर रहे हैं कैप्टन स्मृत मच्छर जी के, सिर्फ पायलट नहीं साहस की मिसाल भी हैं। दोस्तों, कैप्टन स्मृत मच्छर जी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना को लेकर काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा और अर्चना आराधना की जा रही है। प्रार्थना की गई है बाबा विश्वनाथ से उनके स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ कर दें एंड पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है। और सच में दोस्तों, जिम्मेदारियां और हिम्मत की ये कहानी हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो एक बार जोरदार तालियां कैप्टन स्मृत के लिए।

0: और दोस्तों आप मुझे भी दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपना अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और स्वच्छता का भी ध्यान रखिएगा। बहुत जरूरी है, जब आप अपने आस पास साफ सफाई रखेंगे तभी आप स्वस्थ भी रह पाएंगे। एंड सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और स्माइल करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, कीप स्माइलिंग।
1: कोई मिल गया,
2: कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
6: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: आज हम कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास अतिथि डॉक्टर ए के सिंह, ये जंबल फर्टिलाइजर्स में वरिष्ठ प्रबंधक है। नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्कार, और स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार दिव्या जी, और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे उनको नमस्कार।
1: सर हमारे साथ आज शामिल है कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम का जो खास विषय है वो भी हम आपको बताते हैं। आज हम कार्यक्रम में जो खास बातें करने जा रहे हैं वो है खरीफ का समापन व रबी का आरंभ। स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो हम दो तरह के क्रॉप प्लांटेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक रबी क्रॉप और एक खरीफ क्रॉप। बच्चों को पढ़ाते समय तो हमने भी कई बार रट्टा लगाया कि खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, किन तरह के फसलों को हम लगाते हैं, और ये हमसे ज्यादा हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर जानते होंगे। और आने वाले समय में ऐसे जितने भी हमारे सहयोगी हैं जो अब खेती किसानी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे या खेती किसानी बेहतर करना चाहेंगे, उनके लिए भी कुछ अहम जानकारी हो सकती है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे कार्यक्रम के से पहले कुछ अहम जानकारी के साथ। सर से बातचीत जब हो रही थी तो फिर सर ने हमें PMKSK योजना के बारे में बताया था, जो केंद्र सरकार और उर्वरक मंत्रालय की ओर से ये पॉलिसी चलाई जा रही है किसान भाई और किसान बहनों के बेहतर खेती किसानी प्रक्रिया के लिए। तो हम जानना चाहेंगे इस योजना के द्वारा किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
2: जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है, और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है, और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं, और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो PMKSK है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब यह है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हरेक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है। ये सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: इसी के साथ हम कार्यक्रम में अब शामिल करना चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक खास मैसेज को, जो उन्होंने उर्वरक उपयोग सलाह के बारे में कुछ बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की है। चलिए उसे सुनते हैं और फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे हमारी आज के विषय पर चर्चा के साथ।
2: असल में जो भी हमारे उर्वरक है उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च न हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमको, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीदते, उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल।
3: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती किसानी, और आज के कार्यक्रम का खास विषय है खरीफ का समापन और रबी का आरंभ। तो सर, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों के स्कूल बुक्स के बारे में चर्चा की थी हमने, कि किस तरीके से बच्चों को पहले रट्टा लगाया जाता था क्रॉप रोटेशन, क्रॉप प्लांटेशन के बारे में, खरीफ रबी रबी फसलों के बारे में। तो ये खरीफ फसल के समापन से हम क्या कहना चाह रहे हैं, समापन होता क्या?
2: बिल्कुल, जैसे अभी जो सीजन चल रहा है हमारा वो खरीफ का चल रहा है
1: जी।
2: खरीफ मतलब ये है कि जो फसलें हमने जून जुलाई में लगाई थी वो हमारे पकाव की तरफ आ रही है धीरे धीरे, और वो सितंबर का आखिर हम मान लें या अक्टूबर में मान लें या ज्यादा से ज्यादा नवंबर के पहले सप्ताह तक उनकी कटाई होती है। कटाई का मतलब ये है कि जो उनकी उपज है वो तैयार हो जाती है, अनाज पक जाता है, फिर हम उसकी कटाई करते हैं और फिर उसको अपने घर लाते हैं, फिर आगे उसके विक्रय का प्रबंध करते हैं या जो उपयोग के लिए उसको हम रखते हैं। अब उससे तात्पर्य ये है कि हमने सारे चार महीने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन इस वक्त पर जब हमें उपज लेके आनी है उस समय अगर हमारी सावधानी नहीं रही, उसका समापन अगर हमने अच्छे से नहीं किया तो जो हमारा अहम उद्देश्य था वो हमारा उससे हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो समापन का अर्थ मेरा यही है कि हम सारी क्रियाओं को सोच समझकर और एक अच्छी प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग से अर्थ मेरा ये है कि हम ये देखें कि भाई इस समय पर हमारी फसल तैयार होगी तो इसको काटने के लिए मुझे क्या क्या संसाधन चाहिए
1: जी।
2: क्या क्या संसाधन से अर्थ ये है कि कटाई की व्यवस्था करनी है, लेबर चाहिए या कंबाइन से कराना है, जो भी कुछ है। फिर जब वो कटाई होगी तो वो आगे का अरेंजमेंट है, वो सारी चीज तो मतलब ये है कि फिर उसके विक्रय से संबंधित है कि अगर उसको बेचना है तो कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है। तो ये सारी तैयारियां अगर हम एडवांस में करते हैं, जैसे कि हमें होता है ना कि हमारा बच्चे ने अब आठवीं कर ली, अब इसकी हाई स्कूल में एडमिशन होना है, इसका नाइन्थ में एडमिशन होना है, गाँव में स्कूल हमारा आठवीं तक है, तो हम तैयारी करते कौन से स्कूल में इसको भेजना है, कौन सा पास है, अगर दूर है तो वो यहाँ से रोज जाएगा, जाएगा तो कैसे जाएगा, या साइकिल लेनी पड़ेगी या यहाँ से थोड़ी दूर पैदल जाएगा, वहां से उसको कोई सवारी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, तो ये सारी व्यवस्था हम करते हैं। अगर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल हमारे पास है या खरीदनी है, या अगर वो किसी और साधन जाता है तो उसका किराया लगेगा, उसका कितना खर्चा होगा महीने का, सुबह जाएगा शाम तक रहेगा, क्या वो खाना लेके जाएगा, सुबह उसके लिए भोजन बना दिया जाएगा, इतने बजे लौट के आएगा, तो ये सारी व्यवस्था है। उस स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है, उसकी व्यवस्था करनी है, तो ये सब तैयारियां हम एडवांस में सोच के रखते हैं। और अगर वो हमें चीजें चाहिए तो कहाँ कहाँ से मिलेंगी, क्या रेट होगा उसका, है ना, ये जो तैयारियां है वो हर जीवन के हर जो मतलब पहलू के साथ है। तो एक जो समापन की तैयारी, समापन में ये है कि भाई अब जैसे ये आठवां कर लिया है तो अब ये आठवां इसका होने वाला है, कितने नंबर इसको चाहिए, कैसा क्या चाहिए
1: जी,
2: आगे के लिए इसने क्या सोचा है, तो ये समापन की होगी, फिर उसके बाद हम आगे आ गए।
1: सर, जिस तरीके से हम रबी क्रॉप्स और खरीफ ये जो फसल है इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें एक तो जिस तरीके के फसल उगाते हैं उसमें भी फर्क देखने को मिलता है। उसके हिसाब से आप जिन तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं उन तैयारियों में भी फर्क होगा। तो क्या उस हिसाब से मिट्टी को तैयार करते हैं या फिर फसल के हिसाब से बीज लेकर आते हैं या फिर मौसम का उसमें कोई असर देखने को मिलता है?
2: जैसे कि अभी जैसे खरीफ, तो खरीफ का तो समापन है
1: जी।
2: समापन से अर्थ ये है कि हमें उपज अपने घर लानी, तो इसमें तो कोई आगे के लिए हमें व्यवस्था नहीं करनी है, लेकिन जो अब तक हमने व्यवस्था करी थी उसका जो मतलब परिणाम है वो हमें लाना है। अब उसमें मेन चीज क्या है कि जैसे हमें कटाई करनी है तो कटाई के साधन हमारे पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कटाई शुरू करी बीच तक हमारे साधन रहे उसके बाद फिर लेबर नहीं मिली या कंबाइन की व्यवस्था नहीं हो पाई, मतलब एक साथ हमारे काम होते चले जाए और एक बार में वो चीजें फ्लोलेसली जो मतलब जो निवट जाए, उसके लिए आपको लेगर को आगे से बोलना है, उसके लिए इक्विपमेंट आपको चाहिए या कंबाइन को कहना है तो कंबाइन वाले को तय करने के लिए, क्योंकि उसके पास सभी लोग आ रहे होंगे तो उसको तय करने के लिए कुछ एडवांस देना है, कितना देना है, क्या रेट जो करना है, आपने अपनी तरफ से बोली डेट, वो कुछ और डेट आपको चाहता है देना, वो समायोजन करना पड़ेगा। फिर आप कटाई करके उपज लेके आ रहे हैं तो एक तरीका ये होता है कि वहां से आपने काटा और सीधा मंडी ले गए, तो साधारण है, आपने काटा ट्रॉली में डाला मंडी ले गए, मंडी में आपने उसको बेच दिया। मंडी में बेचना है तो उस समय पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर मौसम सही है, खुला है, कोई दिक्कत नहीं, आप बेच के आ सकते हैं, एक दिन रुक भी सकते हैं, लेकिन अगर मौसम में उतार चढ़ाव है तो जो आप ट्रॉलियों से उससे लेके जा रहे हैं उसको त्रिपाल से ढक के ले जाना है,
1: कवर करके लेके जाना।
2: आप जब मंडी में लेके जा रहे हैं तो वहां कौन सी दुकान से आपका कॉन्टेक्ट है, आपको रेट का पता करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रेट चल रहे हैं, कैसे है, तो ये सारी तैयारियां। और फिर पूछते रहिए कि जैसे अभी कुछ फसलें होती हैं वो थोड़ी एडवांस में आ जाती हैं, उसका इस रेट में बिका, उसका इस रेट में किया, अभी रेट क्या चल रहे हैं, मंडी भाव क्या है, तो ये सारी चीजें समापन से पहले आपकी अगर तैयार होंगी तो आप बेहतर ढंग से चीजों को संभाल पाएंगे और ज्यादा फायदा ले पाएंगे। दूसरा, अगर आप घर लेके आ रहे हैं तो वहां आपकी भंडारण की व्यवस्था है, क्योंकि जो इस समय अनाज लेके आ रहे हैं उसमें नमी ज्यादा होती है, तो पहले तो उसको सुखाना है, सुखा के फिर भंडारण करना है। अगर नमी वाला ही आपने ज्यादा स्टोर कर दिया कहीं पे तो उसमें फफूंद लग सकती है, वो खराब हो सकता है अनाज, तो सुखाना फिर भंडारण करना। भंडारण की भी जो जो जो स्थान है वो साफ सुथरा हो, उसमें नमी नहीं हो, जिससे कि अगर हम कुछ लंबे समय के उसके लिए स्टोर भी कर रहे हैं तो वहां पे कीड़े ना लगे, इंसेक्ट न लगे जो कि आपकी उपज को खराब कर सके। तो ये सारी तैयारियां जो है ये समापन की तैयारियां। अब समापन में आपने सपोज आपने जो मतलब जो विक्रय कर रहे हो, विक्रय के बाद कितना आपके पास पैसा आने वाला है उसकी भी आपको अरेंजमेंट करनी है कि भाई ये मेरे पास इतना आया, इसमें से इतना मैं अगली फसल के लिए रख रहा हूँ, इतना मेरे और कुछ खर्चे हैं उसके लिए रख रहा हूँ, बाकी है मैं बैंक में रख सकता हूँ जिसका मुझे कुछ ब्याज मिल सकता है, कुछ आप और कुछ कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, कुछ आपने हो सकता है कि कुछ उधार लिया हो उसका आपको आपको पेमेंट करना है। तो ये समापन से अर्थ ये है कि जो अब तक हमने प्रयास किए, मेहनत की, उसका जो परिणाम आने वाला है उसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। दूसरा, जब आपकी फसल की कटाई होती है तो फसल अवशेषों का सही प्रबंधन आपको करना है, हल से आपको खेत को तैयार कर देना है, तो ये सारी चीजें समापन से रिलेटेड है।
1: खरीफ फसल के समापन के समय आपने इतने जो तैयारियां है इसके बारे में बताया, तो ऐसे कौन से फसल है खरीफ सीजन में जो हम लगाते हैं और समापन के समय हमें अलग से उनके लिए स्पेसिफिकली कोई तैयारी करनी होगी?
2: अब जैसे कि अगर खरीफ में हम देखें तो धान है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, उड़द है, मूंग है, ये सारी फसलें हमारे करीब करीब क्षेत्र में होती है। हर एक की अलग अलग तैयारी होती है, जैसे कि अगर आपको धान काटना है उसका अलग तरह का उसका तरीका, उसका अलग तरह का बाजार है। मूंग काटनी है, उड़द काटनी है, उसका एक अलग तरीका है, उसको काटना है, उसका थ्रेसिंग करनी है तो हाथ से करी जाती है या उससे या बैल से करी जाती है, या कुछ ऐसे थ्रेसर आते हैं जो कि उसको दाना टूटता नहीं है। तो सबका, अब जैसे मूंगफली है, मूंगफली की खुदाई करनी है आपको, तो खोदना है, फिर उसको काटना है और फिर उसको सुखाना है। उसका जो आपने कितनी मात्रा में लगाई है, बेचने के लिए लगाई है या खाने के लिए लगाई है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी लगाई है तो हो सकता है कोई कोई आसपास का ही थोड़ा थोड़ा करके ले जाए तो वो आप व्यवस्था कर सकते हैं। मक्का है, मक्का का भुट्टा होता है, भुट्टा काट के आपको अलग करना है, उसकी एक अलग तरह से तैयारी, उसके जो फसल अवशेष है वो चारे के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते होते हैं और उसको उनको इकट्ठा भी किया जाता है, ठंड में चारे के रूप में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन जो खेती करते हैं वो समझते हैं इसका इसका कैसे प्रबंधन करना है। लेकिन यही है कि मुख्य चीज जो है कि उससे जो आपको लाभ या आमदनी होनी चाहिए थी वो पूरी हो, उसका पूरा से।
1: खरीफ फसलों के बारे में आपने बहुत सी बातें हमें बताई, ये चर्चा चल रही है किस तरीके से खरीफ क्रॉप्स और जो हमारे खरीफ फसल है और रबी फसल जो है उनमें किस तरह के मुख्य आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिर इनकी तैयारी में भी आपको।
2: जी, खरीफ फसल है वो आमतौर पर जून से लेकर या जुलाई का महीना ले लें उससे लेकर सितंबर या अक्टूबर के आखिर तक तैयार। रबी की जो फसलें हैं उनकी जो तैयारी है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर और फिर जो नवंबर तक उसकी बिजाई बिजाई के सारे काम हो जाते हैं। तो खरीफ हम ये कह दें कि जब जो समय होता है उस समय पर हम खरीफ करते हैं और जब धीरे धीरे ठंड की ओर हम जा रहे होते हैं तो उसको हम रबी। शुरुआत में ठंड उठनी शुरू होती है, बीच में काफी होती है, फिर आखिर पका की
1: रबी फसलों की शुरुआत करके आरंभ होता है, तो उसका महत्व क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसका?
2: हाँ, रबी फसलों जब आरंभ हम कर रहे हैं क्या महत्व है उसका या उसका क्या अर्थ है, रबी फसलों की तैयारी क्यों करें?
1: रबी
2: तैयारी नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो उसका कोई पता व्यक्त हो जाएगा, खाद है सारी चीजें समायोजित नहीं होंगी तो प्रॉपरली आपका आउटपुट नहीं दे पाएगी।
1: ये देखते हैं कि किस तरीके से जब हम खरीफ फसल लगा रहे हैं तो उसमें जिस तरीके की मिट्टी का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें और उसके खेत में जब हम रबी की फसलें लगा रहे हैं तो उस मिट्टी में कुछ फर्क आपको देखने को मिलता है?
2: हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जो खरीफ तैयारी जो खरीफ फसल थी उसको उसमें से जो पोषण ले लिया है, रबी की फसल अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमें क्या पोषण देना चाहिए।
1: जी, खरीफ फसलों के आरंभ की जब हम बातें करते हैं तो हम और किन किन तैयारियां या किन तरह के कार्यों पर हम?
2: हाँ, रबी की तैयारियों के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहली चीज आ जाती है बीज।
1: जी,
2: बीज में दो साधन है हमारे पास, एक तो हमारा अपना बीज जो हम ये कहें कि हम अपना बीज से ही फसल उगाएंगे, तो अगर वो बीज है तो बीज आपने संभाल के रखा होगा ऐसा लगता है, उसे आप लें और उसे धूप में सुखाएं अगर नमी वगैरह है और उसका बीज उपचार जरूर करें खुद लगाएं, उससे बहुत सारे जो होने वाले रोग है उनको आप रोक सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, अगर बीज नहीं है या उनके अलावा कोई नया आप बीज जो कि अधिक उपज दे सकता है या ज्यादा अच्छा आया है तो उनके बारे में बाजार से जानकारी पता आप प्राप्त करें, और ऐसा नहीं है किसी एक ने कहा कि आप ये डाल लो ये बढ़िया नहीं, एक दो जगह से और चेक करें। आजकल तो प्रचार प्रसार है, मोबाइल फोन पे भी सुविधाएं होती हैं, बहुत सी कंपनियां भी अपना प्रचार करती हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, तो आप उनकी बात भी सुनिए, और अगर वह बीज एकदम नया आया है तो ज्यादा प्रयोग न करें, और अगर पहले से वो चल रहा है और उसके अच्छे परिणाम मिले तो कोई ना कोई आसपास में आपके उस बीज का प्रयोग किया होगा पिछले साल में, उसके अनुभव से आप जो जान सकते हैं कि वो कैसा रहा उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, दुकान पर पूछ सकते हैं, आपको रेट भी देखने पड़ेंगे, तो सारी चीजों का तालमेल करके आप बीज को खरीदने की व्यवस्था आप करें, चाहे वो गेहूं का बीज हो चाहे वो सरसों का बीज हो या जौ हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जो रबी की फसल आप देने जा सकते हैं, चना है, चना भी एक अच्छी फसल है रबी की, उसके बारे में तो बीज सही लें, रोग रहित बीज लें, वो करें। दूसरा, जो उर्वरकों की मांग है उसमें पूरी फसल के लिए उर्वरकों की मांग है उसके लिए प्रयास न करें, जो शुरुआत में हमें चाहिए वो उर्वरकों का प्रबंध के लिए आप जो प्रयास करें, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, पीएमकेएसके हैं, सब जगह उर्वरक मिलते हैं, तो उसमें आप देख लें कि जो फसल लगाने जा रहे हैं उसमें क्या पोषण की हमें आवश्यकता है, उस पोषण के हिसाब से आप उर्वरक चुनें। आप ऐसा ना सोचेंगे मैं पहले ये डालता था तो ये मैंने चुन लिया, ऐसा नहीं है।
1: तो सही उर्वरक के लिए हम किसी सलाहकार से मिल सकते?
2: सलाहकार से भी ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपको गेहूं में आपको एक एकड़ में 20 किलो फास्फोरस डालना है, है नहीं, करीब जो आपको जो मतलब पोटास इस्तेमाल इतना ही करना है 20 किलो, और नाइट्रोजन आपको 20 किलो डालनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो क्या है कि आप जैसे सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं और पोटास मिला सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है डीएपी ले सकते हैं और उसमें पोटास मिला सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि एक ही खाद में तीनों पोषक तत्व मिल जाएंगे।
1: अच्छा।
2: जैसे कि उसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, फॉस्फोरस भी मिल जाएगी और पोटाश मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तीनों मिल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा चीज है, क्योंकि उसके हर दाने में जो मतलब पोषण तत्व की समान मात्रा है। अलग अलग अगर खाद से आप उर्वरक से जो अगर जो उसको देते हैं तो कोई उर्वरक कहीं पड़ा कोई कहीं पड़ा, तो एक जगह उसको पूरा नहीं मिलता है पौधे को। लेकिन अगर ये जो है एनपीके है इनमें पूरा एक जगह मिल जाता है, तो ये अच्छा परिणाम है। आप इस तरह से चुनाव कर सकते हैं। फिर जो फसल लगाने जा रहे हैं वहाँ सिंचाई की क्या व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि रबी फसलों में बारिश कम होती है, सिंचाई पर आधारित होना है। अगर पानी कम है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें, पानी अगर पर्याप्त है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें। तो ये कुछ रबी की तैयारियां हैं, ये आपको करनी है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको आप अच्छे से कर पाएंगे, और आपको कोई ये नहीं रहेगा कि यार ये मेरे से ठीक नहीं हुआ, मैं ऐसा कर सकता था, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। दूसरा एक चीज और देखिए कि मार्केट रेट देखिए कि पिछले साल इन ये जो फसलें मैं लेने जा रहा हूँ इनका रेट क्या था, उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि कौन सी फसल कितनी मात्रा में लगानी है। एक जैसी जब आप एक ही फसल लगा दिया उसके रेट गिर गए या उसमें सारी में कोई परेशानी आ गई तो सारा खत्म। तो आप थोड़ा थोड़ा लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाते तो किसी में कम किसी में ज्यादा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपका एक जो एवरेज आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से फसलों का चुनाव करें। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखें कि फसल चक्र जरूर अपना है, खेतों में अदल बदल के आप जो प्रयास करें, उससे खेत की जो ताकत है वो पुष्ट होती है और फसलों में रोग बीमारियां कम आती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं जो है अपनी ओर से कुछ बात रख रहा हूँ कि भाई रबी की जो फसल आप लगाना जा रहे हैं उसमें ये जरूर आप ध्यान रखें, और ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक सार्थक उपज आपको मिलेगी, सार्थक खेती आपके यहाँ हो सकेगी। तो ये कुछ बातों की।
1: खरीफ फसलों और रबी फसलों के समापन और आरंभ के से जुड़े आपने बहुत सी जानकारी दी सर। इसी के साथ कार्यक्रम के समापन से पहले कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार हम जितनी जानकारी विशेषज्ञों से लेते हैं या फिर सलाहकारों से लेते हैं उसे इम्प्लीमेंटेशन तक का जो प्रोसीजर होता है उसके बीच में बहुत सी रुकावट आ जाती है, जिस कारण से हम जो सलाह हम लेते हैं हमें जितनी जानकारी होती है उसे हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते और उसका हमें सही लाभ नहीं मिल पाता। तो अगर हम ऐसी तैयारी नहीं करते तो खेतों में और हमारी फसलों में किस तरीके का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है?
2: हाँ, अगर आप तैयारी नहीं करते तो आपके लिए ये है कि जैसे अगर आप बीज लेने जा रहे हैं और कोई बीज चाहिए था वो आपको नहीं मिला
1: जी,
2: है ना, या कोई दूसरा बीज लेके आने पड़ा तो जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। खरीफ फसल का जो समापन है उसमें आप चाह रहे थे कि मैं बेच के आऊं मंडी में, लेकिन रेट अच्छे नहीं चले और आपने अगर स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं करी तो ना आप जो मंडी ले पाए न सही ढंग से उसका भंडारण कर पाए, तो नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप अगर करते रहेंगे और इनमें थोड़े थोड़े प्रयोग करते रहेंगे तो आपको जो नुकसान होने की संभावनाएं हैं या आपको लगे कि भाई मेरे को ये ठीक नहीं हुआ वो थोड़ी कम हो जाएंगी। और धीरे धीरे अगर आप इनको अपनाते रहेंगे तो आपके पास एक अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे अगर सपोज भंडारण है, भंडारण का अगर आपने यहाँ पे कुछ व्यवस्था इस साल की है तो वो हमेशा के लिए होगी, वो ऐसा तो है नहीं इस साल खत्म हो जाएगा। सपोज कोई ज्यादा वैसा नहीं है, आपका आंगन है वहाँ उसको ऊंचा कर सकते हैं, टीन शेड लगा के जिससे कि बारिश वारिश उसमें ना आए वहाँ स्टोर कर सकते हैं, उसकी पुताई कर सकते हैं अच्छे से जगह की, जिससे कि चूल्हे से पुताई करते हैं ना, तो उससे क्या है कि बहुत सारे कीड़े वो आपस में अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा करके हम अपने संसाधनों को जो ठीक कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।
1: इसी के साथ हम आज की कड़ी को यहीं समाप्त करना चाहेंगे सर। आपके साथ जुड़कर आपसे खेती किसानी से जुड़े हुए इतनी बातें करना बहुत ही ज्ञानवर्धक था और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी इससे बहुत से फायदे उठा पाएंगे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाई इसका लाभ लें ऐसी हम आशा करते हैं। और ये जो वार्ताएं हैं हम इसलिए करते हैं कि कोई न कोई सार्थक परिणाम इसके हमारी खेती बाड़ी में आए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी, आपकी बात हो रही थी दिव्या और चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर ए के सिंह सर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी।
1: दिव्या को इजाजत,

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजरीना। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है। सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
2: धन्यवाद आरजरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आरजरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है लेकिन ने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता। और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
2: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूंगी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीबी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया, अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी, यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
1: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है, यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी, सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है।
2: देखिए आरजरीना, टीबी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं, वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है, लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
3: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं, क्यों?
2: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते, कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं, कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
3: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज जारी।
3: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
2: निक्षय वास्तव में टीबी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलोअप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
3: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
2: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आर्जेरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीबी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि अधिकांश टीबी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना, ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है और ना ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखें, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छुपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
3: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
2: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
3: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
2: यही एक और बड़ी गलतफहमी है, इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
3: भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
2: रीना, MDR TB यानी दवा प्रतिरोधी टीबी में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
3: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
2: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आजरीना। सरकार भी मानती है कि टीवी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकता है, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
3: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
2: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है, इसलिए सरकार निक्षेप पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
3: तो अगर आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
2: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले, टीवी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षेप और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR TV भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
3: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीवी का इलाज केवल

0: भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
1: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
0: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
1: हाँ, यही कहने वाली थी मैं।
0: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
1: और स्टूडियो में ना तभी राहत मिल रही है, सच बताओ। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
0: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। So, आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा, नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पर हमें फल, ताजे ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी
0: जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: बिल्कुल लगाइए, जरूर लगाइए,
0: जरूर लगाइए। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में, किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल,
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी, लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी, तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे, पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहे, कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की

जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपनी प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: करेक्ट, सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट, तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाए, हम चार बार नहाए। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते हैं जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी। अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना। और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना। ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो वो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट होता है। तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें, अभी हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से। यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी, साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पॉल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा के वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों के वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी ना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए।
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास, अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ, फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: Hey, you're a tune into FM Muradabad, 89.6 FM.
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि आज का डे हमारे लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेरे यानी आरजे आनंद के साथ, और आपका फेवरेट प्रोग्राम है जिसका नाम है हेलो डॉक्टर।
1: ये प्री मैच्योर बेबीज को रेटिनोपैथी होना, उनका पर्दा खराब होना।
0: ओके।
1: नेचुरली ये होता है कि किसी भी बच्चे का पर्दा 40 हफ्ते पे बनता है, लेकिन जो बच्चे प्री टर्म मतलब टाइम से पहले बर्थ हो जाती है उनका पर्दा पूरा बना नहीं होता। जब वो पर्दा पूरा बना नहीं होता तो वो पर्दा बीमार पड़ सकता है और उस बीमारी को आरओपी कहते हैं। ये प्री टर्म बेबीज की रेटिना की बीमारी है।
0: ओके, आई होप लिसनर्स आपको समझ आ गया होगा कि आरओपी क्या है। अच्छा सर, क्या आरओपी की शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो कैसे, मतलब पेरेंट्स को पता लगे, उसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं?
1: सबसे बड़ी प्रॉब्लम आरओपी की बीमारी के साथ ये है कि उसके सिम्टम्स आप बाहर से देख के पकड़ नहीं सकते। पेरेंट्स सिर्फ बच्चे की आंख देख के बाहर से ये नहीं बता सकते कि बच्चे को आरओपी है या नहीं, और इसीलिए आरओपी बीमारी को पकड़ने के लिए स्क्रीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर प्रीटर्म बेबी की रेटिना की स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग ही ऐसा एक मेथड है जिससे आरओपी है या नहीं ये पता लगाया जा सकता है।
0: ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर रोहन जी, अगर आरओपी के समय रहते ही पहचान हो जाए तो क्या इसका इलाज संभव है और किस तरीके से किया जा सकता है आरओपी का?
1: आरओपी आता है अंडर प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, मतलब वो बीमारियां जो प्रिवेंट करी जा सकती हैं अगर टाइम पे डिटेक्ट हो जाए। तो डेफिनेटली अगर टाइम पे इसका डिटेक्शन हो, जो एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग के टाइम पे होता है, तो ये बीमारी से बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बट सबसे जरूरी है टाइम पे स्क्रीनिंग हो, और अगर बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। ट्रीटमेंट इसका बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स में होता है, जिसमें इंजेक्शन, लेजर और सर्जरी, ये तीनों में से कुछ भी यूज करा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या स्टेज है बीमारी।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए मुझे, अगर आरओपी की समय पर जांच या इलाज ना हो पाए तो सिचुएशन में क्या खतरा मतलब हो सकता है?
1: अगर आरओपी ट्रीट नहीं करी गई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकता है, और यूजुअली ये बीमारी दोनों आंखों में होती है। तो इसलिए अगर बच्चे को आरओपी की बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट ठीक टाइम पे नहीं हुआ, तो बच्चा दोनों आंखों से ब्लाइंड हो सकता है, और एक स्टेज के बाद वो बीमारी ट्रीट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इसको टाइम पे डिटेक्ट करना और ट्रीट करना जरूरी है।
0: ओके, तो आरओपी की स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है?
1: आरओपी की स्क्रीनिंग सबसे जरूरी है उन बेबीज में जिनका वजन मतलब बर्थ वेट 2 किलो से कम हो, या वो बेबीज जिनका बर्थ 34 वीक से पहले हुआ। अगर कोई बच्चा जिसका बर्थ वेट 2 kg से ज्यादा हो या 34 वीक्स से बाद पैदा हुआ हो, लेकिन उसको आईसीयू में भर्ती रखना पड़ा हो, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिली हो, उसकी छाती में सिम्टम्स या इन्फेक्शन रहे हो, तो भी आरओपी की स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए।
0: ओके, ठीक है। सो लिसनर्स, देखिए बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, अगर आपका भी इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें एक मैसेज करेंगे। बहुत सिंपल, हमारा नंबर है 9837896896 पे आप हमें अपने क्वेश्चंस अपने नाम के साथ व्हाट्सएप कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी हम डेफिनेटली सर के साथ बैठ के उसे डिस्कस करेंगे। आप हमें अपने क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं, और बाकी ही ऐसे ही अभी जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी आपको मिलेंगे वापस।

0: वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से यू आर लिस्निंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आनंद के साथ और आज का विषय बहुत खास है दोस्तों। आज वर्ल्ड रिटिना डे है, हर साल ये मनाया जाता है 27 सितंबर को और इसी पर आज बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम डॉक्टर रोहन कपूर जी से। हमारे साथ स्टूडियो में है सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से और बीच बीच में तमाम सारे एक्सपर्ट आते हैं और आपकी आंखों के विषय में हम तमाम सारी बातें करते हैं क्योंकि सिर्फ कुछ कॉमन बीमारीज हमें और आपको पता थी, लेकिन अब जब से सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हमारे साथ आ रहे हैं तब से बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो मुझे पता लगी और मेरे साथ साथ पूरे मुरादाबाद को पता लग रही है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के। थैंक यू सो मच, आपके एक्सपर्ट सच में बहुत रोशनी फैला रहे हैं। एंड अभी आगे बढ़ेंगे डॉक्टर रोहन कपूर जी, अभी हम आरओपी पे बात कर रहे थे आपके साथ, तो जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को तो ये चीज पता नहीं लग पाती होगी, बट आप कैसे उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं?
1: कुछ स्क्रीनिंग गाइडलाइंस होती है जो हर पीडियाट्रिशियन और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट फॉलो करता है आरओपी बच्चों के लिए। वो स्क्रीनिंग गाइडलाइन जो है वो है कि कोई भी बच्चा जिसका बर्थ वेट 2 किलो से कम हो या जिसका बर्थ 34 वीक से पहले हो गया हो, ऐसे सब बच्चों को पीडियाट्रिशियन यूजुअली सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट रेफर करते हैं हमारे पास आरओपी स्क्रीनिंग के लिए। अगर कोई बच्चा जिसका बर्थ वेट 2 किलो से ज्यादा हो या उसका जेस्टेशन मतलब पैदा होने की एज 34 वीक से ज्यादा हो लेकिन उसको बहुत हैवी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला हो, आईसीयू में उसका ट्रीटमेंट चला हो, इन्फेक्शन हुए हो, उनको भी ये पीडियाट्रिशियन हमारे पे रेफर करते हैं फॉर आरओपी स्क्रीनिंग। जब हम आरओपी स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें हम बच्चे की आंख में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उनके पर्दे को देखा जाता है देखने के लिए कि क्या उनका पर्दा पूरा बना है या नहीं, और अगर नहीं बना है तो क्या वो आरओपी की बीमारी से ग्रस्त है या नहीं, और अगर वो ग्रस्त होता है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ये यूजुअली प्रोसीजर पेनलेस होता है, बच्चे को कोई पेन नहीं होता है, बट पूरे प्रोसीजर में 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है।
0: ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में आरओपी के मुख्य कारण क्या होते हैं, जैसे मतलब अगर आप इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहें हमारे लिसनर्स को?
1: सबसे मेन कारण तो प्रीमेच्योरिटी ही है। प्रीमेच्योरिटी के साथ लो बर्थ वेट, जिसका बर्थ वेट कम है वो एक मेजर कारण है। इसके अलावा जिन बच्चों को ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी ज्यादा मिलती है क्योंकि उनको जरूरत होती है, वो भी आरओपी को प्रमोट कर सकता है। ऑक्सीजन से ही जिंदगी है, ऑक्सीजन इसलिए दी जाती है जिससे कि बच्चे की लाइफ बनी रहे, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, उसमें से एक आरओपी है। इसके अलावा बहुत सारे शरीर के इन्फेक्शन स्पेशली जो लंग को इन्वॉल्व करते हैं या जो इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करते हैं बच्चों की, वो भी आरओपी को प्रमोट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन का कम होना भी एक कारण देखा गया है और इसलिए बच्चों का हीमोग्लोबिन 12 से यूजुअली ऊपर रखने का प्रमोशन किया जाता है। ये कुछ और रीजंस हैं अपार्ट फ्रॉम प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ।
0: ओके, सो डॉक्टर रोहन कपूर के साथ ढेर सारी बातचीत है और ये बातचीत जारी रहेगी। अभी हम मिलेंगे थोड़ी सी देर में, एक छोटा सा इसमें म्यूजिकल ब्रेक आपके लिए बहुत जरूरी है और बातचीत चल रही है बच्चों की, तो एक बहुत ही प्यारा सा बच्चे वाला गाने मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पर छोटू सा गाना है, उसके बाद जल्दी से वापस आना है, तो आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही ट्यून इन रहो, अभी लौट कर आते हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ। और दोस्तों, प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। यहाँ पर आपकी काम की बातें होती हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ। और आज हमारे बीच में डॉक्टर रोहन कपूर जी स्टूडियो में मौजूद हैं, सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से। सर से आज हम आरओपी के बारे में ढेर सारी डिस्कशंस कर रहे थे। सर, इसी बीच में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आपने प्री मेच्योर बच्चों की बात करी, तो मतलब छोटे छोटे बच्चों को लेकर पेरेंट्स वैसे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इस केस में आप कैसे मतलब उनके पेरेंट्स को यू नो समझाते हैं, कैसे काउंसलिंग करते हैं, क्या वो अलाउ कर देते हैं इस केस में? क्योंकि या फिर इतने सारे लोगों को देख के कहना कि पेरेंट्स पैनिक तो होते ही होंगे, डेफिनेटली उनमें हो जाती है भाई, पूछताछ भी करते होंगे, तो कैसे आप उनको मतलब यू नो ये करते हो पूरा मैनेज?
1: इसमें एक बहुत बड़ा रोल पीडियाट्रिशियन का है।
0: ओके।
1: हमारे मुरादाबाद के पीडियाट्रिशियंस और आसपास के एरिया के पीडियाट्रिशियंस बहुत वेल अवेयर है आरोपी के बारे में।
0: ऑलराइट।
1: तो बहुत बार वो ही पेरेंट्स को बता देते हैं कि आरोपी की स्क्रीनिंग जरूरी है और जरूर जाके करवाइए। जब पीडियाट्रिशियन बोलता है तो पेरेंट को समझ में आता है कि हाँ ये जरूरी है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि फ्रेश वॉक इन, मतलब पेशेंट्स को कहीं आसपास से पता लगा कि ये बीमारी होती है और उनका बच्चा प्रीटर्म होता है, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं बोलने कि ये बच्चा प्रीटर्म हुआ है, हमारे को पता लगा इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर जब उनको बताते हैं कि ये बीमारी क्या है, प्रिवेंटेबल है, नहीं ट्रीट करी तो इसमें ब्लाइंडनेस है, तो वो बच्चे की स्क्रीनिंग टाइम पे कराते हैं और अगर जरूरी होता है तो ट्रीटमेंट भी टाइम पे कराते हैं।
0: ओके, तो मतलब आपकी टीम वहां जाती है या फिर बच्चे को आप अपने हॉस्पिटल बुलाते हैं?
1: हमने एक बहुत वेल डेडिकेटेड टीम बना रखी है।
0: ओके।
1: जो हमारी आरोपी एक्सपर्ट टीम है। इस समय हम मुरादाबाद और उसके आसपास के 6 और डिस्ट्रिक्ट्स में फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें मुरादाबाद

0: रोहा, रामपुर, बहजोई, संभल, ये सारे इन्वॉल्व्ड हैं। ये हमारी एक टीम जो है एक स्पेशल फंडस कैमरा, एक रेटिना का इमेज लेने का डिवाइस होता है, वो कैरी करती है। और हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है बहुत सारे आईसीयूज के साथ, बच्चों के आईसीयूज के साथ, पीडियाट्रिशियंस के साथ। उन सब पीडियाट्रिशियंस के सेंटर पे हम जाते हैं, वहां पे हम बच्चों को स्क्रीन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किन बच्चों को आरओपी है, और अगर ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनमें आरओपी होता है तो हम उनको अपने सेंटर बुलाते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए। ऐसे भी केसेस जहां पे वो बच्चे बहुत सिक होते हैं, एडमिटेड होते हैं और वो रेफर नहीं हो पाते हैं, तो हम एक्चुअली में जा के भी उन आईसीयूज में इन बच्चों को ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। इस टाइम पे हमारा एक्सपेंशन का प्लान है और हम चाहेंगे कि आसपास के और एरियाज हम कवर करें, जिससे कि हम इस आसपास के एरिया को और अपने शहर को आरओपी से एटलीस्ट रिलीफ दे पाए।
1: ओके, बहुत बढ़िया सर। जैसे हर साल 27 सितंबर को ये हम सेलिब्रेट करते हैं ना, वर्ल्ड रूटीना डे, तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट करने का दिन है, लोगों में जागरूकता बढ़ाने का दिवस है ये। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ जी, तो दोस्तों बहुत सारी बातें आज हमने करी है डॉक्टर रोहन कपूर से, और सर आपका जो ये मिशन है, इसे देखने के बाद, सुनने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो बढ़िया और ग्रेटफुल आप कर रहे हैं। एंड चलते चलते तमाम मुरादाबादीज आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं आई नो इस टाइम पे, बहुत सारे लिसनर्स हमारे सुन ही रहे हैं, तो आप क्या एक मैसेज कन्वे करोगे पूरे मुरादाबाद के नाम हमारे स्टूडियो से लाइव?
0: आई थिंक हम इस मिशन को नाम दे चुके हैं 30 दिन रोशनी के।
1: अरे वाह,
0: जैसे कि ये पता लगे सबको कि हर बच्चे की स्क्रीनिंग उसके बर्थ के विद इन 30 डेज हो जानी चाहिए, स्पेशली जो बच्चा प्रीटर्म है और लो बर्थ वेट वाला है। ये स्क्रीनिंग के लिए हमारी टीम बहुत मेथड, बहुत ही मेहनत से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही है और स्क्रीन कर रही है, और जहां भी हमें कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसे आरओपी होता है, उसे हम अपने सेंटर पे ट्रीट कर रहे हैं। हमारे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में इस टाइम पे आरओपी के ट्रीटमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो हम यूज करके इस शहर को आरओपी से रिलीफ देना चाहते हैं। तो मैं बस ये बताना चाहूंगा सबको कि वो याद रखें कि बच्चों की रोशनी को हम बचा सकते हैं, और हमें वो काम बच्चे के पैदा होने के विद इन 30 डेज शुरू कर देना चाहिए।
1: ओके, बहुत ही बढ़िया मैसेज आपने दिया सर, और आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी। हाँ जी, तो डॉक्टर रोहन कपूर जी हमारे स्टूडियो में हैं, और जितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने जानकारियां दी उतने खूबसूरत वो भी हैं। ऋतिक रोशन के कजन नजर आ रहे हैं मुझे, मैं इनको देख पा रहा हूँ। सर अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दीजिए हमारे मुरादाबादी, इसको ये कोई बशिंग नहीं है, एक्चुअली जो मुझे फील हुआ मैंने आपको बता दिया। लाइटों से भी सुंदर आपकी स्किन है, क्या है आपकी खूबसूरती का राज, पहले यही बता दो आप।
0: मैं मुरादाबाद का ही लड़का हूँ।
1: अरे वाह, सच में? वैसे मैं सबसे पूछ लेता हूँ ये आप कहाँ से हो, लेकिन आज आपसे नहीं पूछा, पता नहीं क्यों फीलिंग ही नहीं आई अंदर से, शायद आप लोकलिटी से ही हो।
0: हाँ, मैं लोकलिटी हूँ, मैं मुरादाबाद का ही जन्मा हूँ 1994 में। यहीं का मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्कूलिंग के बाद जो है लुधियाना चला गया था। मैंने कृष्ण मेडिकल कॉलेज लुधियाना से MBBS करा, वहीं से मैंने उसके बाद MS करा, मास्टर्स करा। 10 ईयर्स लुधियाना में रहा मैं MBBS और MS करने के लिए। उसके बाद मैं LV प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद गया, वहां मैंने 3 साल काम करा, फेलोशिप करी, जिसमें मैंने रेटिना सर्जरीज में एक्सपर्टीज ली। और उसके बाद अब मैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट वापस आया हूँ, अपने शहर वापस आया हूँ, इस शहर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जो मैंने सीखा, जो हमने गेन करा, अब वो टाइम है कि हम उससे लोगों का भला करें।
1: दैट्स वेरी ग्रेट। करंटली तो जहां वर्किंग है वहां के बारे में बताइए थोड़ा सा आप।
0: मैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में वर्क करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे रेटिना डिपार्टमेंट है जिसमें हम 3 डॉक्टर्स हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं सीएल गुप्ता में, जिसमें से एक मेजर डिपार्टमेंट रेटिना डिपार्टमेंट है, और इस समय पर्दे से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। हम चाहेंगे कि जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो आंखों से संबंधित, और अगर उसमें वो पर्दे से संबंधित है तो वो हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, और हम विल बी वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड देम विद वेरी गुड सर्विसेज।
1: दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और लिसनर्स आप सिर्फ ये सुन नहीं सकते हैं, आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं, मतलब ये जो कॉन्वर्सेशन है वो आप देख सकते हैं सीएल गुप्ता का इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब चैनल है उनकी लिंक मैं अपने ऑफिशियल हैंडल पे शेयर करता हूँ और अपने इंस्टाग्राम पे भी, तो फटाफट हमें फॉलो कीजिए और वहां जाके सारे वीडियोस और जो भी कॉन्वर्सेशन वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा शायद वो ऋतिक रोशन के कजन तो नहीं है, वो आप देख सकते हो वीडियो में आके, सो प्लीज जल्दी से फॉलो कीजिए एफएम मुरादाबाद की, इंस्टा हैंडल है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ, फटाफट जाओ फॉलो करो, और अभी के लिए ऐसे ही सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। डॉक्टर रोहन जी जाते जाते आप एक गाना तो बता दो अपनी पसंद का जो आप मुरादाबाद को डेडिकेट करना चाहते हो, इतनी सारी कॉन्वर्सेशन होगी, एक गाना आपका पसंद का। फाइनली बातों बातों में जो है अब हमें जाने का हमारा समय हो गया, और डॉक्टर रोहन जी ने अपनी पसंद का गाना भी ढूंढ लिया है, वो उन्होंने मुझे बता दिया है चुपके से मेरे कान में कि भाई नहीं, मैं उनकी आवाज में, जी सर प्लीज बता दें आप।
0: इतनी बार ऋतिक रोशन का नाम आ गया है
1: तो ऋतिक रोशन, मुझे ऋतिक रोशन ने पैसे नहीं दिए थे बट फिर भी मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, आप प्लीज बताएं गाना।
0: फिर तो ऋतिक रोशन का गाना ही बनता है एंड आई थिंक लकी अली का गाना है एक पल का जीना।
1: ये बिल्कुल उन्हीं का गाना है और एक पल का जीना, और गाने में एक मीनिंग भी है, थॉट भी, और गाना भी बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गाना छोड़ के हम जा रहे हैं अपने लिसनर्स के लिए, सब डांस करेंगे इस गाने पे। वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत अच्छा लगा। एफएम मुरादाबाद आपको थैंक यू करता है, लवली मीटिंग यू सर, थैंक यू। गाइस आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं लकी अली का गाना, आप कहीं मत जाना, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाना, बाय।

0: कुमार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाई ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया।
2: उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सोच रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, UPI के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है हम इमीडिएट एक दो घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान भगवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
5: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
4: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाउ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीने वेव 366.3 मीटर।
8: मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
9: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
8: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
10: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी और लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहद खास कार्यक्रम। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसमें गांव की महिलाएं सिर्फ घर और खेत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई टेक्नोलॉजी के साथ खेती के साथ एक नई पहचान बना रही है। नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। इस योजना के तहत महिलाएं स्वयं सहायता समूह यानी SHG को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इन ड्रोन की मदद से खेतों में तरल खाद और कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है, यानी जो काम पहले काफी मेहनत, समय और मजदूरों की जरूरत से होता था, उसमें अब आधुनिक तकनीकी मदद कर सकती है। साथ ही SHG की महिलाएं किसानों को ड्रोन सेवा देकर अपनी आमदनी का नया जरिया बना सकती हैं। यही है इस योजना का मूल उद्देश्य, महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और खेती को आधुनिक बनाना।
11: और आगे हम बात करते हैं। आई नो आप मेरी आवाज से पहचान गए हो, मैं आपके साथ आपकी अपनी RJ ही रीना हूँ। और इस महिला मंच शो में मुझे लगता है कि हर चीज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा है, ड्रोन दीदी आखिर कौन है। दिमाग में तो ये भी आता है ना कि ड्रोन दीदी आखिरकार है कौन। दोस्तों, ड्रोन दीदी कोई अलग सरकारी पद नहीं है, यह नाम उन महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें कृषि ड्रोन चलाने और उससे किसानों को सेवा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यानी गांव की वही महिला जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, ट्रेनिंग लेकर ड्रोन पायलट बन सकती है और कृषि कार्यों में ड्रोन सेवा दे सकती है। यह योजना महिलाओं को केवल तकनीकी सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सर्विस प्रोवाइड यानी किसान को सेवा देने की उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने की सोच रखती है। इसलिए ड्रोन सिर्फ आसमान में उड़ने वाली मशीन नहीं है, बल्कि गांव की महिला के लिए नई स्किल और नई योजना के माध्यम से भी बन सकता है। तो हर चीज में आप आगे बढ़िए, बढ़ चढ़ कर इस योजना में कनेक्ट होइए, ताकि आप भी, आपका काम स्मूथ हो जाएगा और आप भी इस कार्य से कनेक्ट रहेंगे।
10: अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हैं और किसी महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG का हिस्सा हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। नमो ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य महिलाएं SHG को कृषि ड्रोन उपलब्ध कराना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति सीधे जाकर ड्रोन मांग सकता है। योजना में चयनित महिलाएं SHG और उपयुक्त कृषि क्लस्टर महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान पर जोर दिया है जहां ड्रोन से कृषि सेवा की वास्तविक मांग हो। इसीलिए अगर आपके गांव में महिलाएं स्वयं सहायता समूह है, तो अपने समूह की जानकारी स्थानीय DNRLM राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और कृषि विभाग से जरूर लें। यानी पहला कदम है अपने SHG को मजबूत बनाना और आधिकारिक स्तर पर जानकारी लेना।
11: योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, नमो ड्रोन दीदी योजना एक बड़ा उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना और उसकी आजीविका के अवसर बढ़ाना। सरकार के अनुसार इस योजना के लिए कुल 1261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और 15,000 महिला SHGS तक ड्रोन पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था। यहां तक बात समझाना बहुत जरूरी है कि ड्रोन सिर्फ महिला समूह के पास रख देने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल किसानों को कृषि सेवा देने के लिए किया जाना है। यानी SHG ड्रोन की मदद से किसानों के खेतों में तरल खाद और कीटनाशक के छिड़काव जैसी सेवाएं दे सकता है। इस तरह एक तरफ किसान को आधुनिक कृषि सेवा मिलती है और दूसरी तरफ ग्रामीण महिलाओं के समूह को आय का नया अवसर मिलता है।
10: अब बात करते हैं इस योजना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आर्थिक सहायता। चिन्हित महिलाएं SHGS के लिए ड्रोन और उससे जुड़े पैकेज की लागत पर सरकार की ओर से 80% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता, अधिकतम 8,00,000 रुपए तक का प्रावधान है। यानी ड्रोन की पूरी कीमत सरकार सीधे हर समूह को नगद नहीं देती। योजना के नियमों के अनुसार पात्र चिन्हित SHG को निर्धारित सहायता के लिए आधार पर ड्रोन पैकेज उपलब्ध कराया जाता है। बाकी राशि के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी AIF के माध्यम से ऋण लेने का विकल्प भी रखा गया है और उस ऋण पर 3% ब्याज सहायता का प्रावधान है। तो ध्यान रखें 80% तक सहायता का मतलब अधिकतम 8 लाख रुपए तक है। हर मामले में 8 लाख रुपए मिलना जरूरी नहीं है।
11: अब सवाल ये भी आता है, क्या महिला को खुद 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे? तो दोस्तों, इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला SHD का चयन योजना के तहत होता है तो ड्रोन पैकेज की लागत पर सरकारी सहायता पर प्रावधान है। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार 80% तक सहायता अधिकतम 8 लाख रुपए तक की दी जा सकती है। शेष राशि के लिए SHG यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन को AIF के माध्यम के ऋण लेने का विकल्प दिया गया है। इसीलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार हर महिला को 8 लाख रुपए देगी। सही बात यह है कि चयनित महिला SHG को ड्रोन पैकेज की लागत पर निर्धारित वित्तीय सहायता मिलती है और बाकी राशि के लिए ऋण का विकल्प हो सकता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को पैसा जमा कराने से पहले अपने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या कृषि विभाग से आधारिक जानकारी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि सही जानकारी के साथ आप आगे बढ़िए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े।
10: नमो ड्रोन दीदी योजना की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ड्रोन देने की बात नहीं है, बल्कि ड्रोन पैकेज का प्रावधान है। सरकारी ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार पैकेज में ड्रोन के साथ स्प्रे, असेंबली, बैटरी, चार्जर, ड्रोन कैरिंग बॉक्स, नीचे की ओर देखने वाला कैमरा, एनीमोर मीटर, PH मीटर जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त बैटरी और अन्य जरूरी उपकरण भी पैकेज में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ट्रेनिंग, बीमा और निर्धारित अवधि की मेंटेनेंस सुविधा का प्रावधान भी है। यानी उद्देश्य ये है कि महिलाएं SHG को ड्रोन सेवा शुरू करने के लिए जरूरी पूरा सेटअप मिले और उसे केवल मशीन लेकर बाकी व्यवस्था खुद ना करनी पड़े।
11: अब बात ये आती है कि ड्रोन उड़ाया कैसे जाए, क्योंकि ड्रोन खरीद लेना ही काफी नहीं है, उसे सुरक्षित और सही तरीके से उड़ाना भी आना चाहिए। योजना के तहत महिला SHG की एक सदस्य को 15 दिन की ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। इसमें ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के साथ कृषि में पोषक तत्व और कीटनाशक के छिड़काव से संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल है। दूसरे सदस्य या परिवार के सदस्य को इसकी रुचि और उपयुक्तता के आधार पर ड्रोन असिस्टेंट के रूप में प्रशिक्षित करने का प्रावधान है। यानी एक महिला ड्रोन उड़ाने की जिम्मेदारी संभाल सकती है और दूसरे सदस्य तकनीकी सहायता और संचालन में सहयोग कर सकती है। टेक्नोलॉजी तभी काम की है जब उसके साथ सही ट्रेनिंग भी हो। और योजना में इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जब आपको सिखाया जाता है तो आप अच्छे से प्रॉपर सीखिए, तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। फिलहाल एक हम लेते हैं परफेक्ट के साथ साथ म्यूजिक, उसके बाद में कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ। FM सुनते रहिए, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे।

0: ड्रोन में क्या सिखाया जाता है? ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग सिर्फ ड्रोन को ऊपर नीचे उड़ाना सिखाना नहीं है। सरकारी जानकारियों के अनुसार ट्रेनिंग में ड्रोन पायलटिंग, कृषि में पोषक तत्व और कीटनाशक के छिड़काव से जुड़ी काम, ड्रोन संचालन और जरूरत प्रक्रियाओं की जानकारी शामिल होती है। 2026 में सरकार ने ये भी बताया है कि योजना के तहत परीक्षण में ड्रोन उड़ाना, ड्रोन रूल्स, कृषि उपयोग के लिए प्रोसीजर और छोटे मोटे रिपेयर व मेंटेनेंस जैसी जानकारियां शामिल हैं। यानी महिलाओं को एक तरह से टेक्निकल स्किल दी जाती है ताकि वे सिर्फ ड्रोन की ऑपरेटर ना रहें बल्कि कृषि सेवा को समझकर काम कर सकें। इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए टेक्नोलॉजी आधारित काम के नए रास्ते खुल सकती है।
1: अब बात किसान भाई बहनों की, आखिर किसान को ड्रोन से फायदा क्या होगा? कृषि ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में तरल खाद्य और कीटनाशक के छिड़काव जैसी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इससे किसान को खुद ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं होती है, वह स्थायी स्तर पर उपलब्ध ड्रोन सेवा को किराए पर ले सकता है। सरकार का उद्देश्य यही है कि महिला SHGS के किसानों को ड्रोन सेवा उपलब्ध कराए, यानी

0: इंसान के लिए मॉडल कुछ ऐसा है, ड्रोन खरीदना जरूरी नहीं, जरूरत पड़ने पर ड्रोन सेवा लेना। इसमें आधुनिक तकनीकी छोटे और ग्रामीण किसानों तक भी पहुंच सकती है, बशर्ते उनके क्षेत्र में योजना के तहत ड्रोन सेवा उपलब्ध हो।
1: दोस्तों, ड्रोन की स्पीड को लेकर भी कई सवाल होते हैं। सरकार द्वारा साझा की गई एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस्तेमाल किए गए किसान ड्रोन लगभग 7 से 8 मिनट में एक एकड़ क्षेत्र को कवर कर सकते हैं, लेकिन इससे हर ड्रोन हर फसल और हर खेती के लिए एक निश्चित समय ना माने। वास्तविक समय ड्रोन के मॉडल, बैटरी, खेत की स्थिति, फसल और काम की प्रकृति पर भी निर्भर कर सकता है। इस अध्ययन में अलग अलग ड्रोन की एक बैटरी पर उड़ान का समय 5 से 20 मिनट तक पाया गया है। ड्रोन खेतों में छिड़काव के काम को काफी तेज कर सकता है, लेकिन वास्तविक समय खेती और मशीन की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है।
0: एक और जरूरी सवाल, क्या ड्रोन से हर तरह की कृषि सामग्री डाली जा सकती है? नमो ड्रोन दीदी योजना मौजूदा आधारिक विवरण में कृषि के लिए तरल उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव को प्रमुख उपयोग के रूप में बताया गया है। योजना में ड्रोन पैकेज में भी स्प्रे असेंबली दी जाती है, लेकिन किसान भाइयों और बहनों, यहां सावधानी जरूरी है। किसान भी किसी भी दवा या कीटनाशक का इस्तेमाल हमेशा उसके लेबल, कृषि विभाग की सलाह और निर्धारित मात्रा के अनुसार ही होना चाहिए। ड्रोन होने का मतलब यह नहीं है कि मनचाही मात्रा में दवा छिड़की जाए। सही दवा, सही मात्रा और सही तकनीकी तीनों जरूरी है। टेक्नोलॉजी का फायदा तभी है जब उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए।
1: दोस्तों, अक्सर सुनने को मिलता है कि ड्रोन से फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। ऐसे थोड़ा सही तरीके से समझिएगा। सरकार के अनुसार योजना का उद्देश्य कृषि में आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल से दक्षता बढ़ाना, कृषि संचालन की लगातार कम करने में मदद करना है, फसल उत्पादन में सुधार लाना है। लेकिन किसी भी किसान के खेत में पैदावार कितनी बढ़ेगी, ये सिर्फ ड्रोन पर निर्भर नहीं करता। मिट्टी, बीज, मौसम, सिंचाई, खाद, कीट प्रबंध और खेती की पूरी प्रक्रिया का असर होता है। इसीलिए ड्रोन को खेती का जादुई समाधान नहीं, बल्कि आधुनिक कृषि का एक उपयोगी उपकरण समझना ज्यादा सही होगा।
0: अब सबसे अहम बात, महिला SH की आमदनी कैसे बढ़ेगी। इस योजना का मॉडल यह है कि यह चयनित महिला स्वयं सहायता समूह ड्रोन का इस्तेमाल करके किसानों को कृषि सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, यानी किसान जरूरत के अनुसार ड्रोन सेवा किराए पर ले सकता है और SHG उस सेवा से आय कमा सकता है। सरकार ने इस योजना को महिलाओं के लिए सत आजीविका और बिजनेस सपोर्टर के रूप में डिजाइन किया है। पहले जो SHG खेती, पशुपालन या दूसरे ग्रामीण कामों से जोड़ा था, वह अब कृषि ड्रोन जैसी आधुनिक सेवा से भी जुड़ सकता है। यानी गांव की महिला के हाथ में सिर्फ ड्रोन का रिमोट नहीं, बल्कि एक नया बिजनेस मॉडल भी आ सकता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। योजना से जुड़ी आधारिक जानकारी में यह उम्मीद जताई गई है कि SHGS अतिरिक्त आय कमा सकेंगी। शुरुआती सरकारी जानकारी में कम से कम 1 लाख रुपए सालाना अतिरिक्त आय की संभावना का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार हर ड्रोन दीदी को 1 लाख रुपए की फिक्स सैलरी देगी। कमाई ड्रोन सेवा के इस्तेमाल, किसानों की मांग, क्षेत्र, संचालन, लागत और SHG के बिजनेस पर निर्भर करेगी। इसीलिए इस योजना में महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय का अवसर पैदा करती है, लेकिन आय की कोई निश्चित गारंटी नहीं है। सही जानकारी ही सही उम्मीद बनती है। इसीलिए जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और अपने काम को समझिए भी।
1: मान लीजिएगा आपके गांव में किसान को खेती में तरल खाद या कीटनाशक का छिड़काव करवाना है। अगर आपके क्षेत्र में योजना के तहत ड्रोन सेवा उपलब्ध है तो महिलाएं SHG किसान को ये सेवा दे सकती हैं। यानी किसान को खुद ड्रोन खरीदने या पायलट बनने की जरूरत नहीं है, वह सेवा लेने के लिए संबंधित SHG से संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने योजना में ऐसे क्लस्टर और क्षेत्रों के चयन पर जोर दिया है जहां ड्रोन सेवा की मांग और आर्थिक उपयोगिता हो, इसीलिए हर गांव में तुरंत ड्रोन उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अगर आपके गांव में ऐसी सेवा शुरू होती है तो स्थानीय SHG कृषि विभाग या ग्रामीण आजीविका मिशन से जानकारी लेकर ही।
0: अब अपने यूपी के क्षेत्रों के लिए एक खास जानकारी। सरकार द्वारा जुलाई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 से 24 में लीड फर्टिलाइजर कैंपेन द्वारा SHGS को वितरित किए गए 1094 ड्रोन से यूपी में 128 ड्रोन वितरित किए गए थे और उतनी ही संख्या में SGH सदस्य को ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा योजना के तहत आगे के आवंटन में यूपी के लिए 2236 ड्रोन का अलोकेशन बताया गया था। ध्यान रहे, अलोकेशन का मतलब यह नहीं कि उसी दिन सभी ड्रोन खेतों तक पहुंच गए, यह निर्धारित आवंटन है, जबकि वास्तविक वितरण चरणबद्ध तरीके से हो सकता है। इसीलिए स्थायी स्तर की वर्तमान स्थिति जानने के लिए राज्य के संबंधित विभाग से जानकारी लेना जरूरी है।
1: और दोस्तों, क्या हर SHG को ड्रोन मिलेगा? नहीं, इस बात को बिल्कुल साफ समझिएगा। हर महिला स्वयं सहायता समूह को स्वत ड्रोन मिलना योजना का नियम नहीं है। सरकारी दिशा निर्देशों में ऐसी महिलाएं SHGS और कृषि क्लस्टर के चयन की बात है जहां ड्रोन सेवा की वास्तविक मांग हो और उसका उपयोग आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो। इसीलिए चयन प्रक्रिया और स्थानीय जरूरी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके गांव का SHG इस योजना के बारे में जानना चाहता है तो समूह की महिलाएं अपने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि विभाग या संबंधित जिला स्तर के अधिकारियों से आधारिक जानकारी ले। और एक बहुत जरूरी बात, किसी बिचौलिया को सिर्फ इस वादे पर पैसे ना दें कि मैं आपको पक्का ड्रोन दिला दूंगा। सरकारी योजना की जानकारी हमेशा आधारिक माध्यम से वेरीफाई करें।
0: ड्रोन चलाने के लिए लाइसेंस और ट्रेनिंग। ड्रोन उड़ाना कोई खिलौना चलाने जैसा काम नहीं है, इसके लिए निर्धारित नियमों और प्रशिक्षण का पालन जरूरी है। नमो ड्रोन दीदी योजना में चयनित SHG की सदस्य को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। सरकार ने यह भी बताया कि योजना के तहत ड्रोन पायलटों को DGCA द्वारा अधिकृत RPTOS के प्रशिक्षण दिया गया है। इसलिए अगर आपके गांव की कोई महिला ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग लेना चाहती है तो उसे किसी अनधिकृत व्यक्ति या संदिग्ध संख्या में ट्रेनिंग लेने के बजाय अधिकृत व्यवस्था की जानकारी लेनी चाहिए। सुरक्षित ड्रोन चलाने के लिए ट्रेनिंग और नियमों का पालन दोनों बहुत जरूरी है।
1: दोस्तों, ड्रोन कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, उसे बैटरी की जरूरत होती है। योजना के ड्रोन पैकेज में अतिरिक्त बैटरियों का भी प्रावधान रखा गया है। सरकारी ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार पैकेज में अतिरिक्त चार्ज बैटरी सेट सहित कई जरूरी उपकरण शामिल है। सरकार द्वारा साझा अध्ययन में अलग अलग किसान ड्रोन की एक बैटरी पर उड़ान का समय 5 से 20 मिनट तक पाया गया है। यानी ड्रोन सेवा की प्लानिंग करते समय बैटरी चार्ज और खेत तक पहुंचने जैसी चीजें भी महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए ड्रोन दीदी का काम केवल रिमोट पकड़कर उड़ाना नहीं है, पूरे ऑपरेशन की तैयारी और मैनेजमेंट भी जरूरी है।
0: और मैनेजमेंट के साथ एक म्यूजिकल ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम बातें करे जा रहे हैं, गाना तो आपको सुनवा ही नहीं रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तो क्या बात है श्रोता, बहुत ही शानदार वाले आपने गाना एंजॉय किया है। और अब फिर से आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं और हम बात कर रहे हैं नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत एक खास बात। ये महिलाओं को केवल एक मशीन नहीं देती बल्कि नई स्किल सीखने का अवसर भी देती है। एक महिला ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ले सकती है जबकि दूसरे सदस्य या परिवार का सदस्य ड्रोन असिस्टेंट और तकनीकी काम सीख सकता है। इससे ग्रामीण परिवारों में टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई क्षमता विकसित हो सकती है। और आज के समय में स्किल का महत्व बहुत बड़ा है। खेत में मशीनों और डिजिटल टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में गांव की महिलाओं का इन तकनीकों से जुड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका और मजबूत कर सकता है। यानी ड्रोन दीदी सिर्फ आज का काम नहीं है, भविष्य की स्किल भी सीख रही है।
1: अगर हम पूरी योजना को एक आसान उदाहरण में समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है किसान, जैसे खेती में कृषि छिड़काव की जरूरत होती है। दूसरी तरफ महिलाएं SHG जिसके पास योजना के माध्यम से ड्रोन सेवा देने की क्षमता आती है। किसान जरूरत के समय सेवा लेते हैं और SHG उस सेवा के जरिए आय का अवसर बनता है। यानी योजना में सिर्फ महिलाएं या सिर्फ किसान को नहीं बल्कि दोनों को एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश है। सरकार के अनुसार योजना का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकी को बढ़ावा देना, किसानों के लिए कृषि संचालन को अधिक प्रभावी बनाना है और महिलाएं SHGS को आजीविका के अवसर देना है। यही इस योजना की सबसे आसान समझ है। टेक्नोलॉजी गांव तक और गांव की महिलाएं टेक्नोलॉजी के साथ चल रही हैं।
0: तो अब अगर आप हमारे ग्रामीण श्रोता है और आपके गांव की महिला इस योजना में रुचि रखती है तो क्या करें? सबसे पहले अपने महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी रखें, फिर अपने क्षेत्र के

0: वेरीफाई करें, सही जानकारी ले, सही जगह संपर्क करें और तभी आगे बढ़े।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में, एक ऐसी पहल जिसमें ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह को आधुनिक कृषि ड्रोन सेवा से जोड़ने की कोशिश की गई है। ड्रोन खेतों में तरल खाद और कीटनाशक के छिड़काव जैसे कामों में इस्तेमाल हो सकता है। महिलाओं को पायलट और असिस्टेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती है और चयनित SHGS को ड्रोन पैकेज के लिए सरकारी वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस योजना की सबसे खूबसूरत बात यही है कि गांव की महिला को सिर्फ लाभ लेने वाली नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी चलाने वाली और सेवा देने वाली भूमिका में भी देखा गया है। तो साथियों, अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति, हम फिर मिलेंगे नई जानकारी नए एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: मुझे करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
2: कौन है ये?
1: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
3: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
1: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं लेकर हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो हेलो फरमाइश। और साथियों, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:07 और ये खूबसूरत सा समय दोपहर का, जब कुछ लोग अपने कामों से थोड़ा फ्री होकर आराम कर रहे होते हैं और कुछ अपने कामों में बिजी हैं। लेकिन इस बिजी शेड्यूल में भी हमारा एफएम मुरादाबाद 89.6 दिल से सुनते हैं। और जब कार्यक्रम हेलो फरमाइश की बात हो तो स्पेशली टाइम निकाल ही लेते हैं हमारे श्रोता। हाँ, और सच कहूँ तो आपके इस प्यार और वक्त से ही तो हमारा ये रेडियो वाला जो रिश्ता है ना, और खूबसूरत बन जाता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, अपने फर्स्ट कॉलर से बातचीत करते हैं, कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ। बिना किसी देरी के करते हैं उनसे बातचीत। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं
0: जी बताएगा, कैसे हैं सर आप?
1: मैं बहुत ही अच्छे हैं, और जो बनारस का मौसम भी इस समय बहुत अच्छा है, और जो कि धूप खिली खिली है और बारिश तो थोड़ी अभी दूर चली गई है लग रहा है।
0: हाँ जी, हाँ जी, अभी तो बारिश के तो कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ हो भी सकती है, कल शायद बताया हुआ है।
1: जी मैम, हो सकता है कि अगर मौसम में कुछ बदलाव आएगा तो बारिश हो सकती है। और आपके मुरादाबाद में कैसा मौसम है मैम इस समय?
0: हमारे मुरादाबाद की बात अगर करें तो हमारे मुरादाबाद में खिलखिलाती सी धूप है, और अभी का जो करंट टेम्परेचर है हमारे मुरादाबाद का वो 32 डिग्री सेल्सियस है।
1: जी जी मैम, तो 32 डिग्री तो बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छा है।
0: हाँ जी,
1: और मौसम भी अच्छा होगा, बहुत ज्यादा तेज धूप नहीं होगी।
0: हाँ ठीक ठाक धूप धाप है।
1: हाँ।
0: आप बताइएगा सर, आज आपने कॉल किया है काफी समय के बाद और आप हमारे शो की फर्स्ट कॉलर बने हैं, कैसे लग रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा?
1: आपके जो की मीठी आवाज में सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद कि मेरा पहला कॉल लग गया। और बहुत एक दो हफ्ते के बाद फिर मैं फर्स्ट विनरवाना कॉलर हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली आप हेलो फरमाइश के काफी दिन हो गए हैं, तब आप कॉल पर पहले भी जुड़े थे, तभी आप फर्स्ट विनर बने थे ना, फर्स्ट कॉलर बने थे।
1: हमें लग रहा है कि 15-20 दिन पहले की बात है, एक बार मैं फर्स्ट कॉलर हुआ था।
0: हाँ जी, हाँ जी, आई रिमेम्बर, मुझे भी याद आया अभी। और बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे आज से?
1: मैम आज रहेगी फिल्म जीत, और उसमें एक गाना है बहुत ही अच्छा गाना है, तू धरती पे चाहे जहाँ रह गए तेरी धड़कन से पहचान लूंगी।
0: ओके ओके
1: जी मैम, और ये गाना जो मैं पहले फर्स्ट में तो आप रहेंगी, रीना जी रहेंगी, हमारे आनंद भैया रहेंगे, और हमारे कुछ दोस्त हैं मैम, सतीश शर्मा जी चंडीगढ़ से, नेत्रपाल सिंह जी, सुनील भैया बांका बिहार से, प्रिंस पासवान जी, और हमारे एक दोस्त हैं नेपाल से जोड़ते हैं मुक्तिनाथ जी नेपाल से, और त्रिपुरा से हमारे एक अभिनाथ जी हैं, और वही आपके मुरादाबाद से हमारे जो दोस्त हैं जीशान से पीछे जी हैं।
0: ओके,
1: और मुकेश कच्चर जी हैं, और एक रामपाल यादव जी हैं बुंदेलखंड से जुड़ते हैं मैम आपके केंद्र से।
0: हाँ जी, हाँ जी सर,
1: जी जी जी मैम, तो तमाम जो हमारे दोस्त हैं जो लाइव सुन रहे हैं, और मुरादाबाद एफएम के जितने भी हमारे लाइव दोस्त सुन रहे हैं, सबको ये गाना डेडिकेट रहेगा मैम आपके माध्यम से।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया, अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक कलका याग्निक जी साथ में कुमार सानू जी की आवाज में, फ्रॉम द मूवी जीत, एंड ट्रैक भी बहुत ही प्यारा है। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा और सुनिएगा अपनी पसंद का खूबसूरत सा गीत।

0: गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत जो फिल्माया गया था सनी पाजी और साथ में करिश्मा कपूर जी पर। जीत फिल्म का गाना अभी आपने सुना। और बात कर लेते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कहां से जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: जी,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: अकुबा नाम है मेरा।
0: अकुबा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हम मुरादाबाद से बात कर रहे हैं।
0: मुरादाबाद से बात कर रही हैं, बताइएगा क्या करते हैं आप?
1: अभी आप मुझे 5 मिनट पर कॉल कर लेंगी?
0: नहीं, एक्चुअली अभी आप ऑन एयर हैं, जो आपको बात करनी है अभी बात कीजिएगा।
1: अभी लाइट चली गई है।
0: अरे, लाइट जाने से कोई इशू है क्या? आप अभी बात कर रहे हैं ऑन एयर मुझसे, बताइएगा आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज? ओके, चलिए गाना सुनवाते हैं, आप इंजॉय कीजिएगा। शायद कोई इश्यूज हो सकता है एंड फोन शायद उनका चार्ज ना हो, इस वजह से उन्होंने बोला कि 5 मिनट्स में कॉल कर लीजिएगा। एंड एवरीवन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि हेलो फरमाइश में पार्टिसिपेट करें, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके लिए हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और सुनिएगा एक खूबसूरत गीत।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत। बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कामेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ कामेंद्र जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: जानने को बोल रहे हैं, किसी ने कहा है मेरे दोस्त को, बुरा मत कहो, ऐसे कुछ बोलेगा।
0: ओके, बुरा मत देखो,
1: बुरा मत कहो, बुरा मत मतलब देखो सुनो कहो, मतलब ऐसे
0: बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस तरह से लिरिक्स है ना?
1: जी जी हाँ हाँ।
0: ओके ठीक है कामेंद्र जी, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना मोहम्मद रफ़ी साहब जी की आवाज़ में। और आप भी सुनना चाहते हैं कोई बेहतरीन सा ट्रैक जो आपकी दोपहर को बनाएगा खूबसूरत, तो डेफिनेटली आप मुझे ना बिना किसी कहते हैं ना टेंशन की कॉल कीजिएगा। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, रिलैक्स होकर कॉल लगाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत। मैं वापस आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

एवरीवन गुड आफ्टरनून नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आप सभी सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और शो का नाम है हेलो फरमाइश। अभी आपने सुनाई ये खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम की मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में ट्रैक सुना आपने। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी सर क्या नाम है आपका? जी नाम बताइएगा अपना। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी। ठीक है सर सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया। तो चलिए विफन सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी मन। और आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं जो आपके मन को बहुत पसंद है तो हमें कॉल लगाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9883789689। रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: डील करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
2: कौन है ये?
1: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
3: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
1: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: हेलो, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, शो का नाम हेलो फरमाइश। और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं। देखिए दोस्तों, आज 2 अक्टूबर की तारीख है और आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम गांधी जी की जयंती। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
5: हेलो,
4: हाँ जी सर, नमस्कार
5: जी। नमस्कार बहन जी।
4: जी, अपना नाम बताइएगा सर, आप अपना शुभ नाम बताइएगा।
5: बहन जी, मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से बात कर रहा हूँ।
4: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
5: क्या मैम?
4: मैंने आपसे आपके हालचाल जाने, बताइएगा आप कैसे हैं सर?
5: जी बहन जी, मैं ऊपर वाले की दुआओं से और आप सबकी दुआओं से बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और आपसे बातें कर रहा हूँ तो व्यस्त हूँ।
4: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। और प्रोफेशनली क्या करते हैं आप अपनी लाइफ में, जरा बताइएगा।
5: बहन जी, मैं सबसे पहले बताऊंगा, मैं बचपन से देख नहीं सकता हूँ, दिव्यांग हूँ आंखों से।
4: ओके,
5: और मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सिंगिंग करता हूँ।
4: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कुछ सुनाइएगा हमें।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो खैर मैं कहीं बाहर में हूँ।
4: अच्छा, कहीं बाहर हैं आप? ओके
5: जी। और हमारे एक दोस्त हैं।
4: हाँ जी बताइएगा।
5: परवेश अहमद भाई शुक्लपुरा वाराणसी से।
4: हाँ जी,
5: मैं बताऊं बहन जी, मैं बताऊं कि मैंने जो भी कुछ सीखा है, हमारे जितने भी दोस्त हुए हैं
4: जी,
5: वो रेडियो की ही देन है, जो कि आज हमारे पास कई सारे दोस्त हैं मौजूद।
4: जी सर।
5: और रेडियो पे कहीं ना कहीं हमें जुड़ने की प्रेरणा देते रहते हैं।
4: बिल्कुल। और अभी सर का कॉल भी आया था, आज हमारे शो के फर्स्ट कॉलर बने हैं सर आपके फैन।
5: जी, वो उनको पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई विनर बनने की।
4: हाँ जी
5: भाई को।
4: जी,
5: और हम यूं ही चाहेंगे कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, है ना
4: जी सर।
5: और विनर ही ना बने, हम जैसे दोस्तों को कुछ ना कुछ सिखाते भी रहे, हम तो यही कहेंगे, और रेडियो से जोड़ते रहे।
4: तो कैसे लगते हैं आपको, आप इतने खूबसूरत रेडियो के साथी हैं एंड रेडियो आपका साथी है, कैसा लगता है आपको रेडियो के साथ टाइम स्पेंड करना?
5: मैं अगर एक बात बताऊं बहन जी, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं रेडियो से कितना भी पीछा छुड़ा लूं, लेकिन रेडियो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा।
4: अच्छा,
5: मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कई बार चाहती अरे अब छोड़ो यार रेडियो क्या सुना, लेकिन रेडियो जैसा लगा कि हमारे पीछे अड़ चुका है कि बाबू तू हमसे कहाँ भाग के जाओगे, हम कहीं ना कहीं तुम्हारा जो है ना साथ पकड़ ही लूंगा।
4: जी जी जी जी बिल्कुल।
5: और कहते हैं ना बहन जी कि जिसका जो जिसका दोस्त होता है वो उसे लाख पीछा छोड़ा ले, लेकिन वो उसका पीछा छोड़ नहीं सकता।
4: नहीं छोड़ सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बताइएगा, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं सर, क्या सुनना चाहते हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
5: आज तो बहन जी आप अपने पसंद का कोई गीत सुनवा दीजिए, देशभक्ति गीत। और वैसे तो आज गांधी जयंती है, तो सबसे पहले तो रेडियो मुरादाबाद के पूरे परिवार की तरफ से गांधी जी को बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
4: जी।
5: और इसी से श्रद्धांजलि से ही तो उनको ये कर एक अगर गीत हो तो आप हमें सुनवा दीजिए। ये गीत है होगा अगर आपके पास, जो अमर में जो समर में हो गए अमर, मैं उन किया वो मैं उनके कैसा एक गाना है ना, जो समर में हो गए अमर गा रही हूँ श्रद्धा गीत धन्यवाद में, इस तरह कोई गीत अगर होगा तो सुनवा दीजिएगा।
4: ठीक है सर, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।
5: ये गीत सबसे पहले आपको परवेज भाई को, शारदा प्रसाद प्रजापति जी को, प्रिंस भाई को, गौरव भाई को और जितने रेडियो मुरादाबाद सुन रहे हैं उन सभी को, लेकिन एक आदमी को अगर छोड़ देंगे वो बंदा शिकायत लगा देगा, और वो है हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले जेठालाल जी, रणवीर सिंह जेठालाल।
4: वो हाँ, मुरादाबाद के ही लिसनर है हमारे।
5: अगर उनको छोड़ दें तो कल के दिन वो हमें कहेंगे भैया हमें अब शामिल नहीं चाहिए।
4: जी तो चलिए सुनवाते हैं ये प्यारा सा देशभक्ति गीत। आपने हमें कॉल किया सर, धन्यवाद आपका, अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। जी तो चलिए एवरीवन सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: दोस्तों अभी आपने सुना एक प्यारा सा खूबसूरत सा देशभक्ति गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में, लता जी की आवाज में। और अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो हेलो हेलो फरमाइश, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? एवरीवन, मैं आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप ऐसा ना किया कीजिए। मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, आप फ़ोन लगाकर इधर उधर क्यों चले जाते हैं? आपको पता है ना कि कितनी मेहनत से आप लोग कॉल लगाते हैं, और हमें भी नहीं अच्छा लगता है कि हम आपका कॉल डिस्कनेक्ट करें। तो दोस्तों आप मुझे कॉल लगा सकते हैं, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9883789689। इस नंबर पर आप कॉल लगाइए और अपने पसंद का गाना सुनते जाइए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। एंड उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम भी हो गया है।
1: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: दोस्तों, मन मन मस्त मगन तो हो ही जाता है जब इतने प्यारे प्यारे गीत संगीत सुनने को जो मिल जाते हैं। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर सुन रहे हैं आप हेलो फरमाइश शो। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम गोलू साहू है भाई।
0: गोलू साहू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप जी? सॉरी, दोबारा से बताइएगा। जी बताइएगा, कैसे हैं आप और क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: जी मैडम, मेरी ये फरमाइश थी, मुझे एक गाना सुनना था।
0: हाँ जी बताइएगा, कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: फिल्म का नाम है कच्चे धागे
0: जी,
1: और गाने का बोल दिल परदेसी हो गया।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका। आप एंजॉय कीजिएगा अपने रेडियो सेट पर ये खूबसूरत सा ट्रैक। तो एवरीवन, आप भी मुझे बिना किसी देरी के जल्दी से कॉल लगाइएगा। लेकिन जिनका कॉल लग चुका है इस वीक, प्लीज वो दोबारा कॉल ना करें, नए लिसनर्स को भी मौका दें ताकि वो भी इजीली कॉल लगा पाएं और अपनी फरमाइश की गीत वो भी सुन पाएं।

0: बिल्कुल दीवाना तो है आपका दिल, तभी तो आप इतना कॉल करते हैं हमें। स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शुक नाम हेलो फरमाइश है और खुशी आपके साथ है। ये खूबसूरत गीत आपने सुना लता मंगेशकर जी और साथ में कुमार सानू जी की आवाज में प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल परदेसी हो गया। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। कच्चे धागे फिल्म का एक खूबसूरत गीत आपने सुना दिल परदेसी हो गया और हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: सबसे पहले आपको प्यार भरा आदाब।
0: आपको भी आदाब। अपना नाम बताइएगा आप सर।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेमती मोहम्मद दानिश सिद्दीकी जी बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप सर?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आप बताएं आप कैसे हैं और स्टाफ कैसा है आपका?
0: हाँ जी ऑल गुड, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, काफी समय के बाद आज आपने कॉल किया है, कैसा लग रहा है आपको? हेलो फरमाइश में आप हमारे साथ जुड़े हैं।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मैम। खुशी तो इस बात की मैम, पहली बार नंबर लगाया तो पहली बार में ही जो है कॉल लग गई।
0: तभी आप इतना मुस्कुरा रहे थे। हाँ जी
1: जी जी, प्रोग्राम तो मैं सुन रहा था।
0: ओके,
1: जब मैंने कॉल ट्राई की तो कॉल मेरी पहली बार में ही लग गई।
0: अच्छा, पहली रिंग गई और आपने फटाक से हमने कॉल रिसीव कर लिया, तो आप इतना खुश हो रहे थे, आपको यकीन नहीं हो रहा था। हाँ
1: जी,
0: होता है सर। बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है प्लेटफार्म और उसका गीत के बोल है इस बात का बहाना अच्छा है, बरसात का बहाना अच्छा है, ये सुनवा देना। और ये जो सॉन्ग है मेरे खास फ्रेंड है रामपुर यूपी से मोहम्मद कामिल, उन्हीं को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ट्रैक। आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया, मोस्ट वेलकम सर। तो एवरीवन, आज सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्माइल डे, तो आप भी मुस्कुराइए, कॉल लगाए इसलिए भी। और अगर कॉल आप लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो भी मुस्कुराइए। देखिए, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। जब जिंदगी में हम मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। लाइक सिचुएशंस चाहे कैसे भी हो, अपने आप को संभालना, दर्द में भी मुस्कुराना, एक अलग ही मोटिवेशन खुद को हम दे पाते हैं अपने आप को भी। मुझे लगता है कि कोई सामने वाला पर्सन मोटिवेट हमें करे या फिर कोई ऐसी मोटिवेशन देने वाला, स्पीच देने वाला कोई पर्सन हमें मिले, तो बहुत मुश्किल होता है कोई मिलता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद को भी कभी कभी मोटिवेट करना चाहिए, कभी नहीं एवरी डे हमें मोटिवेट करना चाहिए खुद को ही, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और रास्ते कहीं ना कहीं बहुत कठिन होते हैं, आपको ही आगे बढ़ते जाना है। लेकिन हाँ, उसका सामना आप, अगर कोई भी मुश्किल आ रही है तो उसका सामना आप धैर्य के साथ कीजिएगा, स्माइल अपने चेहरे पर बरकरार रखिएगा और सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत। मैं वापस आती हूँ।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अभी आपने एंजॉय किया ये प्यारा सा ट्रैक कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में। और बात करते हैं अभी अगले कॉलर से, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर क्या नाम है आपका?
1: जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे श्याम टेलर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार, बताइएगा अपना शुभ नाम।
1: जी मैं हूँ।

0: श्रोता, संघ जिला मंदसौर तहसील शामगढ़ मध्य प्रदेश से राधे श्याम टेलर बात कर रहा हूँ।
1: राधे श्याम जी बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं आप सब।
0: बस बढ़िया है, आप कैसे हैं और आपके यहाँ का मौसम कैसा है।
1: हमारे मुरादाबाद का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और हम भी ठीक हैं, बताइएगा आप क्या फरमाइश है आपकी सब।
0: जी पहले तो सुनने वाले श्रोताओं को मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा आपकी इजाजत हो तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइएगा
0: जी। तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है, एंड तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है मगर मिलने में बड़ा खर्चा लगता है।
1: अरे वाह क्या बात है,
0: है ना। और मैं ये इसी के साथ सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है आग का गोला।
1: हाँ जी।
0: और गीत है आया आया वो आया यार मेरा आया रे, बिछड़े यार मिले हैं दौर नए चले हैं, नया नशा छाएगा आज मजा आएगा, आया आया रे यार आया रे आया आया रे।
1: ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत आपको, आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद। एंड चलिए श्रोताओं सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी कॉल लगाइए।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। खूबसूरत सफर में आप मेरे साथ हैं और शुभ नाम हेलो फरमाइश है, जहां पर आप मनपसंद के गाने सुनते हैं अपने। और हमारे साथ हमारे नेक्स्ट लिस्नर भी कनेक्ट हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? जी बताइए गानिखर जी, कहाँ थी आप इतने दिन से? हाँ
1: जी, तो मैं
0: जानते
1: ही, लेकिन और श्रोताओं को मौका दे रही थी।
0: ओ हो, हम भी तो सोचे हमारे डियर लिस्नर का कॉल क्यों नहीं आ रहा है।
1: हाँ जी, मैं सुन तो रही थी लेकिन मैंने कॉल नहीं की, मेंशन किया ना थोड़ा।
0: हाँ थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, थोड़े नए लिस्नर्स को भी मौका देते हैं, राइट? बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। ऐसे लिस्नर अगर हमें मिल जाए तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। सब कुछ समझना चाहिए। और बताइएगा आप कैसे हैं, फैमिली में सब आपकी?
1: जी मैम, सभी बहुत ही अच्छे हैं, घर पे भी और मैं भी।
0: अरे वाह। हाँ जी, हम लोग भी ऑल गुड, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। एंड बताइएगा निखत, आज आप हमारे साथ जुड़े हो, क्या सुनना चाहते हो?
1: जी मैं सॉन्ग सुनूंगी, गुनगुना सकती हूँ?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, गुनगुनाइए। हमने कब रोका है आपको?

0: तेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना।
1: अरे वाह, लगता है आसपास मम्मी नहीं है आपके यहाँ, तभी इतना जोर से जा रही है।
0: अकेली थी इसलिए ना।
1: समझ गए, इतनी लाउडली आप गा रहे हो तो मुझे लगा कि पक्का घर पे कोई नहीं है अभी।
0: अम्मी होती है तो शर्म सी लगती है, कहा तो उनके सामने भी ना लेकिन शर्म लगती है।
1: तो आपने मम्मी का ना होने का फायदा उठाया है। हाँ
0: आदि क्यों ना फायदा उठा लिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने, अपने दिल की ख्वाहिश आज आपने पूरी कर ली ये गाना गुनगुना कर।
0: हाँ जी।
1: अच्छा गुनगुनाया है तो ये प्यारा सा गाना आप सुनना चाहते हो?
0: हाँ जी, मैं आपके साथ और स्पेशल बन के लिए।
1: ठीक है, सुनवाते हैं ट्रैक आपको। थैंक यू सो मच आपने हमें कॉल किया।
0: थैंक यू दी, बाय
1: बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आपको भी फोन लगाना है।

0: दोस्तों अभी आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। कमाल खान जी की आवाज में ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी द डर्टी पिक्चर से। और अभी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: हाँ जी आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बिजनेस रिजवान खान बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप रिजवान जी?
1: मैं बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मूवी है मैम जीवान था नई बाकी।
0: हाँ जी
1: उसमें सॉन्ग है रेशमा जी की आवाज में और अपना दिमाग मुश्किल
0: जी। और ये गीत आप किनके साथ सुनना चाहते हैं?
1: फैमिली मेंबर है मैम, भाई हैं, बड़े भाई साहब हैं मोहम्मद बशीर खान साहब, मुझसे बड़े हैं इमरान खान साहब, मुझसे छोटे जो हैं उस्मान केलर।
0: अच्छा अब वो आप ही के ब्रदर हैं?
1: हाँ छोटे भाई हैं।
0: ओके उनके भी कॉल आते हैं ना फरमाइश कार्यक्रम में?
1: मैसेज देखते हैं वो कॉल भी करते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी मैसेज भी करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो ठीक है सुनवाते हैं गाना आपको, आपने हमें कॉल किया शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837898968।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी के साथ हैं आप और शो चल रहा है फोन इन कार्यक्रम। लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां पर आप हमें कॉल लगा सकते हैं, अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं जो गाना आपके दिल के बेहद करीब है। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार। हेलो,
1: नमस्कार
0: सर, अपना नाम बताइएगा। जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैंने पूछा है, आप बताइएगा कैसे हैं सब। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप दूसरा गाना बताइएगा। हाँ जी, अरे वाह, क्या बात है। ठीक है सर, सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद जी, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार जी की आवाज़ में, और आप भी प्रयास कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपका कॉल भी डेफिनेटली लगेगा।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और देखिए, जवाब तो उन श्रोताओं का भी नहीं है जो ऑलरेडी कॉल लगा चुके हैं इस वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे भी, लेकिन आज भी कॉल कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आप अपने मुरादाबाद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एवरीवन हमें एंड मैं बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप नेक्स्ट न्यू लिसनर्स को भी मौका दीजिए। अगर आप ही एवरीडे कॉल लगाएंगे तो जो न्यू लिसनर्स हमारे साथ अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जो अभी हम ही हमें सुन रहे हैं, उनको भी तो कॉल लगाने का अवसर दीजिएगा। एंड जब आप थोड़ा सा गैप लेंगे तभी तो उनको भी कॉल लगाने का मौका मिलेगा ना। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बताइएगा अपना नाम।
1: हवा जाके उनसे ये पैगाम कहना, हाले दिल उनसे खुले आम कहना, और उनको तो आती ना होगी याद हमारी, हम उन्हें याद करते हैं सुबह शाम कहना। मैडम जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, क्या नाम है आपके सर?
1: मैडम मैं ग्राम है चोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से, तौफीक अहमद मंसूरी बात कर रहा हूँ आपसे। मैडम
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: मैडम बढ़िया सर, आप बताए बस।
0: हम भी ठीक है, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैडम फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।
0: हाँ जी।
1: और उसमें गाना है क्या करते थे साजना तुम हमसे देर दूर रह के। मैडम गाने से पहले कुछ कहना चाहूंगा।
0: जी जी जी कहिएगा।
1: कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, और हमारी आंखों के आंसू तुम्हारी पलकों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहर गई एक झील की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे।
0: बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं आपकी सब। मोस्ट वेलकम, सुनिएगा एक खूबसूरत सा गाना। तो चलिए एवरीवन सुनवाते हैं प्यारा गाना। आप भी हमें कॉल कीजिएगा बिना किसी देरी के। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। मैं लौट कर आती हूँ।

0: हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। सुन रहे हैं आप हेलो फरमाइश, और अभी आपने सुना बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी लाल दुपट्टा मलमल का, एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था अनुराधा पौडवाल जी ने और साथ में मोहम्मद अजीज जी की खूबसूरत सी आवाज। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हाँ जी सर नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा आप और कहाँ से बात कर रहे हैं सर।
1: मैडम मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया गेट कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट रामपुर से।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप सर।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हैं मैडम।
0: हम लोग भी गुड हैं, बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा आज आपने हमें कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी।
1: मैं फरमाइश करना चाहूँगा आपसे चुमलू होट से दिल की यही ख्वाहिश है कि मेरी नहीं प्यार की फरमाइश है, ऐसी कोई गीत ही बोले ये गीत लगा देना।
0: जी ये गीत आपको सुनवाते हैं सर, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू।
0: तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत से गीत, लौट कर आते हैं हम, तब तक आप हमें कॉल कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खूबसूरत गानों का आनंद लेते रहिए।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

मुरादाबाद के लिए। अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोट

0: हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी शादी में जरूर आना ट्रैक। इस मूवी का गाना अभी आपने सुना आशीष कौर की आवाज में, तो बंजा गली बनारस की। और बनारस का नाम सुनते ही ना दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, साहब उसका ठाकी बुल्ला की जारत के बीच है, नदी पे से बोल रहे हैं हम मुरादाबाद को।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप सर। जी जी जी बताइएगा कौन सा गीत आपको सुनना है सर।
1: ये मेरे हम सफर।
0: अच्छा
1: जरा इंतजार।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो चलिए विवान सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी कयामत से कयामत तक। और अभी मुझे भी दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूँगी आपसे संडे मॉर्निंग। एंड तब तक के लिए सुनती रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। वंस अगेन गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज वर्ल्ड स्माइल डे भी है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी इतने ब्यूटीफुल डे पर आप मुस्कुराए नहीं तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो मुस्कुराइए एवरीवन, ज़रूरी नहीं है कोई मुस्कुराने की वजह मिले तभी मुस्कुराएं, बेवजह भी कभी कभी मुस्कुरा लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी और फेस के लिए भी। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से, अपनी फैमिली का भी। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर।

0: मैं हरि बिनु क्यों जीऊं यदि माई। मीराबाई का प्रसिद्ध पद भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य और गाढ़ भक्ति को समर्पित। जब वो अपनी माँ यानी माई से कहती है कि हे माँ, मैं भगवान के बिना कैसे जीवित रह
1: सकूंगी,
0: और अब मैं गिरधर आगे नाचूंगी। बहुत ही सुंदर पद, और यहाँ पर प्रसिद्ध गायक भाई बलदीप सिंह और उनकी जो सहयोगी कलाकार हैं वो इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इस प्रस्तुति को सुनिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा चलावत की।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ अब कनेक्टेड श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 5:34 हो चुके हैं और आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है। और समय की बात करूं तो भाई देखिए 5:34 हो चुके हैं और अगर अभी तक आपने चाय नहीं पी है तो पी लीजिए, क्योंकि शाम होते होते भैया एक ही दिमाग की जो बत्ती है ना वो काम करता नहीं है, उसको सिर्फ चाहिए चाय या फिर कॉफ़ी, ब्लैक टी, लेमन टी। पीने के बाद ही बॉडी में ना एक अलग ही एनर्जी आती है और उसके बाद ही मन करता है कि हाँ भाई कोई और काम शुरू करते हैं, अदरवाइज तो फिर दिमाग की बत्ती वही डुल हो जाती है। और आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर का जो दिन है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास है, क्योंकि आज मनाए जाते हैं बहुत ही खास डे। एक यानी कि जो हम हमेशा 2 अक्टूबर को कहते हैं कि आज गांधी जी की जयंती है, लेकिन गांधी जी की जयंती के साथ साथ एक ऐसे महान व्यक्ति की जयंती है ना कि भाई क्या ही कह सकते हैं। उन्होंने जो देश के लिए किया अलग ही नेक्स्ट लेवल वाला, और साथ ही आज वही यानी कि 180 लोगों की जान बचाना, 180 यात्रियों की जान बचाया। आखिरकार कौन है ये तीनों महान, इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना आपको सुनवाते हैं, फिर मैं कनेक्ट होती हूँ और फिर इनके बारे में बात करती हूँ।

क्या बात है जी, अलका याग्निक और सानू निगम जी की आवाज में, सोनू निगम जी की आवाज में ये आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। प्यार दिलों का मेला है। और अलका याग्निक की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतने सारे गाने दिए, जिनके गाने हम सुनकर एक अलग ही एहसास और अपने जिंदगी से रिलेट करते हैं, आज वही अपने कानों से सुन नहीं सकती है। सोचिए, जिन्होंने हमें इतने सारे गाने दिए और आज वही इन गानों को खुद नहीं सुन पाती हैं। फिलहाल आप इवनिंग मस्ती शो में आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और समय की बात करूं तो 5:39 हो चुके हैं और आज 2 अक्टूबर बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास डे मनाया जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर है और ये तारीख अपने आप में बहुत खास है क्योंकि आज देश के 2 महान व्यक्तियों को याद किया जाता है, महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। अब सवाल ये है कि आखिर दोनों के जयंती एक ही दिन क्यों मनाई जाती है, तो मैं आपको बताती हूँ, वेट करिए आप, क्योंकि दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। महात्मा गांधी जी की अगर मैं बात करूँ तो 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करूँ तो 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, लेकिन दोनों की पहचान और देश के लिए उनका योगदान अलग अलग रहा। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और आज़ाद भारत के लिए दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। वही सादगी, ईमानदारी और मेहनत के लिए याद किए जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी।

यानी एक तरफ गांधी जी हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाते हैं और दूसरी तरफ शास्त्री जी हमें सादगी, मेहनत और देश सेवा की सीख देते हैं। तो आज सिर्फ इन दोनों महापुरुषों की तारीख पर फूल चढ़ाने का दिन नहीं है, बल्कि ये सोच का दिन है कि इनके बताए रास्ते हम अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं अपना सकते। हमें अपनाना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। 2 अक्टूबर दो महान व्यक्तियों और सीखें ऐसी जो आज भी उनकी बातें याद की जाती है और उनकी जयंती मनाई जाती है। तो हमारी रेडियो की टीम की तरफ से, आप सभी की तरफ से इन दो महान व्यक्तियों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ एक प्यारा सा गाना जो कि इनके लिए है, लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के लिए। कहते हैं ना, हर मैदान फतेह, यानी कि हर मैदान कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आप उसको बस पार करते चलो और देखो फिर आपकी नैया कैसे इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। तो फिलहाल इस गाने को एंजॉय करेंगे, उसके बाद मैं कनेक्ट होंगी और आज 2 अक्टूबर के इस अवसर पर, यानी कि आज बहुत गवर्नमेंट छुट्टियां भी हैं और मेरे और आप जैसे हैं जो आप सभी के बीच हम आ गए हैं बात करने के लिए, क्योंकि छुट्टी भी हो जाए ना तब भी पूरा दिन ऐसा लगता है कि करे तो क्या करे। तो जैसे मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, आप बहुतों की छुट्टियां भी है, बहुतों की छुट्टियां नहीं भी है, तो हम सभी मिलकर इंजॉय करते हैं। और फिलहाल ये गाना आप इंजॉय करिए, लौट कर आते हैं और बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिसने 108 यात्रियों की जान बचाई है अपनी जान पर खेल कर। हालांकि कह भी सकते थे कि नहीं मेरे को चोट लगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और हनुमान चालीसा, उस टाइम जब उनके साथ ये हादसा हुआ तो हनुमान चालीसा वो रिपीट कर रहे थे। तो हनुमान चालीसा में बहुत पावर है, लेकिन सच्चे दिल से अगर आप करते हैं तो चलिए फिलहाल उसके बारे में बात करेंगे, उस महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। फिलहाल गाना सुनते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 5:49 हो चुके हैं। और आज की तारीख 2 अक्टूबर अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि आज महादेश की महान दो वीरों की जयंती है, यानी कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का। और साथ ही साथ जो कि 180 यात्रियों की जान बचाना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, क्योंकि हमें छोटी सी भी चोट लग जाती है ना, तो हम उसी में कोई भी काम नहीं करते हैं, उसका बहाना ले लेते हैं कि नहीं मेरे को चोट लगी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उस इंसान को देखिए जो खुद घायल फिर भी इतना हौसला बुलंद है कि 180 यात्रियों को अच्छे से उन्होंने फ्लाइट से उतारा, ये बिना परवाह किए कि अपनी जान तो जैसी है ठीक है, लेकिन ये जो 180 यात्री हैं उनके साथ कुछ नहीं होने चाहिए। यानी कि मैं बात करूँ स्मित मंचार की, जिन्होंने सुरक्षित सभी को नीचे उतारा, और जब उनको जब वो घायल हुए तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, हनुमान चालीसा, कि कैसे भी बस विमान अच्छे से नीचे उतर जाए और सभी यात्री सुरक्षित रहें, जो कि ये 2026 में हुआ। अगर मैं बात करूँ 1986 में भी ऐसा ही हुआ था। उस टाइम निर्जा भटोन ने सभी यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाया था, जो कि उस टाइम 350 यात्री बताए जा रहे थे कि फ्लाइट में मौजूद थे। इन्होंने भी अपनी जान के परवाह किए बिना सभी यात्रियों की सुरक्षा की थी, और मानव जो अपनी ईमानदारी है ना उसका परिचय दिया था। तो ये होते हैं देश के महान वीर, उनके लिए सच में दिल से सैल्यूट है कि उन्होंने अपनी जान बचाए, अपनी परवाह किए बिना सबकी जान बचाई। तो हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से, आप सभी की टीम की तरफ से गर्व होता है ऐसे महान व्यक्तियों पर, कैप्टन स्मिथ जी के ऊपर और भटोन जी के ऊपर, जिन्होंने कहते हैं ना कि चोट तो एक बहाना होता है लेकिन उससे जूझना आपकी हुनर होती है, और उन्होंने इसी हुनर के साथ सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा और सुरक्षित उनके घर पहुंच चुके हैं। और अब बस भगवान से यही कामना किया जा रहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जो घाव होती है ना वो सिर्फ उनको नहीं लगी है, जितने यात्री बैठे थे उनको वो घाव लगी है, और सब प्रे कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। फिलहाल हमारी तरफ से भी यही कामना है भोले बाबा से, हनुमान जी से, कि वो जल्दी ठीक हो जाए और अपने फैमिली के साथ खुश रहे और फिर से अपनी यात्रा को शुरू करे। और एक और गाना सुनते हैं और लौट कर आती हूँ मैं आप सभी के साथ, ढेर सारी हम बातें करेंगे आज, और साथ ही साथ मैसेज की बात करूँ तो मैसेज पहुँचा। गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? आपका शो सुन रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सभी सुनने वालों को गांधी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू कुमार जी, सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। और सिर्फ आज गांधी जी का ही जयंती नहीं है जी, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, जिन्होंने ईमानदारी और मेहनत के साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और आज़ादी के लिए वो भी खड़े रहे। तो आज सिर्फ महात्मा गांधी के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से भी जाना जाता है इस देश को। चलिए फिलहाल बात हम करते रहेंगे, एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद लेकर आती हूँ और

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आप आज रीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी बात करूं समय की तो 5:59 हो चुके हैं और आप आज रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट है। और आज का दिन बहुत ही खास है और बात करें तो शाम का वक्त है, दिन भर की भाग दौड़ और थोड़ी थकान है ना रह जाती है, और शायद आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप कितना भी थके रहे और जब आपके चेहरे पर मुस्कान होती है ना, तो जो आपकी बॉडी की रक्त संचार होती है वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आती है और आपके चेहरे पर एक अलग ही रौनक, एक अलग ही नूर दिखता है। और जब परेशान रहते हैं तो फेस की जो झुर्रिया है ना वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसीलिए हर सिचुएशन में कोशिश करें कि आप हैप्पी रहे। और हैप्पी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज है स्माइल डे। एक छोटे से मुस्कान के नाम जो कभी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। हम सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, किसी को काम की टेंशन है, कोई पैसे को लेकर परेशान है, कोई अपने परिवार से दूर है और कोई बाहर से बिल्कुल खुश दिखता है लेकिन अंदर से बहुत कुछ सह रहा होता है। ऐसे में अगर कोई हमें देखकर बस इतना कह दे चलो मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो आज तुम भी, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी मुस्कुराइए, सब ठीक हो जाएगा। यकीन मानिए, जो मुस्कुराना सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल की पहचान होती है। और आज स्माइल डे पर किसी अपने को एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए, किसी से प्यार से बात कर लीजिए, और अगर कोई उदास दिखे तो उसे अकेला मत छोड़िए, क्योंकि अकेला इंसान और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। हमारी एक छोटी सी मुस्कान किसी के लिए इतनी बड़ी वजह बन जाएगी जीने की, कि आगे बढ़ने की ओर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। और कहते हैं ना, आज की लाइफ में किसी को

कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सोनोवाल ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा संचालित जवाहर द्वीप मरीन ऑयल टर्मिनल को प्लास्टिक मुक्त ऑयल टर्मिनल घोषित किया गया। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी को मजबूत करेगा और किसानों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। श्रीमती सीतारामन ने आज अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले में रायलसीमा वैश्विक बागवानी केंद्र परियोजना और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री ने किसानों को सहयोग देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीनन बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 30-35 कांस्य सहित 76 पदक लेकर आगे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेता परवीन हुड्डा और सुजीत कलकल को उनकी जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा।
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि अगर मैं बात करूँ समय की तो 6:07 हो चुके हैं। और आजकल आपने कॉमन बातें हर किसी से सुनते हुए या फिर खुद भी महसूस करते हुए आपने ये फील किया होगा कि, और हर किसी से सुना भी होगा कि मूड खराब है। आजकल हर किसी का मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन याद रखिए मूड एक केमिकल स्टेट है जो कि आप उसको ट्रांसफॉर्मेट कर सकते हो, एक एनर्जी में परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसको एनर्जी में परिवर्तन करना तो करना कैसे, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, क्योंकि हम अक्सर समझ नहीं पाते कुछ भी। जब भी आप बैठे हुए होते हैं, लेटे हुए होते हैं या फिर कुछ काम करते हैं, तो आपकी ब्रेन से एक अलग ही संदेश आप तक पहुंचता है कि आपके अंदर लेजीपन फील हो रहा है या फिर आपका मूड खराब है, चिड़चिड़ापन आ रहा है आपके अंदर कि आप किसी की बात सुन नहीं पा रहे हो। तो मैं आज आपको 3 एक ऐसी बात बताऊंगी कि अगर जो आपके अंदर ये फील होता है कि मेरा मूड खराब हो रहा है, चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है। जब भी लगे कि मेरा मूड खराब है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो एकदम आपने जहां भी आप बैठे हैं, जिस सिचुएशन में आप है, चाहे लेटे हुए हैं, चाहे ऑफिस में है, तो देखिए आप कोशिश करिए कि किसी से, ऐसा नहीं कि गलत शब्द यूज नहीं करने, किसी से भिड़ना नहीं है आपने, लड़ाई नहीं करना है, बल्कि अगर आप अकेले हैं तो आपका जो पसंद के गाने हैं वो आप सुनिए, जो आपकी इच्छा, जो आपको लगता है कि मुझे अंदर से ये खुश करता है, उस काम को आप करिए। अगर आप घर है तो जहां बैठे हैं वहां से उठिए और कम से कम 20-25 कूदिए, जंप करिए, क्योंकि एनर्जी को हाई करना है आपने। अगर आप एनर्जी हाई नहीं करेंगे तो मूड खराब, लेजीपन आपको फील होता ही रहेगा। तो ये आपने करना है। और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो कोशिश करिए जब आपका मूड खराब है तो किसी को गलत शब्द नहीं बोलने हैं, बल्कि आपको कम से कम 20-30 लगाने हैं, बिल्कुल फास्ट में तेज जाना है आपने। ये नहीं कि मैं लेजी, क्योंकि खुद भी लेजी फील हो रहा है और मूड भी खराब है, तो आप लेजी चलेंगे तो उतना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए आप जितना हो सके वॉक करिए और फिर आप अपने अंदर एक पावर को महसूस करेंगे कि जब आपकी बॉडी के अंदर परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा कि आपका ब्रेन एक अलग ही अब संदेश दे रहा है। तो आपने जब भी ऐसा फील होए, मूड खराब हो रहा है, लेजीपन फील हो रहा है, तो अगर आप जितना सोचेंगे और एक जगह बैठे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग और ज़्यादा खराब होता जाएगा, चिड़चिड़ापन फील होता जाएगा। इसीलिए एकदम आपने खड़े होना है, रनिंग अपने फास्ट चलना है, जंप करना है, और कुछ मतलब कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ आप करें ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे और आपके लेजीपन आपका दूर हो जाए। फिलहाल एक मेरे पास वॉइस मैसेज भी आता है तो मैं इसको भी सुनवाती हूँ आपको और फिर इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अपने शो में।
1: गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? और सब कुशल मंगल। आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और कोई एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। आज मुस्कान डे भी है, स्माइल डे, तो गाने का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। तो गाना है हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, ये स्माइल डे के ऊपर गाना है और बहुत ही अच्छा गाना है, आपको जरूर सुनाना पड़ेगा, ठीक है?
0: मैं दानिश बोल रहा हूँ। ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे क्योंकि हंसते हंसते कट जाएंगे ये रास्ते, और आप आई नो कि आप ऑन द वे हैं अभी, क्योंकि आपके जो बैकग्राउंड से सनसनाहट की आवाज आ रही है वो साफ ये बयां करती है कि आप अभी राइट नाउ ऑन द वे हैं। तो मैं इस गाने को आपको डेफिनेटली सुनवाऊंगी, और कोशिश करिए कि किसी की आप तारीफ कर दे, और कोई मतलब लग रहा है कि उसका मतलब मूड खराब है तो आप हंसाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपसे बड़ा कोई इंसान नहीं है। चलिए फिलहाल इस गाने को हम सुनवाते हैं और बने रही आर्जेरीना के साथ। ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे। गुड नाइट।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

जी बस मेला बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है अपने रामलीला ग्राउंड में, क्योंकि तैयारी अभी से ही जोरों शोरों पर है। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है, और समय की बात करूं तो 6:18 हो चुके हैं। और आज की तारीख 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर, आई नो कि बहुत ऑफिस की छुट्टियां भी है और बहुत से ऑफिस में काम भी कर रहे हैं इसी छुट्टी के मौके पर। यानी कि देखिए बॉलीवुड में ना बड़ा ही कहते हैं ना, कुछ चीजें जब आप दिमाग लगाकर काम करते हो ना तो वो काम आपका सक्सेस जरूर हो जाता है। और मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दृश्यम 3 मूवी यानी कि सिनेमा घरों में रिलीज हो। अगर इसकी फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो 2015 में रिलीज हुई थी, सेकंड की बात करूँ तो 2022 में रिलीज हुई थी। अब ये दृश्यम 3 जो कि 2026 में रिलीज हुई है आज ही के दिन सिनेमा घरों में। 2 अक्टूबर है और आज बहुतों की छुट्टियां भी है, तो सभी ने ये प्लान तो जरूर करा है भैया कि छुट्टी है तो इस छुट्टी को ऐसे ही नहीं गंवाते हैं बल्कि इसको सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली वालों के साथ मूवी देखने चलते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी मूवी कलेक्शन टिकट्स कलेक्शन की, तो करीब 1.85 लाख टिकट बुक हो चुके हैं। यानी कि आज छुट्टी है और सभी मूवी के भैया की छुट्टी होता है ना तो यही सोचते हैं कि चलो फैमिली वालों के साथ मूवी देख लेते हैं, कहीं टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो अगर आपने ये मूवी देख ली है, आज रिलीज हो गई है सिनेमा घरों में, तो बहुत ही बढ़िया बात है। वेल, अगर आपने नहीं देखी तो ये मूवी जरूर देखिएगा, बहुत ही फैंटास्टिक बताई जा रही है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि हर जगह नहीं है, हर थिएटर में नहीं है, बहुत थिएटर में ये लागू किया गया है कि अगर दृश्यम मूवी के टिकट्स अगर आप 4 लेते हैं, इनफैक्ट 4 से आप ज्यादा लेते हैं, तो आपको पाव भाजी खाने का मौका मिलेगा वाउचर के रूप में। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, और साथ ही साथ मूवी देखना भी चाहिए फैमिली वालों के साथ। और कहते हैं ना ये जिंदगी है और इसको हंसते हंसते गुजर जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए कहते हैं ये दिन ना मिलेगा फिर, इसको जितना हो सके एंजॉय कर लो। और ये गाना आपको सुनवाती हूँ जो कि बहुत शानदार है, मेला मूवी से ये गाना है।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जुरीना के साथ अब कनेक्टेड श्रोता। और समय की बात करूं तो समय यानी कि 6:30 यानी कि 6:30 हो चुके हैं और आप आर्जुरीना के साथ कनेक्ट है। और कल की अगर मैं बात करूं तो कल है 3 अक्टूबर और कल खेला जाएगा यानी कि फाइनल मैच ODI का भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के साथ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो हमारी टीम इंडिया ने जीत ली है, अब कल है यानी कि फाइनल मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ। तो देखना अब ये है कि भैया कौन सी टीम का पलड़ा भारी होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतने वाली हमारी इंडिया है वेस्ट इंडीज़, आप बता सकते हैं मुझे मैसेज करके। नंबर है 9823789689 पर मैसेज करना है कि आप इंडिया को सपोर्ट करते हो या फिर वेस्ट इंडीज के साथ हो। आप जल्दी जल्दी मैसेज करके बताओ श्रोताओ। आई नो मुझे पता है कि आप इंडिया के, हम सभी इंडिया के लिए प्रे करेंगे कि हमारी टीम इंडिया जीते कल, क्योंकि जब दो टीम दो मैच जीत चुकी है तो ये फाइनल मैच क्या है यार, इसको तो यूं ही चुटकियों में जीत जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए मैसेज करके। फिलहाल आपके लिए कड़क सवाल लेकर आती हूँ मैं, अभी यूं गई और यूं लौट कर आ।

हाँ जी आचरी ने आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है कड़क सवाल लेकर। अब कड़क सवाल का कड़क आंसर क्या होने वाला है वो तो सिर्फ और सिर्फ आप ही बता पाएंगे, और वो भी आप कहाँ बता पाएंगे आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको बताती हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896 पर आप बता सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आर्जरीना के नाम से मिल जाती हूँ, और हमारा ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 इंस्टाग्राम पर। ठीक है जी, फिलहाल हमारा कड़क सवाल आज का ये है कि बस थोड़ा सा अपने ध्यान से सुनना पड़ेगा और फिर आप आंसर चुटकियों में बता सकते हैं। तो आज का कड़क क्वेश्चन ये है, जय जवान जय किसान का नारा, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था सबसे पहले? आपने उन शख्स का नाम बताना है, नंबर है 9823789698 पर मैसेज करके बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था। सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल के लिए अगला गाना भी बहुत ही शानदार वाला है आप सभी के लिए। वंस अगेन एक बार और रिपीट करती हूँ, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था। चलिए सोचिए और मैसेज करिए।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है और समय की बात करूँ तो 6:42 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और अगर बात की जाए, कहते हैं ना चकदे फट्टे इंडिया। अब ये चकदे फट्टे इंडिया क्यों हो रहा है? क्योंकि कहते हैं ना हमारी छोरी किसी छोरों से कम थोड़ी है, क्योंकि बेटियां चूल्हा जलाने के साथ साथ अपने देश को जितवाने का हुनर भी रखती है। चाहे मैं बात करूँ हॉकी टीम की और वुमेन क्रिकेटर टीम यानी कि, तो भाई हमारी जो देश की बेटियां हैं अब बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रही है और अपना देश का अपने देश का नाम रोशन कर रही है। यानी कि भारत की महिला हॉकी टीम ने एशियाई गेम 2026 के फाइनल में चीन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। चकदे फट्टे कर दिए भैया, ओहो क्या बात है जी। यही कहते हैं बेटियों को ना थोड़ा पुश करने की जरूरत होती है। फिर देखिए वो चूल्हा जलाने तक से लेकर देश का नाम रोशन करने तक आगे बढ़ती है। और कहते हैं ना कि अगर आप अपनी एक बेटी को पढ़ाते हैं तो वो 3 पीढ़ियों को रोशन करती हैं। फर्स्ट अपने माता पिता, सेकंड यानी कि अपने ससुराल, और थर्ड अपने बच्चों को पढ़ाती है और अपने समाज के लिए एक अलग उदाहरण बनती है। और भाई उनके बेटियों के लिए तो कुछ शब्द ही नहीं, जितना बोलो उतना कम ही है। और साथ ही साथ आज का कड़क सवाल मैंने बहुत ही आसान वाला आपसे पूछा है, जो कि मुझे लगता है कि ये आंसर ना सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन है और जनरल नॉलेज है। जब आप एग्जाम भी देने जाते हैं तभी भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मुझे इसके बारे में पता होना बहुत। तो आज का कड़क सवाल ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो आपने बस यही हमें बताना है। नंबर है 9823789689 पर मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था। सोचिए और मैसेज करिए। और फिलहाल नवंबर में जिनका जिनका शादी होने वाला है ना भैया, उनको मेरी तरफ से ये वाला गाना बहुत ही शानदार वाला है, क्योंकि वो दिन गिन रहे हैं, हफ्ते गिन रहे हैं।
1: गुड मॉर्निंग,

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। अब दिन छोटे होने लगे भैया, क्योंकि अब देखिए देखा जाए तो अभी से ही बाहर अंधेरा अंधेरा हो गया है ना, क्योंकि देखिए जब भी अंधेरा होता है ना तो मेरी मम्मी का कॉल एकदम आता है और उनको लगता है कि अब तो मेरी छुट्टी हो गई होगी, तो शो के बीच में कभी कभी कॉल करती है। यही कहते हैं माँ का प्यार, जब तक माँ बाप है ना तो उनकी कद्र कर लो, क्योंकि उनके सिवा कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो कहाँ नहीं हो। तो जो माँ बाप का प्यार होता है ना निस्वार्थ वाला, और वो कभी कभी डांटते भी है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं और उतना ही केयर भी करते हैं, क्योंकि जब ये है तभी आपके पास कॉल आता है, अदरवाइज कॉल भी नहीं आएगा। तो इसीलिए उनका जब कॉल आए तो अनदेखा ना करें, उनका कॉल ज़रूर अटेंड करें। और आज मैंने आप सभी से एक बहुत ही सिंपल वाला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, कि जो जय किसान जय जवान जय किसान का नारा है वो किसने लगाया था, क्योंकि आज उनकी जयंती भी है तो मुझे लगा कि मैं पूछ लेती हूँ कि आपको वाकई में याद है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था। सोचिए और मैसेज करिए, फिलहाल एक गाने के बाद लौट आए।

0: बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक। कुछ गाने ना गाने नहीं होते हैं, हमारे जिंदगी से रिलेट इमोशन हर चीज गाने के अंदर होता है। और आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूँ तो 6:55 हो चुके हैं। और आज मैंने आप सभी से बहुत ही कड़क सवाल पूछा है कि जय जवान जय किसान का नारा है वो किसने लगाया था, बस वो मैसेज करके आपने बताना था। नंबर है 9823789689 पर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था। और एक बहुत ही प्यारी कहानी है ना कि करियर के चक्कर में शादी की उम्र निकल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि शादी की उम्र निकल जाए लेकिन करियर कभी हाथ से नहीं छूटना चाहिए। कि जिसके लिए आपने मेहनत करी, जिसके लिए आपने पढ़ाई करी, उसको आपने जो आपका सपना है उसे पूरा करे बिना पीछे कभी मत हटिएगा। क्योंकि शादी का क्या है यार, जिसके लिए आपने इतना मेहनत करा है पहले वो हासिल करो, शादी तो हो ही जाती है। यानी कि बेटियों के सपनों की कोई तय सीमा नहीं होती है, सीमा अक्सर समाज की बनाई होती है। समाज में सीमा बना दी जाती है कि 25-26 के बाद यानी कि 18 के बाद बेटियों की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन कभी ये तय सीमा नहीं करती है कि बेटियों को सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उन्हें देश का नाम रोशन करते हुए देखना चाहता हूँ। अगर यही समाज में ये रूल फिक्स हो गया तो हर बेटी अपने सपने को अच्छे से पूरा कर पाएगी। कभी किसी से कहा गया कि शादी की उम्र निकल जाएगी, किसी ने कहा कि इतना वजन बेटी कैसे उठा पाएगी, तो किसी ने कहा घर से दूर जाने से रोका गया। बेटियों को अक्सर अभी भी घर से दूर जाने के लिए रोका जाता है, लेकिन भारत की बेटियों ने हर कदम पर दिखाया कि उन्होंने रोकने के बजाय अगर उनको सपने उनके भरोसे पर विश्वास किया जाए तो वो अपनी ही नहीं पूरे देश की पहचान बदल सकती हैं। इसीलिए बेटियों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि भावना कंठ 33 की उम्र में भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट बनी है। टॉप गन पायलट वो इसलिए बनी है ना क्योंकि घर वालों ने कभी दबाव नहीं दिया कि तुम्हें शादी करनी है, बस कहा कि सब ने लेकिन सुनी अपने दिल की, अपनी फैमिली की। क्योंकि जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है ना तो फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, फिर तो ये रूल होना चाहिए। तो बस आप पढ़िए, हर उस पड़ाव को पार करिए जो सब कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगी, तो उसको आपने पार करना है, अपने फैमिली वालों का और अपने देश का नाम रोशन करना है। और इसी के साथ आज का कड़क सवाल मैंने आप सभी से पूछा, जय जवान जय किसान का नारा किसने सबसे पहले लगाया था। तो आइए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे कड़क मैसेज आप सभी के पहुंच चुके हैं। तो अब देखना ये है कि सबसे पहले हमारे पास किन का राइट मैसेज है।
1: जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी।
0: रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है। गुड इवनिंग मैम, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है, इनका कहना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा लगाया था। एक वॉइस मैसेज आया है हमारे पास, तो हम पूरी कोशिश करते हैं आपको सुना।

0: इनकी वॉइस सुनते हैं एक बार कि क्या कहते हैं अपनी मधुर आवाज में।
1: लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री।
0: ओके, तो आपका भी राइट आंसर आगे है सर, लेकिन आपने नाम नहीं बताया, कृपया अपना नाम भी जरूर मेंशन करें। इनके नंबर के 4 डिजिट है 2126। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कोमल शर्मा जी कनेक्ट होती हैं और इनका भी राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अगले मैसेज की बात करूं तो रीना जी जय श्री राम गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। क्या हाल है रीना जी? वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हैं आप और जानकारियां भी बहुत अच्छी लेकर आती हैं। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया। थैंक यू। अच्छा, राइट आंसर है आपका भी। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अंसार हुसैन जी दौलतबाग मुरादाबाद से और इनका कहना है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा लगाया था। राइट आंसर है जी, पूर्व प्रधानमंत्री। अगले मैसेज की बात करूँ तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद सारिक अली जी कनेक्ट होते हैं। गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस गाने बहुत अच्छे लगते हैं और जो आपने कड़क जो मैंने पूछा था उसका भी राइट आंसर देते हैं लाल बहादुर शास्त्री। हेलो रीना मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कोमल जी कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से, इनका भी

अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही खुशियां बांटते रहिए और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि आज के टाइम में हंसाना हर बहुत मुश्किल है। सो आज मेरे शो में विनर बनी है रानी नांगल से रिहाना जी, तो आप विनर बन चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सभी इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दौरेस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मलिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एरोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। इस कार्यक्रम में अंत्योदय, स्वच्छता और समाज सेवा के उनके आदर्शों को दर्शाया गया। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भारत डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वसनीय कड़ी है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नलू ने NCC कैडेट से एकता, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों पर आधारित मजबूत और एकजुट भारत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने आज नरसिंहगढ़ के TIT संस्थान में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर वीर विक्रम एकता कैंप का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 13 त्रिपुरा बटालियन NCC ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अरे सुनो,
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का
3: है। Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है और मुझे वापस रिटर्न इसलिए आना पड़ा क्योंकि जब किसी का बर्थडे होता है तो मुझे लगता है कि निराश नहीं करना चाहिए, उनका बर्थडे विश जरूर कर देना चाहिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: हेलो जी, नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
2: प्राची।
5: यस, और प्राची, आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
2: हाँ, किस चीज की बताइए?
5: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
2: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
5: बिल्कुल, तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
2: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र, और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
5: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
2: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा, और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
5: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी,
1: और सामने बड़ी सी भगौड़ी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहां तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पे अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: चलिए बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का हर संभव मदद मिलती है, लोगों संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़े और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जूस स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
0: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: के विकास में लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान, और बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अशोक सिंह, पूर्व मुख्य संपादक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। और अब प्रियंका बहन सुन लेते हैं एक देशभक्ति रागिनी।
1: ना तक पाए

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: हेलो जी, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और आज का जो ये सेशन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़े ऐसी एक्सपर्ट जिनको सुन के ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बिकॉज ये इतने अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करती है और साथ ही साथ हमारे आसपास के लोगों को भी मेंटेन करके रखती है भाई साहब, क्योंकि किसी की स्माइल अच्छी बनाती है, किसी की स्किन अच्छी बनाती है, किसी के बालों को अच्छा बनाती है। एंड मतलब शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी एंड इनकी बात कर रहा हूं मैं, उनकी आवाज आप सुनेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूं। वेरी वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी एंड इनके बारे में मैं क्या बोलूं यार, मुझे लगता है कि मुझे नहीं अब इनको बोलना चाहिए। सो डॉक्टर दिशा जग्गी मेरे साथ मौजूद है। हेलो मैम।

0: की आवाज से मेरी वो नहीं अटेंशन नहीं हटती है.
1: मैम थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू फॉर द बिग कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम सो हैप्पी एंड स्पेशली नाइस टॉकिंग टू यू. मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी आपका देखता रहता हूँ और आज आपसे बात कर रहा हूँ. आई एम सुपर हैप्पी.
0: माय प्लेजर.
1: थैंक यू सो मच. अच्छा मैम, आज तमाम लोग आपको सुन रहे हैं हमारे रेडियो स्टेशन के थ्रू, थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को.
0: हाँ जी, मैंने अपना एस्थेटिक मेडिसिन एंड एंटी एजिंग मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से किया.

0: Instagram, you can find me.
1: That's very amazing, wonderful introduction, ma'am. Seriously. So, ma'am, शुरू करते हैं आज का सिलसिला. सबसे पहला questions मेरा यही होगा आपसे. मैम, आजकल ना Instagram का जमाना है, digital platform है, आपको भी पता है. तो Instagram पे जैसे हम Instagram on करते हैं, हजारों deals हमारे पास आ जाते हैं. Especially आप ये वाला formula आजमा लो, आप ये वाली remedies follow करो, चाहे skin से related हो या बालों से related हो. और कई बार लोग वो इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो कितना ज्यादा हमारे लिए सही होता है और कितना ज्यादा wrong होता है. आजकल audience को पता नहीं है, वो कुछ भी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो follow कर रहे हैं.
0: तो देखो, आई विल नॉट से कि ऑल होम रेमेडीज आर रॉन्ग. मैं एक जनरलाइज चीज नहीं बोल सकती, या एक जो होम रेमेडी है वो सबको सूट करेगी, मैं वो भी नहीं बोल सकती. सो सी डिफरेंट, अगर आपकी ड्राई स्किन है, सो यू नो समथिंग लाइक अ मसूर की दाल, बेसन विल हेल्प यू आउट टू रिड्यूस योर ऑयल सिक्रेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट. कि हल्दी लगा लिया, एंड देन जो ड्राई स्किन टाइप्स हैं, उन्होंने अगर कर्ड के साथ में कुछ लगा लिया, कर्ड के साथ मिक्स करके, सो दैट विल ऑब्वियसली हेल्प देम आउट. बट अगेन, हर किसी की स्किन सेंसिटिव होती है. अगर सेंसिटिव स्किन है तो उनको हनी और इवन एलोवेरा से एलर्जी हो सकती है. आई हैव सीन ब्राइड्स जो आती हैं, हल्दी लगाया रात को या नेक्स्ट डे शादी है एंड पूरा फेस बर्न हो गया. क्योंकि पहले के जमाने में जो हल्दी थी और आज के जमाने में जो हल्दी मिल रही है, द थिंग्स हैव चेंज्ड. तो अब उतनी क्लीन सामान हमें मार्केट में नहीं मिल रहा, अंटिल अनलेस आपका खुद का कोई फार्म है या जहाँ से आप सामान लेकर आ रहे हो, पिसवा रहे हो, तो एक अलग चीज होती है. बट अगर नहीं है, सो इट इज बेटर आप उस चीज पे स्टिक करें जहाँ पे आपको पता है कि थिंग्स विल नॉट रिएक्ट टू योर स्किन.
1: दैट्स वेरी नाइस मैम. अच्छा मैम, आजकल आपको पता है ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर दूसरे इंसान को हेयर प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है. और आई थिंक इसका रीजन में मुझे लगता है कि आजकल का लाइफ स्टाइल भी है, बिकॉज इतने लोग इतना बिजी हो गए अपनी लाइफ स्टाइल में, लोग उनको पता ही नहीं है कि हमें खुद के लिए भी समय निकालना है, अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आपको. मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: सी नाउ, स्किन का जो हेयर के इश्यूज है, एज यू स्पेसिफिकली मेंशनिंग, तो बाल सिर्फ हमारा, देखा पहले जो जनरेशन था जिसको ये अफेक्ट करता था, वो जनरली 40-45 प्लस था.
1: करेक्ट.
0: जैसे अगर जिनको गंजापन आ रहा है तो क्या हो गया था, एक बहुत एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी था कि ठीक है गंजापन है कोई बात नहीं, अब तो उम्र हो गई. अब क्या है, पीपल इन देयर 20s आर हैविंग हेयर फॉल, पीपल इन देयर 30s आर हैविंग हेयर फॉल, जिनकी शादी नहीं हुई है, दे आर स्टार्ट फिनिशिंग कॉलेज, बॉयज गर्ल्स, और उनको मैसिव हेयर फॉल है. और ये सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक इसमें रीजन होता है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12 एंड आयरन प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं, सीरम फेरेटिन और TIBC, दैट इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और थायराइड. ये तीन चार टेस्ट आप अगर अपने करा लेते हैं, तो आपको अपने स्टेटस, स्किन के अंदर का या बॉडी के अंदर का स्टेटस पता चलता है कि डेफिशिएंसी किसकी है. अगर ये सारी चीजें आपकी ठीक है सपोज, देन हार्मोनल रीजन एक और होता है.

0: शेप पैटर्न, एक एम शेप का पैटर्न फॉलो करेगा आगे से स्कैल्प पीछे, मतलब फोरहेड और सर के बीच में एक डिफरेंशिएशन जो होता है वो हेयरलाइन खत्म होती जाएगी, बोलते हैं रिसीडिंग हेयरलाइन. राइट, सो वो हार्मोनल पैटर्न है. सो किस वजह से हो रहा है हमें वो पैटर्न फाइंड आउट करना होता है. न्यूट्रिशनल बेस्ड है, हार्मोनल बेस्ड है, एंड कई बार होता है हमारे गट में इश्यूज होते हैं कि हम दवा तो खा रहे हैं मगर बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही है उसको.
1: करेक्ट.
0: तो वो एक और इश्यू होता है. सो वो यू हैव टू, मैं उसका एक वो नहीं बता सकती कि रामबाण है ये कर लो हो जाएगा. आपको हमेशा एक एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, कंसल्ट डॉक्टर, सो दैट यू नो आप क्या कर रहे हैं.
1: एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा आपने बताया मैम. एंड आई थिंक मैम एक और चीज जो आजकल हम देख रहे हैं यूथ में, इनफैक्ट हर किसी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, लोग खुद से कुछ भी यूज कर लेते हैं. जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पिंपल स्किन एक्ने की अगर मैं बात करूँ, एक एक्ने एंड पिंपल ये बहुत ज्यादा स्किन में आजकल बढ़ता जा रहा है लोगों को मैं देख रहा हूँ. इवन मेरी कजन सिस्टर है उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बट वो क्या करती है कभी भी कोई भी क्रीम उसने मेडिकल स्टोर से ले लिया, कुछ भी लगा लिया, जबकि एक्ने एंड पिंपल इट्स नॉट वेरी इजी प्रॉब्लम. आई थिंक ये बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकती है, एंड मेरे से बेटर तो ऑफकोर्स आप ही जानते हैं. तो मतलब किस सिचुएशन में हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए? जैसे मैंने अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल दिया, मेरी कजन सिस्टर वो कुछ भी लगा लेती है, तो क्या ये करना चाहिए अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है?
0: वही सबके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर लो, कपड़ों के साथ कर लो, मगर स्किन के साथ मत करो.
1: मत करो.
0: Exactly. एक बार पिंपल्स आ गए तो खड्डे हो जाएंगे या स्कार्स हो जाएंगे या आपका पिगमेंटेशन हो गया. जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं माय क्लिनिकल प्रैक्टिस कि मैम बेटनोवेट लगा रहे थे, किसी ने स्किन लाइटनिंग क्रीम दी, स्किन गोरी हो जाएगी. अब उसके क्या होता है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं. अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, दे आर गोइंग टू गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट देगा वो, मगर साथ में स्किन को डैमेज कर देगा. आपका स्किन का जो बैरियर है ऊपर वाला उसको उड़ा देगा, साथ में बालों फेस पे बाल आने लग जाएंगे, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी धूप से. सो दीज आर द साइड सम साइड इफेक्ट्स. और साथ में क्या होता है, फिर ऐसी स्किन पे काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपने स्किन का बैरियर डिसरप्ट कर दिया है बाय यूजिंग समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड देन उसके बाद जब मैं कोई माइल्ड मॉइस्चराइजर या क्लिंजर कुछ भी देती हूँ तो वो जल्दी काम ही नहीं करता है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो स्पेशली एक्ने के लिए यू शुड नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन. अगर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, आज की तारीख में इफ यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर आप ऑनलाइन दिखा लो एंड देर विल बी पीपल टू हेल्प यू. एंड ऑल्सो एक्ने में आपकी डायटरी हैबिट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल. कि अगर आप मीठा खा रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं सो दैट हैज टू बी कट डाउन.
1: ऑल राइट, बिल्कुल सीखा. अच्छा एक और चीज मैम, आजकल जैसे आपने भी देखा होगा, इवन तो देख ही रहे आजकल सभी देख रहे हैं कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का चल रहा है आजकल, लोग ये करा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा क्रेज भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड भी बन गया है और काफी बढ़ भी रहा है ये. बट एक्चुअली क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है?
0: परमानेंट इफ यू आर लुकिंग एट कि जिंदगी भर वो बाल रहेंगे, नो दैट
1: डजंट हैपन. एब्सोल्युटली.
0: या सो द हेयर जो आपके पीछे डोनर एरिया से निकाले जाते हैं, फ्रंटली उनको ट्रांसप्लांट या लगा दिया जाता है, स्लिट्स बनाते हैं. अब उनकी जो लाइफ स्पैन है जनरली अगर आप उनका अच्छा केयर करते हैं तो समवेयर अराउंड 8 to 10 years वो रहते हैं. एंड उसमें भी ऐसा नहीं है, वो देखिए हमने बीज लगाया है, अगर बीज लगा के तो उसमें खाद नहीं डालेंगे देन ऑल्सो देयर आर चांसेस दे कैन फॉल ऑफ अर्ली. सो आपको उसकी भी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है. साल में एक या दो सेशन मेंटेनेंस के आपने लेने रहते हैं जीएफसी या पीआरपी के, एंड वट एवर मेडिकेशन आपका डॉक्टर ने बताया है वो आपको ऑन एंड ऑफ लेना रहता है.
1: ऑल राइट, वेरी नाइस. अच्छा मैम अगर मैं आपसे वही एक आम इंसान के बारे में बात करूँ, सपोज दैट कोई इंसान है जो सुबह से शाम तक बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, बट शाम को एटलीस्ट हर किसी के पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो खुद के लिए टाइम निकाल सकता है और वो इस बात से डिनाय भी नहीं कर सकता इनफैक्ट. सो मुझे लगता है कि अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ, लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है, बट वो दो तीन चीजें ऐसी क्या कर सकता है जिससे उसकी स्किन भी हेल्दी रहे, उसके बाल भी हेल्दी रहे और उसकी पर्सनैलिटी भी शाइन करे, कॉन्फिडेंट बढ़े, अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहें personality को.
0: First of all, which I personally recommend, देखिए nothing can reap a good fit personality, that is इंसान जो की हेल्दी है और फिट है.
1: Absolutely.
0: That is your workout, exercise. जैसे आप मुंह में खाना डाल रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट आपका शरीर हिलाना है. सो प्लीज मूव योर बॉडी, क्योंकि द मोमेंट आप अगर फिट हैं और अगर आप एक कमरे में वॉक इन करते हैं, द कॉन्फिडेंस यू होल्ड, नो बोटॉक्स, नो फिलर, नो लाइपोसक्शन, कुछ आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता जो कॉन्फिडेंस आपकी फिट बॉडी आपको दे सकती
1: है.
0: सेकेंडली योर वट एवर आप मुंह में डाल रहे हैं, देखिए आज की तारीख में एज आई यू सेड इंस्टाग्राम आप खोलो, ओवर नॉलेज है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके कौन से इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है और आपको पता है कौन से नॉन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है, मतलब कि प्रोसेस्ड सबको पता है खराब है, सबको पता है मैदा खाना नहीं है, सबको पता है कि पैकेट से निकला हुआ खाना हेल्दी नहीं है. वी ऑल नो दिस कि हरी सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए, जो हम लोग क्लास वन से पढ़ रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. शाम को वो समोसे आए, हाँ भाई लाओ लेकर खाते हैं. तो दैट इज हाउ हम इंडिया की वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन बन चुके हैं.
1: Exactly.
0: It's a disgraceful and a shameful thing.
1: Absolutely.
0: So nothing to be proud of. And secondly, yeah, nutrition, as in आप अपने मुंह में जो भी डाल रहे हैं, प्लीज देखिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है.
1: वैल्यू क्या, करेक्ट.
0: Yeah. And thirdly, I would say just using the bare minimum which suits you. Like आपको सब नहीं लगा लेना है कि मैंने सब देखा सब कर लिया. बेसिक यूज करने सामान यूज करिए टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, विच इज अ बेसिक पार्ट ऑफ ग्रूमिंग. जैसे एक सनस्क्रीन हो गया मेडिकेटेड, एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर, एक मेडिकेटेड फेस वॉश. ये तीन चीजें अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ज्यादा नहीं कहूंगी बट 60-70% योर लाइफ विल बी अंडर कंट्रोल.
1: That's very amazing, ma'am. बहुत ही wonderful तरीके से आपने explain कर दिया and very very quickly आपने बता दिया, मतलब unbelievable, incredible, ma'am. Lovely talking to you, ma'am. एक question, this is my personal question, so I want to ask you कि जैसे आजकल ना बालों में dandruff की problem बहुत हो रही है और कई लोगों को लगता है कि hair fall अगर हो रहा है, dandruff हो रहा है, तो हम अगर daily shampoo करेंगे तो ये काम हो जाएगा.
0: Okay, so dandruff generally जो होता है हमारा excess में sebum या oil secretion होने के कारण होता है.
1: All right.
0: और एक तरह की फंगस होती है जिसका नाम होता है मेलासीजिया. ये फंगस सीबम या ऑयल पे थ्राइव करती है. उसका खाना है सीबम. तो और कुछ खाने हैं, कुछ फूड्स हैं जैसे कि डेयरी, दूध, चाय, कॉफी, शुगर. इन चीजों से हमारा टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी की मात्रा बढ़ती है.
1: Alright.
0: और जिन चीजों से डीएचटी बढ़ेगा उनसे आपका सीबम सिक्रीशन या ऑयल सिक्रीशन बढ़ेगा स्कैल्प में, फेस पे.
1: Okay.
0: तो जब वो होता है तो आप फंगस को खाना दे रहे हैं कि आओ बेटा खाओ खाना. तो इसलिए उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी डाइट में, उससे फर्क पड़ेगा. दूसरी चीज, ऑल्टरनेट डे बाल धोना चाहिए. हम लोग जितनी धूल मिट्टी में रह रहे हैं, आपके स्कैल्प में 2 दिन बाद अगर हल्का फुल्का भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, सो व्हेन यू आर गोइंग आउट तो उस पर धूल मिट्टी बैठ जाती है. सो स्कैल्प इज डर्टी, तो उसको क्लीन करना है. गंदा स्कैल्प रखेंगे हेयर फॉल ज्यादा होगा. ऑल्सो जो लोग हेयर फॉल गो थ्रू कर रहे होते हैं वो हेयर वॉश ही नहीं करते 4-4 दिन 7-7 दिन, क्योंकि मैम मैं बाल छूता हूँ तो और बाल झड़ता है भाई. फिर ऐसा क्या, ऐसे हेयर फॉल बढ़ जाता है. सो केटाकोनाजोल बेस्ड मेडिकेटेड शैम्पू 2% केटाकोनाजोल आप यूज कर सकते हैं. ऑल्टरनेट डे हेड वॉश करना चाहिए विथ ल्यूकवॉर्म और कोल्ड वाटर. गर्म पानी मत यूज करिए.
1: ओके, मतलब इससे हम काफी हद तक फिर हम बच भी पाएंगे. इनफैक्ट
0: इससे काफी हद तक बच सकते हैं. इससे ये इवन अगर आपको डैंड्रफ नहीं है, केटाकोनाजोल बेस्ड शैम्पू अगर वंस अ वीक आप यूज करते हो फॉर योर स्कैल्प, जो भी बिल्डअप हो जाता है हम लोग की स्कैल्प में वो भी क्लीन करता है.
1: करेक्ट. ओके, शो सी मैम. अच्छा एक और चीज, ये तो हमने ये तो नेचुरल प्रोसेस की बात हमने कर ही ली. अगर मैं बात करूँ डाइट की, थोड़ा सा अगर आप इसकी तरफ अगर हम बढ़ना चाहें, आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है कि नेचुरल डाइट बॉडी में डालना बहुत जरूरी. जैसे आजकल खीरा है, तरबूज, खरबूज, इन सब चीजों का कितना असर पड़ता है हमारी स्किन पे, हमारे बालों पर.
0: सी, नेचर इज अ ब्यूटीफुल थिंग. आप देखेंगे जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, नेचर की सब्जियां और फल चेंज हो जाते हैं. आप वाटरमेलन खा लीजिए, आप हाइड्रेट हो जाएंगे, आप फुल हो जाएंगे.
1: करेक्ट.
0: ठीक है, आपका हाइड्रेशन पार्ट, फाइबर पार्ट आपको फ्रूट से बहुत अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि पता है कि भूख कम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू सावर्स. एंड आपको थोड़ा सा प्रोटीन का अपना इनटेक का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग की इंडियन डाइट में ज्यादा प्रोटीन कभी भी था ही नहीं. सो हम लोग को प्रोटीन की मात्रा हमेशा खाने में रखनी है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे बाल और स्किन बना प्रोटीन से है. तो आप अगर वेजिटेरियन है तो सत्तू को अपने डाइट में इंप्लीमेंट करिए मॉर्निंग इवनिंग. सत्तू का पाउडर आता है. देखिए नॉन वेजिटेरियन के पास बहुत सोर्सेज है. वेजिटेरियन के ऊपर मैं बात करूंगी ज्यादा.
1: करेक्ट.
0: जैसे कि आपकी दाल हो गई, दाल आप खाइए. ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन का, बट कुछ तो मिलेगा.
1: करेक्ट.
0: सेकेंडली छोले हो गए, सफेद छोले, काले चने, योर कड़ी जो दही के अंदर पेस्ट पे बनी होगी. एंड यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ डॉक्टर दिशा जल.
1: लवली टॉकिंग टू यू मैम. थैंक यू सो मच. बाय बाय मैम.
0: थैंक यू. बाय बाय.
1: नाइस डे मैम. थैंक यू.
0: बाय बाय.
1: गाइस आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6. फिर मिलेंगे किसी और अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के साथ. तब तक के लिए कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. सुनते रहिए आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन. स्टे कनेक्टेड.
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज. और अब मुख्य समाचार। महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली सहित देश भर में खादी उत्पादों पर विशेष छूट आज से। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेज वन अधिसूचना को स्वीकृति दी। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 16 स्वर्ण, 25 रजत, 35 कांस्य सहित 76 पदक। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह इस सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 197वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन, उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित है। श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की जीवन यात्रा राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण की विराट साधना थी। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन और राष्ट्र के प्रति समर्पण पीढ़ियों को भारत की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत आजादपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वस्थ और सभ्य समाज की आधारशिला माना। उन्होंने कहा कि आज से 12 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन आज देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा वीर जवानों और अन्नदाताओं के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। वहीं उपराज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और सेवा के उनके आदर्श सभी को सदैव सूर्योदय और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर दिल्ली विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की।
1: उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ये दिखाया कि नैतिक साहस किसी राष्ट्र को दिशा दे सकता है, जबकि भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री ने यह सिद्ध किया कि सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा नेतृत्व के सर्वोच्च मानदंड निर्धारित कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन सभी को निरंतर यह स्मरण कराता है कि सार्वजनिक जीवन की वास्तविक शक्ति चरित्र, संकल्प और राष्ट्र सेवा में निहित होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए दोनों महापुरुषों की जयंती का एक ही दिन होना केवल स्मरण का अवसर नहीं है, बल्कि उन मूल्यों पर चिंतन करने का अवसर भी है जो भारत को लोकतांत्रिक और संस्थागत जीवन को निरंतर दिशा प्रदान करते रहने चाहिए। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट सहित अन्य सदस्यों ने भी दोनों महान विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित की। नितिका गुप्ता के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए दिलनशी आरज़ू।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रोमो
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री सूद ने सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े डंप द जंक अभियान में सहभागिता की। यह अभियान आज से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को इधर उधर कचरा फेंकने से रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि कचरा बेतरतीब ढंग से न फेंका जाए।
3: देखिए, आज से लेकर 17 तारीख तक डंक द जंक युवाओं को, दिल्ली की जनता को अपने साथ लेकर कूड़ा जगह जगह ना फेंकने के लिए ये अभियान हम लोगों ने चलाया है। दिल्ली के 313 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चुनकर हमारा प्रयास होगा कि इसको इस प्रकार से डेवलप कर दें कि अगले दिनों में यहाँ कूड़ा न गिरे।
0: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC द्वारा गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता और सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और स्वच्छता गतिविधियों में शामिल हुए। स्वच्छता अभियान को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन में स्वच्छता, अनुशासन और सार्वजनिक दायित्व को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना गया था। श्री राय ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक और दृश्यमान परिवर्तन लाया है। सहायक पुलिस आयुक्त पवन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान कई सालों से चल रहा है और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह अभियान केवल एक दिन का अभियान नहीं, ये पूरे साल चलता रहेगा और इसके अच्छे नतीजे सभी देख रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन समेत पूरे देश में विशेष छूट अभियान की शुरुआत की गई है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट मिलेगी। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अध्यक्ष मनोज गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी के आह्वान को जन जन और जेन जी तक पहुंचाने के लिए KVIC लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खादी ने एक नया आयाम प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज खादी आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि करोड़ों कारीगरों और बुनकरों की आजीविका, भारत की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास का प्रतीक है। उन्होंने ये बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का कारोबार 1,87,00,000 रूपये से अधिक रहा और इससे लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला।
4: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं, युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है, युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है, खादी की कुर्ती हो जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: दिल्ली सरकार ने राजधानी की प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिस्क के लिए फेस वन अधिसूचना को स्वीकृति दी है। इसके तहत नॉर्दर्न रिस्क की 112 हेक्टेयर से अधिक यानी 277.56 एकड़ भूमि को आरक्षित वन घोषित किया जा रहा है। यह क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और दिल्ली के महत्वपूर्ण हरित और पारिस्थितिकी क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस संदर्भ में कहा कि नॉर्दर्न रिज दिल्ली की अमूल्य प्राकृतिक विरासत है और इसका संरक्षण शहर के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 112 हेक्टेयर से अधिक भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए फेज वन अधिसूचना को मंजूरी देना दिल्ली के हर क्षेत्रों को सुरक्षित रखने और राजधानी को अधिक स्वस्थ, हरित और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अब नॉर्दर्न रिज की 112 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि अधिसूचित होने के बाद कुल क्षेत्र 5,363 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न रिज जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों का संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना दिल्ली को वायु प्रदूषण तथा जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में दीर्घकालिक मजबूती देगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
6: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद सहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
7: इन स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। इस संग्रह में दिल्ली मेट्रो के 2 मॉडल, खेल से जुड़ी यादगार वस्तुएं, धार्मिक वस्तुएं, 1 पेंटिंग, कलाकृतियां और हस्तशिल्प की वस्तुएं भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि रोहिणी के एक छात्र से लेकर दिल्ली मेट्रो, विधानसभा और नई संसद तक ये यादगार वस्तुएं पूरी दिल्ली की कहानियां बयां करती हैं। ये नीलामी इन यादों को एक बड़ा सार्वजनिक उद्देश्य भी देती है, क्योंकि इससे मिलने वाली राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाएगी। नीलामी की तिथियों, इसमें शामिल होने की जानकारी और पूरी कैटलॉग के लिए प्रधानमंत्री यादगार वस्तु ई नीलामी पोर्टल pmmementos.gov.in पर देख सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
5: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
8: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
5: राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गांधी जयंती और स्वच्छ भारत मिशन दिवस के अवसर पर मालचा मार्केट परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली सहित देशभर में खाद्य उत्पादों पर विशेष छूट आज से। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेस वन अधिसूचना को स्वीकृति दी। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 16 स्वर्ण, 25 रजत, 35 कांस्य सहित 76 पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
10: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
11: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
10: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
11: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
12: कॉल 7500153841।
13: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं एफएम मुरादाबाद की स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो।
1: धन्यवाद आनंद भाई।
0: थैंक यू सो मच जी मनु जी। नमस्कार, आप कैसे हैं सर?
2: बहुत अच्छा हूँ मैं।
0: आते जाते तो बहुत मिलते हैं आपसे, लेकिन
2: आपसे मिलकर तो एक अलग वाइब आती है।
0: अरे
2: तो
0: क्या बात है, हमें भी बहुत अच्छी वाइब आती है, इसलिए तो हम आपको लगे हाथ बुला लेते हैं। खैर आज तो काफी एक लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हो रही है मेरी आपकी।
2: हाँ बिल्कुल,
0: है ना। लेकिन हमारे जो श्रोता है ना, उनको आप ज्यादा लंबे अंतराल पे सुनाई नहीं देता, क्योंकि आपके बीच बीच में सेशन आते रहते हैं, तो वो जहन में रहता है फिर। अच्छा ये मनु भाई है। चलिए राशिद भाई पहली बार आए हैं, तो जरा उनसे कुछ वार्तालाप करता हूँ जी। राशिद भाई आज आप सेकेंड टाइम आए हैं, इनफैक्ट
3: जी जी
0: मैं भूल गया। तो आप बताइए सर, कैसे हाल चाल है, कैसे मिजाज है?
3: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, हैंडसम हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आप देख ही रहे हैं। आपके सामने चकाचौंध में बैठे हैं लाइटिंग में
3: जी, जी।
0: तो बताइए सर, आज आप हमारे मुरादाबादी को क्या स्पेशल सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे जानने वालों को।
3: जी देखिए, मेरा नाम राशिद सैफी है और मैं एक छोटा सा कलमकार हूँ, छोटा सा लिखने वाला हूँ, और मैं राशिद मुरादाबादी के नाम से अपनी कविताएं और गजलें लिखता हूँ। और मुरादाबाद के ही अंदर जहाँ कहीं भी मुझे मंच पर थोड़ा बहुत मौका मिलता है, तो मैं अपनी कविताएं वहाँ पेश करता हूँ। और
2: ऐसी बात नहीं है राजीत भाई, हम आपको जानते हैं, जितना आपने मतलब बड़े बड़े मंच शेयर किए हैं,
0: जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़े
2: आहिस्तगी से बात रखते हैं।
0: और दूसरी बात, आज आपको एफएम मुरादाबाद में मनु जी ने लेकर आए, इतना बड़ा मौका आपको मिल रहा है, लाखों लोग आपकी आवाज सुनने वाले हैं, तो ये मुझे लगता नहीं कि वो छोटा मंच है, और अब आप ये कह नहीं सकते हैं।
2: यही बड़ा मंच,
3: मंच बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपने आप को छोटा मानता हूं।
0: मेरे हिसाब से तो कोई कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता मनु जी, है ना?
2: बिल्कुल।
0: लेकिन वो इनकी अपनी मतलब कह सकते हैं बड़प्पन है, जो अपना आपको इतना दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
3: नहीं देखे समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं
0: जी,
3: और सब एक से बढ़कर
0: एक है, मैं मानता हूँ।
3: और हमें हमेशा जो है, हम अगर एक रुपए बराबर हैं, तो हम उसे 50 पैसे बराबर हम अपने आप को बताना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपने आप को कम ही
0: आंकना चाहिए,
3: आंक कर दूसरों को बताना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये और मैं वो, ये मैं वाली जो वो है स्थिति, ये नहीं आनी चाहिए। खासतौर से एक कलमकार जो साहित्यकार होता है, वो कभी मैं में नहीं रहता है।
0: क्या बात है, साहित्य की दुनिया से निकल के आज रेडियो की दुनिया में पहुंचे हैं जनाब
3: जी।
0: तो
3: जी।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है खैर मकदम में हमारे स्टूडियो में आपका।
3: शुक्रिया।
0: और आज तशरीफ लेकर राशिद भाई साथ मनु जी भी आए हैं, तो उनसे भी कुछ ना कुछ सुनेंगे हम हमारे स्टूडियो में। ये जो उर्दू थोड़ी बहुत मैंने सीखी है, वो ऐसे लोगों से सीखी है, और शायद मेरी भी जो है अब लैंग्वेज थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी, और उसमें तब्दीली होगी जरूर, बहुत जरूरी है एक अनाउंसर के लिए।
3: तो ऑलरेडी बहुत अच्छा बोलते हैं बहुत सारे,
0: नहीं ये तो आप बता सकते हैं सर।
3: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनते हैं ना।
0: अरे
3: हम आपको आप आज दूसरी बार मिलने का सौभाग्य
0: सर हमें
3: मिल रहा है, हमें
0: मिल रहा है,
3: लेकिन हम अक्सर एफएम मुरादाबाद पर आपको सुनते हैं, और सुनने के बाद में मतलब एक बड़ा एक आनंद सा आता है, जैसे कि आपका नाम है,
0: शायद यही सोच के माँ बाप ने नाम रखा होगा कि मैं कुछ तो आनंदित करूंगा।
3: बिल्कुल,
0: वो कहते हैं ना कभी कभी आपका नाम आपको वो करने पे मजबूर कर देते हैं, सोचते भी नहीं हो।
3: बिल्कुल
0: अमिताभ बच्चन जी को ले लो,
2: नाम का बहुत बड़ा,
3: मुरादाबाद के लाखों लोग आपको सुन के आनंदित होते, मैं ऐसा मेरा सोचना है।
0: चलिए सर, मैंने इस बात की आपको खैर पैसे नहीं दिए थे, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। आज मनु जी किसी हीरो को पकड़ के ले आए हैं दोबारा, ऐसा लग रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है एक कलाकार को तारीफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर वो कुछ अच्छी चीज कर रहा है और उसमें उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या हौसला अफजाई उसे मिल जाता है, तो उसे और काम करने का पोटेंशियल उसका बढ़ जाता है।
2: ये जो चीज होती है
0: जी,
2: ये उसके लिए कैटलिसिस का उत्प्रेरक का काम करती है, उसकी कीमत और भी, और श्रोताओं को इस चीज का आनंद ये मिलता है कि और कुछ अच्छा जो बोलने की, कहने की, पढ़ने की प्रेरणा एक साहित्यकार को, एक कवि को, एक शायर को मिलती है।
0: बिल्कुल,
2: तो उसका फायदा हमारे श्रोता को,
0: कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों से कनेक्टेड ही हूँ, है ना। आप साहित्यकार की दुनिया में है, हम आवाजों की दुनिया में, तो कहीं ना कहीं है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड,
2: आवाज से सिलसिला है।
0: एग्जैक्टली, अब लोग हमें सुनकर ही अपने मन में एक छवि बनाते हैं
3: जी जी,
0: राइट। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो राशिद जी को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आपकी आवाज से एक इमेज बनाएंगे, तो ये एक पावर है रेडियो की।
3: बिल्कुल,
0: है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो राशिद भाई आज आप आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ बेहतरीन आज सुनाएंगे मुरादाबादी को, लेकिन उससे पहले हम आपको एक अच्छा गीत सुना देते हैं
3: जी जी।
0: तो अगर कुछ आप अपनी तरफ से कुछ पेश करना चाहे, कोई गीत आज सुनवाना चाहिए, मौका मैं आपको दूं, और अपनी आवाजों में उसे गुनगुनाना चाहे, तो कौन सा गीत होगा जो आप चाहेंगे कि लिसनर को सुनाएं हम?
3: देखिए मैं जो आज आपको सुनाऊंगा, अपनी जो लिखी हुई एक कविता है, वो तो माँ के ऊपर है।
0: ओके, लेकिन अभी हम लिसनर को कोई गाना सुनाना चाहते हैं,
3: आप माँ के ऊपर ही कोई गाना अगर चाहे तो सुना सकते हैं,
0: जैसा आपको बेहतर लगे। कौन सा गाना है जो आपके
3: लिसनर को जो है, माँ तो हर किसी को प्यारी होती है, माँ तो हमारी माँ होती है,
0: बिल्कुल,
3: तो माँ के लिए कोई भी गाना एक
0: जो आपके जहन में आ रहा है, मैं तो चलाऊंगा।
2: हमारा आग्रह ये है राशिद भाई कि
0: आप
2: दो पंक्तियाँ उसकी गुनगुनाते हुए करिए, ताकि गीत का आगाज हो सके और प्रोग्राम का भी।
0: मेरे जहन में तो एक ही कह रहा है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है।
3: हाँ वो तो सदाबहार गाना है,
0: सदाबहार
3: वही प्ले कर दीजिए,
0: बहुत अच्छा।

क्या बात है। चलिए, ये नहीं पता था इतना इनके अंदर खजाना है। सिर्फ ये साहित्यकार की दुनिया में नहीं, मुझे लगता है सिंगिंग की दुनिया में भी कुछ करते हैं। वो तो अभी आके पता चलेगा। फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: बहुत खूबसूरत ट्रैक, और सच बताऊं तो ये गाना सुन के गूज़बम्प्स आने लगते हैं। और ये कुछ वो गाने हैं जो जिनको आप जितनी बार भी सुन लो ना, आपका मन नहीं भरता, ऐसा लगता है दोबारा सुने। क्यों मनु जी, राशिद जी?
1: बिल्कुल सही बात
0: है ना। और ये गाने नहीं है एक्चुअली, में सच्चाई है जो हमें दुनिया के सामने वाकिफ कराती है, दुनिया में हमारे लिए माँ कितनी इंपॉर्टेंट है गानों के जरिए। तो मनु जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। राशिद भाई से तो लगातार बातें चल ही रही है, आप भी हमारे बीच में शामिल है, तो हम आपको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? आप कुछ कहिए अपने बारे में, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में।
2: कहना क्या है, मैं तो बस पब्लिक, श्रोतागण, आप सभी महसूस करते हैं मैं बार बार अपना क्या।
0: आवाज में इतनी क्वालिटी है, इतना बेस है, इतना यू नो एनर्जी है।
2: मैंने क्या बताया, ये आपकी मोहब्बत है और ये
0: मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत तो अलग है ही,
2: जो प्यार है
0: और राज तो नहीं है, कुछ स्पेशल तो नहीं खाते।
2: ये जो श्रोताओं का प्यार है यही इस चीज को इनहेंस करता है।
0: क्या बात है।
2: तो मैं एक मुकम्मल आगाज के साथ, दो चार मिस्रों के साथ आगाज कर दूं।
0: बिल्कुल जी, इरशाद इरशाद
2: कहता हूँ
0: जी जी।
2: लबो रुखसार की बातें चलेंगी, खुशी की रार की बातें चलेंगी,
0: वाह जी वाह,
2: फकीरों का यहाँ पर जिक्र होगा, यहाँ जरदार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात,
2: ये मौका महफिले शेर व सुखन है, ये मौका महफिले शेर व सुखन है।
0: क्या बात है,
2: यहाँ अशार की बातें चलेंगी, यहाँ अशार की बातें चलेंगी, अदब की हस्तियों के दरमियाँ हैं बड़े मयार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात,
2: अदब की हस्तियों के दरमियाँ हैं बड़े मयार की बातें चलेंगी, जरा सी फिक्र की बातें करेंगे, फलक संसार की बातें चलेंगी, और सरापा हुस्न में डूबेंगे जमकर,
0: जमकर
2: सनम इजहार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात,
2: बशर्ते रूठ भी जाए अगर वो, तो फिर मनुहार की बातें चलेंगी,
0: मनुहार
2: तो फिर मनुहार की बातें चलेंगी, गमों की खार की बातें चलेंगी, यहाँ अशार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात, क्या बात, क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने जो ये पंक्तियां रखी, बहुत मजेदार थी। लेकिन जो भी बोलो, मुझे तो सुन के मजा आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा कि मैं भी साहित्यकार न बन जाऊं आरजे से। खैर, वो तो इस जन्म में नहीं हो सकता है। राशिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: जी जी, देखिए बहुत ही अच्छी नज़्म सुनाई है हमारे मनोज भाई ने, और आपने सही कहा, इनकी आवाज में एक वजन है और एक लगाव है, एक आकर्षण है जो अपनी ओर आकर्षित करती है आवाज।
2: मोहब्बत मोहब्बत की मोहब्बत।
3: जी जी, तो नहीं नहीं, ये सच है। तो मैं भी मनोज,
0: मैं काफी बार नोटिस कर चुका हूँ, नहीं नहीं, मेरे स्टूडियो में बहुत बार आ चुके हैं, इसीलिए क्योंकि हम भी आवाजों की दुनिया में रहते हैं, तो इतना तो पता लग जाता है।
3: बिल्कुल,
0: है ना, तो वो चीज है, और जो जब लगे वो कह देना चाहिए।
3: जी जी,
0: है ना,
3: कहीं ना कहीं आपकी आवाज में बहुत मिठास है मनोज भाई की, जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ।
0: क्या बात है, मुतासिर, मुझे एक नया शब्द सीखने को मिल गया।
2: बिल्कुल, आप सुनेंगे,
0: मुझे आप लोग क्लास दो यार उर्दू की, मुझे जरूरत है,
2: सीखते चले जाएंगे, साथ कारवा चलता रहेगा।
0: मुतासिर का मतलब तो बता दीजिए, लाइव ऑन एयर, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उन्हें भी पता चल जाएगा।
3: प्रभावित हूँ,
0: प्रभावित
3: जी,
0: उसको उर्दू में कहते हैं मुतासिर,
3: प्रभावित,
2: प्रभावित
3: और मुतासिर उर्दू में,
0: उर्दू में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, एक जिंदगी में एक नया शब्द
2: भाषाओं का संगम, यही तो है भारत।
0: एग्जैक्टली, चलिए बहुत बढ़िया जी। राशिद जी, स्वागत है आपका, बताइए।
3: हाँ देखिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता जो माँ के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी पहले,
0: हमने गाना भी सुना माँ के
3: गाने से पहले जो है मैंने कहा था, तो वो मैं रखना चाह रहा हूँ
0: प्लीज,
3: और सभी हमारे श्रोताओं को, मुरादाबाद के श्रोताओं को, क्योंकि माँ ऐसा शब्द है, यानी ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा एहसास है कि हर किसी को माँ शब्द से ही प्रेम है। माँ तो बहुत दूर, वो तो उनसे तो है ही है, लेकिन माँ का शब्द जहाँ लिखा होता है बस उसी से प्रेम है।
0: क्या बात,
3: और माँ के लिए जितने भी शब्द लिखे जाए वो कम है। पूरी दुनिया में जितने भी शब्द माँ की, माँ के समर्पण के लिए, माँ के प्यार के लिए, माँ के प्रेम के लिए लिखे जाते हैं, माँ के त्याग के लिए, वो सारे कम है। मैं समझता हूँ, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ममता और प्यार ऐसा दिखाती है माँ,
0: क्या बात है,
3: ममता और प्यार ऐसा दिखाती है माँ, तड़प के बच्चों को सीने से लगाती है माँ।
0: क्या बात,
3: तड़प के बच्चों को सीने से लगाती है माँ, और सोती है खुद कांटों भरी सेज पर मगर, सोती है खुद कांटों भरी सेज पर मगर, मखमल के बिस्तर पे हमें सुलाती है माँ।
0: क्या बात है,
3: मखमल के बिस्तर पे हमें सुलाती है माँ,
2: सुलाती है माँ,
3: और जीवन की विपत्तियों की कड़ी धूप में,
0: क्या बात,
3: विपत्तियां परेशानियां जो जीवन की जिंदगी की आती है हमारे सामने, कि जीवन की विपत्तियों की कड़ी धूप में संतोष का ठंडा साया बनकर बन जाती है माँ।
0: क्या बात है,
3: संतोष का ठंडा साया बन जाती है माँ, और बताकर अच्छे बुरे का फर्क बचपन से ही, बताकर अच्छे बुरे का फर्क बचपन से ही दुनिया में जीना हमको सिखाती है माँ।
0: क्या बात है,
3: दुनिया में जीना हमको सिखाती है माँ। बचपन से ही माँ जो है बताती है बेटा देखो ये करते हैं, ये ऐसे ये नहीं करते, ये गलत बात है,
2: सब प्रथम गुरु है।
3: हाँ बिल्कुल, तो बचपन से ही हमें जो है हर चीज की अच्छाई बुराई माँ समझाती है।
0: बहुत बेहतरीन।
3: तो अगला मैं रखता हूँ आपके सामने
0: जी।
3: आती है जब मुश्किलें उसके बच्चों पर,
0: क्या बात है,
3: आती है जब मुश्किलें उसके बच्चों पर, चट्टान सी सामने खड़ी हो जाती है माँ।
0: क्या बात है,
3: चट्टान सी सामने खड़ी हो जाती है माँ।
2: ईश्वर ने ये सामर्थ्य माँ को दी है,
0: सच बात,
3: बिल्कुल हकीकत है। और पालती है 9 महीने अपनी कोख में हमें, पालती है 9 महीने अपनी कोख में हमें, तभी तो भगवान का रूप कहलाती है माँ।
0: क्या बात है,
3: तभी तो भगवान का रूप कहलाता है माँ। और ये अंतिम है जो बड़ा थोड़ा दुख भरा है, दर्द भरा है
0: जी,
3: ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये उनके लिए है जिनके जीवन में इस चीज की कमी है, यानी के और माँ की कमी का दुख पूछे कोई उनसे, माँ की कमी का दुख पूछे कोई उनसे, जिनकी दुनिया से जल्दी चली जाती है माँ, जिनकी दुनिया से जल्दी चली जाती है माँ। ये कमी तो खैर उन्हीं लोगों से पूछी जा सकती है जिनकी जीवन में माँ
2: बहुत बड़ी बात है वास्तव में। और आपने जो है एक अलग तरफ मोड़ दी है दिशा,
0: सच में
2: हमारे श्रोतागण ये बात महसूस कर रहे होंगे। और वाकई जो आपने एक सब्जेक्ट लिया माँ, ये दूसरी चीज ये कि जो शब्दावली आपकी वो कितनी सजीव है, कितनी अच्छी, हिंदी उर्दू दोनों का संगम, और वो एहसास जो आप बताना चाह रहे थे मुझे पूरा यकीन है कि हमारे श्रोताओं तक बिल्कुल पहुंच रहे होंगे।
0: बिल्कुल, उसके जो भाव थे उसमें जो एक मतलब खुशी भी थी, तकलीफ भी थी, दोनों चीजें आपने बयां कर दी और लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि वही बात के जो महफिल है, मैं कहना चाहूंगा कि ये रूहानी हो गई है।
0: क्या बात है
2: कि नहीं है, रूह से रूह तक जाती है तो फिर वास्तव में बात रूहानी हो ही जाती है।
3: बिल्कुल।
2: तो आनंद जी, मैं जैसे कि अभी भैया ने माँ के बारे में बातचीत की
0: जी,
2: तो मैं कहता हूँ कि माँ पिता ये वो अनमोल रुतवा है, ठीक है ना, जिसका दर्जा ईश्वर के समतुल्य बल्कि उससे भी ऊपर पहुंच जाता है।
0: बिल्कुल।
2: तो जब जिक्र माँ का हुआ है तो मैं एक रचना के एक दो बंद
3: बिल्कुल
2: जो पिता को समर्पित है, मैं इसे कहकर के राशिद भाई बात को
3: जी
2: एक समानता के बीच लाने की कोशिश करता हूँ।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आप तो ऐसे देखें कि छिपा पता क्यों पिता में, अगर मात्रा हटा दें तो पता हो जाता है, सब पिता है।
3: बिल्कुल।
2: छिपा पता क्यों
3: पिता में
2: हुआ कभी ये भान,
0: सही बात,
2: छिपा पता क्यों पिता में हुआ कभी ये भान, उनसे ही अस्तित्व है, उनसे ही पहचान, उनसे ही अस्तित्व है, उनसे ही पहचान, सिर पर छांव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर,
3: क्या कहें,
2: सिर पर छांव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर। पद क्या क्या कहते हैं पिता के बारे में
0: जी।

0: छप्पर
1: बहुत हो
0: सिर पर छाव पिता की कच्ची दीवारों पे छप्पर। और इस अंतरे में माता और पिता दोनों के साथ
2: दोनों का समावेश
0: चलते हैं।
2: क्या बात है।

0: करते सतत प्रयास की बेटा होवे उनसे बढ़कर सिर पर छाओ पिता की
1: क्या बात
0: कच्ची दीवारों पे छप्पर सिर पर छाओ पिता की कच्ची दीवारों पे छप्पर
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
2: बहुत खूबसूरत तो, जी आनंद आ गया बहुत खूबसूरत जो है आपने एक नई तरफ जो है चीजों को मोड़ दिया आपने बहुत बेहतरीन
0: नहीं मुझे महसूस हुआ कि माँ जैसी अजीम शख्सियत के साथ पिता जैसे अंबर का जो आशीर्वाद है वो जब पहुंचे तो ये जो हमारा सुनना है हमारा पढ़ना है ये सब सार्थक हो जाए और एक सकारात्मक संदेश हमारे श्रोताओं को भी मिले जिससे कि आनंद के साथ साथ एक जो मैसेज है हालांकि ये कवि धर्म है कि कोई भी बात है अगर कोई भी रचना है हमारी तो वो समाज को एक ऐसा संदेश दे जिससे उसके सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि हो
1: बिल्कुल
0: तो ये खुदा को पसंद है
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बहुत बढ़िया मनु जी बहुत आनंद आया इसी बात पे एक बहुत ही बढ़िया
0: बहुत बहुत
2: गाना मैं पिता के लिए प्ले करना चाहूंगा एक बहुत अच्छी फिल्म थी आमिर खान साहब की कयामत से कयामत तक उसमें गाना है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा तो यही गाना अब भाई इतनी सारी बातें हो रही है मदर के ऊपर हमने सुना अब हम फादर के ऊपर सुन रहे हैं तो प्रोग्राम में चार चांद लग गए इस गाने के बाद हम आएंगे और फिर अपने साथियों से इजाजत लेंगे श्रोताओं आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ

कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Auto.
1: फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
1: बुधवार को

0: दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
1: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुँचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
2: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
1: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
3: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
4: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौरान पिछड़ गए थे और उनकी बात को कर रहे हैं।
1: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के इडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर इंगम पामे और नामपीबू मरिन माई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
4: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
3: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
5: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
3: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
7: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: नमस्कार मुरादाबाद, कैसे हैं आप सभी? क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार की इस खूबसूरत शाम में आपका अपने शो में लेकर आया हूं मैं अखिल के साथ दिल से दिल तक, जहां हो रही हैं बातें दिल की, मस्ती होगी खुलकर, शायरी होगी थोड़ी सी रोमांटिक और थोड़ी जिंदगी वाली, तो खबरें भी ऐसी होंगी जो दुनिया से रिलेटेड होंगी। तो मुरादाबाद और उसके आसपास के सभी मेरे दोस्त, हाँ जी आप, भले ही अगर दूर भी बैठे ना, तो मुझे पता है पूरा पूरा सुनते हैं आप, हर बात पे अपनी दिल की बात भी रखते हैं। तो अगर आप घर जा रहे हैं या फिर बाइक चला रहे हैं या दोस्तों के साथ बैठे हैं, थोड़ी सी चाय की चुस्की ली जा रही है और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी आवाज़ को बढ़ा दीजिए। कभी कभी तालियां भी बजा लेनी चाहिए। हाँ, तो क्योंकि आज है फ्राइडे और खूब सारी होनी है बातें, कौन सी रिलीज हुई है पिक्चर और कौन सी है आपकी दिल के करीब, तो करेंगे खूब सारी बात। उससे पहले एक शायरी के साथ हो जाती है शुरुआत। शाम ने पूछा कहाँ जाना है, दिल ने कहा जहाँ अपने मिल जाए। रास्ते ने पूछा क्या चाहिए, दिल ने कहा बस कुछ हंसते चेहरे मिल जाए। और अगर वो चेहरा आपके साथ है ना, तो समझे आपके फ्राइडे पूरा सफल हो गया। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पहले कॉलर, उनसे ही पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो आज। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका, कैसे हैं आप?
1: शिव कुमार राय।
0: शिव कुमार राय जी, कहाँ पे रहते हैं आप मुरादाबाद में?
1: महमुल्लागंज पटघर मुरादाबाद।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो क्या कर रहे हैं इस समय शिव कुमार जी आप?
1: आपका इंतजार बहुत देर से, 2 घंटे से, आप 9 बजे कब बजे और आपसे कब बात करें।
0: 9 बजे कब बजे, क्या बात है, क्या बात बोली आज आपने। तो क्या शुरुआत कैसे करेंगे, कोई शायरी या कोई एक आध दो कहते हैं ना गुनगुना के गान, कोई लाइन?
1: जैसे आप कहो वैसे हम कह देंगे, दिल खोल के अपना आपके सामने रख देंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब। अभी तो दिल नहीं खोलना है, अभी तो दिल से सिर्फ गुदगुदाना है, दिल की बातें करनी है, खोलने का काम बाद में करेंगे दिल को।
1: और बताइए आप।
0: सब बढ़िया शिव कुमार जी, सब बढ़िया। और बताइए,
1: सुनने के लिए हम कहाँ से तड़पते हैं, बस ये हमारा दिल जानता है। बस
0: क्या बात है, ये दिल जानता है आपका,
1: बस केवल।
0: और क्या क्या जानता है दिल, आज सभी को बता दिए मुरादाबाद में।
1: देखो हमारे जज्बात पूरे सुबह से लेकर शाम तक कोई समझ नहीं पाता, अपने उदयपुर में आदमी लगा रहता।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने,
1: हकीकत बात है ये।
0: अभी भी जो भी कोई, अगर जैसे कोई, मतलब इसी बात में मुझे याद आया, अगर कोई गाड़ी में भी ड्राइव कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो पूरे दिन में, मतलब चला तो रहा है वो गाड़ी सड़क पे, मगर उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही होती, कई सारी चीज़ें उसके साथ जो जुड़ी हुई होती हैं, या तो कोई बॉस की बात, या फिर कोई घर की बात, या फिर किसी, कहते हैं ना, कोई भी ऐसी कोई पुरानी बात जो उसे याद आ रही होती है, तो वो उसके साथ हमेशा ट्रैवल करती रहती है। मतलब खुद तो ट्रैवल कर ही रहा है वो गाड़ी में, उसके साथ ये सब चीज़ें भी ट्रैवल करती हैं।
1: हकीकत बात है।
0: तो इस बीच थोड़ी सी मस्ती हो जाए और गाने जो ना, ये गाने एक ऐसी दवा है, ये गाना हर जो दिल के बहुत ही करीब होता है, और जो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ आवाज़ें ऐसे आप गुनगुना देते हैं, अभी आपने ऐसे बताया, एकदम आपने दिल से अपनी एकदम शायरी बोल दी, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ये एकदम आपके पास एट अ मोमेंट निकल के आ जाती हैं।
1: जी तो आपने हमें सिखाया भाई साहब, आप ऐसे ऐसे शेर शायरी बोलते हैं, मेरा दिल इतना खुश हो जाता है, उसी के अनुसार हम भी कुछ डाल देते हैं।
0: नहीं बहुत बढ़िया, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गंगा गंगा तेरा पानी अमृत।
0: और किसे डेडिकेट करना चाहेंगे शिव कुमार जी?
1: डेडिकेट आप सबको है, मगर एक शायरी छोटी सी हम बोलने चाहेंगे आपको।
0: अरे जरूर जरूर, इरशाद इरशाद।
1: आपका नाम क्या भाई साहब?
0: क्या बात, ओपनिंग ही आपने ऐसी क्वेश्चन से कर दिए, कुछ पूछो मत, मतलब सब मुस्कुरा रहे होंगे इस समय भाई साहब।
1: नहीं,
0: चले, अखिल नाम है, अखिल अखिल अखिल
1: अखिल। भूल जाता हूँ मैं खुद को भी, क्या आपका नाम याद रखूं?
0: क्या बात है,
1: भूल जाता हूँ मैं खुद को, क्या मैं आपका नाम याद रखूं? और जो मेरे पास है सब कुछ वो आपके पास हिफाजत में रखूं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, सब हिफाजत में रखेंगे। और आपने इतने कहते हैं ना इंस्टेंट जो निकाले हैं वर्ड्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो
1: आपने, मैंने एक शेर कल आपने सुनाया था, कोई शख्स बोल रहा था, नाम मुझे पता नहीं था, आपने कुछ एक शेर सुनाया था, पूरा आपको प्रोग्राम में जरूर सुनता हूँ, कुछ करूँ या ना करूँ, खाना छोड़ू सब कुछ छोड़ देता हूँ आपको प्रोग्राम सुनने के लिए।
0: किसी दिन आप खाना छोड़े तो जरूर बता दीजिएगा, दोनों साथ में ही खाएंगे खाना।
1: नहीं भाई साहब, मेरी तरफ से आपको दावत है, छोड़ता कभी किसी दिन, खाना छोड़ना दुनिया की सबसे बुरी चीज है।
0: हाँ जी, अपनी सेहत का ध्यान हमें सबसे पहले रखना है।
1: नहीं, सेहत तो भगवान के दे ही है भैया, देखो आज ना कल हर आदमी को जाना ही है।
0: क्या बात कही, अभी तो हमें सिर्फ गाना बजाना है और बहुत ही प्यार से, मतलब ये जो गाना है, इस गाने की कोई खासियत जो आपने इतना ये बोला, आपके दिल के करीब है गाना?
1: देखो ऐसा है, हमारी गंगा आज ओझल हो गई है और इतना गंदगी भर गई है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, इसमें परेशानी हम तुम की है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कही, और आपने बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया आपने अपनी इस बात से कि हाँ गंगा जो है,
1: गंगा को
0: कब
1: पांच वक्त कहते हैं कि पांच राम करे गंगा मेली हो गई, तरह तरह के गाने बने हुए पुराने।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कही आपने शिव कुमार जी, हम ही लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कभी भी। मैंने भी कई बार ये चीज़ें देखी हैं, अगर हम कहीं ब्रज घाट या कहीं से क्रॉस कर रहे होते हैं तो लोग उसमें गंगा जल,
1: गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, फिर गंगा सागर में मिलती है, वहां तक सोचते सोचते बताओ क्या चीज हो जाती है गंगा, मगर नहाना हमें उसी में पड़ता है। क्यों कि हमारा आज ना कल सब जितना भी हम मरने के बाद उसी में
0: विलीन होना है। हाँ बिल्कुल सही,
1: विलीन ही होना है, मतलब हमारा इतना पांच सदगुरु से हमारा शरीर बना हुआ है।
0: चलिए हम सब अपनी तरफ से, जितने भी सब सुन रहे हैं और जो जो इनिशिएट, मतलब एक अच्छा है कि अपनी तरफ से हम पहल करें और स्वच्छता का ध्यान रखें, आसपास कोई भी ऐसा कूड़ा कचरा ना हो।
1: भाई साहब कर ही नहीं सकते,
0: करना तो सर पड़ेगा, हमें हमें ही करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, हमें हमें अपने देश में रहकर हमें ही करना होगा।
1: आपका कहना और मेरा कहना अलग बात है, किसको समझाए किसको न समझाए, सब ना समझ बैठकर बन बैठे हैं, हम भगवान को पूछते हैं मगर गंगा को गंदा कर बैठे हैं।
0: क्या बात कर दी आपने, फिर से एक बार एकदम दिल के करीब से बात बोलिए। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं, थोड़ा सा इसका एंजॉयमेंट लेते हैं और फिर आगे करेंगे इस पे चर्चा कभी। धन्यवाद शिव कुमार जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। तो श्रोता हमारे साथ थे शिव कुमार जी, जिन कहा ना, मतलब कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल दिल के करीब होती हैं और आपके जब दिल से निकलती हैं तो वो बहुत दूर तक जाती हैं। तो क्या खूब बात कही, और इसी बात पे ये गाना ही सही, गंगा तेरा पानी अमृत। तो इसको सुनते हैं और फिर आपकी भी बात सुनते हैं 9837896896 पर।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, जहां हो रही हैं बातें। हाँ जी हाँ, बातें, वही बातें जिसे सुन के और कह के छोटी सी मुस्कान आपके चेहरे पे आ जाती है। अगर कुछ खास करते हैं तो अपनों के लिए ही करते हैं ना, तो कभी कभी हो सकता है ऐसा कि अपने किसी खास इंसान को आपने मैसेज किया और बस ये लिखा हो कि तुम हो इसलिए ज़िंदगी थोड़ी बेहतर है। तो एक छोटा सा मैसेज किसी का पूरा दिन कैसे बदल सकता है, उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। कोई ऐसी बात अगर आपके साथ हुई है तो ज़रूर हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें 9837896896 पे। कभी कभी होता है ना, आप कुछ कह नहीं पाते मगर कुछ डेडिकेशन ऐसे होते हैं कि कोई विश निकलती है किसी के लिए और चाहते हैं कि वो सब सुने आपके दिल से निकली हुई। तो ज़रूर हमें मैसेज करें, अगर बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो तो एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर आप हमें दे सकते हैं। उम्मीदों का दिया जलाए रखना, मुश्किलों में भी मुस्कुराए रखना, रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो अपने सपनों का दिल में सजाए रखना। तो चलिए अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं और पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? हम भी बहुत बढ़िया हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ से बात कर रहे हैं? स्वाति जी, आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, कोशिश करें कि थोड़ा सा माइक आपके पास हो जिससे कि सारी आपकी आवाज़ जो है और लाउड सुनाई दे। क्या करती हैं आप स्वाति जी? थोड़ा सा फर्क आया है। आप घर पे ही हैं इस समय, हाउसवाइफ? तो क्या बात है साहब, सारा हाउस जो है पूरा मेंटेनेंस आप ही के हाथ में है, एक तरीके से होम मिनिस्टर हैं आप। तो क्या कोई बात ऐसी, कोई मतलब कोई शायरी या कुछ, कोई दो लफ्ज दो कहते हैं ना गुनगुनाना चाहेंगे तो ज़रूर अपने दिल की कोई बात कहना चाहेंगी आप? चलिए कोई बात नहीं, अगर शेर व शायरी याद नहीं है तो कोई ऐसा किस्सा मैं तो सुनाते ही रहूँगा बीच बीच में, मगर थोड़ा सा ये है ना कि आप लोगों से भी सुनने को जब मिलता है तो मुझे तो और भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हैं जो साथ पूरा दे रहे हैं सब। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगी चलिए यही बता दीजिए। हेलो, कौन सा गाना सुनना चाहेंगी स्वाति जी आप?
1: मेरी बेटी गाना सुनना चाहती है।
0: आपकी बेटी गाना सुनना चाहती है, कौन सा गाना सुनना चाहती है आपकी बेटी?
1: चंदा ने पूछा तारों से, तारे

0: क्या बात, कभी ऐसा हुआ है स्वाति जी, जैसे सुबह सुबह तैयार करते समय बिटिया रानी को, या कहते हैं ना जल्दी जल्दी एकदम तैयार होता है, तो कोई ऐसी चीज जो आप उसे देना भूल गए, बैग में रखना भूल गए, या उसे कोई ड्रेस अगर जब पहना रहे हैं तो कोई ऐसी चीज जैसे बेल्ट पहनाना भूल गया, वो फटाफट स्कूल पहुंच गई और आपको भी बाद में स्ट्राइक हुआ और उसे भी बाद में आने उसने कंप्लेन करी कि मम्मा आप ये भूल गए आज जल्दबाजी में? स्वाति जी आप आवाज थोड़ी सी आप क्लियर कर लीजिए, आपकी आवाज अभी भी थोड़ी सी अटक के आ रही है। तो वो मतलब लंच बॉक्स ही आप रखना भूल गए साइड में रख के? अच्छा वही भूल गई। मगर भाई साहब आने के बाद सारा ब्लेम तो आप ही के ऊपर आया होगा। हो जाता है ये, यही तो एक चीजें है ना, देखिए ये कितने एकदम कुछ बातें एकदम दिल से एकदम कितने करीब आ जाती हैं आपके। तो चलिए अब आगे से मत करिएगा भाई साहब, उनको मतलब लंच तो रखें, उनकी पसंद का जरूर रखें आप। चलिए और आप वीक में एक बार कॉल लगा सकते हैं आराम से, जैसे अगर आपने कभी सपोज करें फ्राइडे में लगाई तो नेक्स्ट फ्राइडे फिर से आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ लिसनर्स इतने सारे जुड़े हुए होते हैं, सब कहते हैं बार बार यही कंप्लेन करते हैं कि अखिल जी या तो अपना टाइम बढ़ा लीजिए या फिर हमारी कॉल जरूर रिसीव करें। सही है, सही है, बिल्कुल सही, ज़रूर इस पर हम सोचेंगे और ऊपर अपने डायरेक्टर साहब से बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया जाए। तो बहुत अच्छा लगा स्वाति जी आपसे बात करके, और ये जो गाना है ज़रूर हम प्ले करते हैं, और जो गुड़िया रानी है उनसे भी कहते हैं कि ये इस गाने को सुनते सुनते थोड़ा सा डांस ज़रूर करें। ठीक है स्वाति जी,
1: थैंक यू भैया,
0: ओके स्वाति जी, गुड नाइट। तो श्रोता हमारे साथ जुड़ी थी स्वाति जी, जो कह रही थी कि टिफ़िन रखना वो भूली नहीं है, मगर अब क्या कहें, जब बच्चे को स्कूल से आके वो तो यही कहेगा कि भैया आज टिफ़िन मम्मी आपने सही नहीं रखा, आपने मेरी पसंद की चीज़ नहीं रखी ना, इसलिए मैंने खाना ही नहीं खाया। तो हो जाता है, ये हमारे साथ भी हुआ है, तो चलती है ये कहानी। तो इस गाने को एंजॉय करते हैं और फिर आपसे भी दिल की बातें करते हैं 9837896896 पे आराम से। हाँ जी आप घर पहुँचने वाले हैं, बस मोड़ पर ही हैं आप, मगर तब भी इस गाने को एंजॉय तो आप कर ही सकते हैं, और मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप को FM मुरादाबाद 89.6 को आप प्ले स्टोर पर आकर डाउनलोड करें और अपने गाने को भी कंटिन्यू रखें।

0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। जी हाँ, जहाँ बातें हो रही हैं आपके दिल की हमारे दिल तक। तो खूब सारी बातों के साथ ही साथ, कहते हैं ना आज फ्राइडे नाइट है, और जब आप भागते हैं ना, कोई भी शो आपने बुक कर रखा हो और किसी भी पिक्चर हॉल में आपको एकदम पहुँचना कि भाई साहब मेरी मूवी ना निकल जाए, अरे यार 9:45 का शो है और मैं फटाफट फटाफट पहुँचूँ और फटाफट लिफ्ट पकड़ूँ, टिकट पकड़ूँ और बैठ जाऊँ, तो उसी समय ना बहुत ही एकदम एक एक मिनट भी बहुत ही कीमती लगता है। क्योंकि मूवी लवर्स को ना अपना कहते हैं कि यार जो एक्चुअल मूवी लवर्स होते हैं ना, वो एक मिनट का भी सीन अपने पास से मिस नहीं करना चाहते हैं। ओपनिंग से लेके एकदम क्लोजिंग तक कुर्सी तक बैठे रहते हैं। अगर आप भी उन्हीं मूवी लवर्स में हैं तो आज तो आपके कहते हैं ना आज फ्राइडे को तो आज आपने बिल्कुल प्लान ही कर रखा होगा। फ्राइडे 2 अक्टूबर याद है? 2 अक्टूबर आपको भी याद होगी। कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें इस 2 अक्टूबर की बहुत ही खास बात, खास एक उसमें एक पॉइंट है कि हाँ भाई 2 अक्टूबर का इतना महत्व है। तो अगर आपको उस मूवी का नाम पता है तो ज़रूर हमें मैसेज करके बताएं कि उस मूवी का नाम क्या है। आपके फेवरेट एक्टर उसमें एक्टिंग कर रहे हैं तो ज़रूर आप बता ही देंगे। आज पूजा मेरी जान करके एक OTT पे रिलीज हुआ है, आपकी एक थ्रिलर स्टोरीज है और मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी उसमें स्टारर हैं। तो ज़रूर अगर आपको क्राइम और थ्रिलर से थोड़ी सी भी पसंद रहती है ना ये स्टोरीज, तो ज़रूर आप इस वीकेंड पे अपनी वॉच लिस्ट में से रख सकते हैं। रोमांस के मूड पे हल्की सी एक आई ये सीरीज़ जिसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी और अर्जुन दास जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे इस फ्राइडे रिलीज़ उनकी भी हो रही है, उसका कहते हैं ना आप आनंद ले सकते हैं। न्यू कमर्स हैं तो थोड़ा तो आपको भी पता करना पड़ेगा कैसे हैं ये लोग, तो ज़रूर आप उसको एंजॉय करें। और हाँ, मुझे उस मूवी का नाम ज़रूर मैसेज करें जिसका 2 अक्टूबर को खास रिलीज़ हो रही है वो। तो चलिए अपने नए लिसनर से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं आज। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका? हेलो सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? शिवम जी, आप कहाँ पे रहते हैं?
1: गोविंद नगर में
0: रहते हैं। गोविंद नगर तक हमारी आवाज बिल्कुल क्लियर पहुँच रही है आपके पास? तो क्या काम करते हैं शिवम जी आप? हीरो होंडा की एजेंसी पे आप काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या टाइमिंग रहती है आपकी और आप अपने काम को किस तरीके से एंजॉय करते हैं ये भी बताइए आज।
1: यानी कि 9 बजे से जाके
0: फोन पे टॉक्स देना। ओके,
1: और शाम को घर आना।
0: तो एक दिन में कितनी आप अगर सर्विस करते हैं जैसे बाइक की, तो कितनी बाइक की आप सर्विस कर लेते होंगे एक बार में, एक दिन में? कोई एक ऐसा मैसेज आप ऐसा कुछ बताइए कि जैसे जो बाइक लवर्स हैं जो अपनी बाइक को इतना मेंटेन करके भी रखते हैं और सब कुछ, कहते हैं ना कि जैसे बाइक की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ध्यान पे रखनी चाहिए, तो ऐसा कुछ आप हमें बताएंगे कि क्या होना ज़रूरी है जब भी आप बाइक चलाएं या बाइक से आप कोई बाइक चलाते हैं तो आप उसका किस चीज़ से सबसे ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं? हाँ जी,
1: हेलमेट होता है अपना। हाँ हाँ, जो कल होता है कि गाड़ी प्लान भी
0: अरे जरूर जरूर जरूर, शायरी सुनाइए आप। और एक बात और बताइए कि टाइम पे हमें बाइक की सर्विस करवाती रहनी चाहिए या थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं चलता है?
1: वैसे बाइक में मान लो लोग को परेशानी होती है तो करवा सकते हैं आप, कुछ टाइम होता है।
0: ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही मैसेज दिया आपने हमारे सभी को भी। और बताइए कौन सी शायरी आप कहना चाहेंगे और किसके लिए कहना चाहेंगे ये भी जरूर बताइएगा। जिनसे आपका रिश्ता हुआ है उनके लिए
1: कीमत पानी की नहीं प्यार की होती है।
0: क्या बात है,
1: कीमत पानी की नहीं प्यार की होती है।
0: बहुत बढ़िया।
1: नहीं सांस की होती है, कदर की नहीं सांस की होती है।
0: बहुत
1: प्यार लोग करते हैं दुनिया में, प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर हिम्मत प्यार की नहीं विश्वास की होती है।
0: क्या बात कही आपने, बिल्कुल एकदम सच बात बोली है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, मगर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसी विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे। और नवंबर में है शादी, कब है आपकी शादी? नवंबर में है। हाँ तो शादी का कार्ड ज़रूर आएगा फिर तो FM पे। तो चलिए हैं, पहली बार आपने कॉल करी है और आपको पहली बार ही इनविटेशन देना पड़ेगा भाई साहब की, भैया शादी में आओ और खूब मस्ती करके जाओ। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो आप इस गाने को, गाना बताइए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। शायरी तो इतनी अच्छी डेडिकेट करी है आपने। नहीं नहीं हम डेट नहीं पूछ रहे साहब, 22 नवंबर पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। अब आपने बता दिया है तो वेन्यू भी आपसे पता कर लेंगे, मगर अभी गाना बताइए कौन सा गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: मेरी जान प्यार जो क्या निभाना पड़ेगा।
0: क्या बात है, मतलब पहले ही बता रहे हो आप उन्हें कि भैया जो प्यार किया है उसे निभाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है आपको लगता है थोड़ा बहुत शादी का है। चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया। और इस गाने को ज़रूर आपकी तरफ से हम डेडिकेट करते हैं और उनके पास तक पहुँचे वो भी मुस्कुराएं। और ऐसे ही आप कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम हंसते खेलते प्यार निभाते रहे आप। ओके जी, तो साहब हमारे साथ जुड़े थे, कह रहे थे कि जो शादी उनकी होने वाली है ना भैया, हम आपको नहीं बुलाएंगे कार्ड पर, क्योंकि आपने इतना अभी सही हंसी मजाक कर दिया है, पता चला आपने वहाँ जाके और मेरी पोल खोल दी। कोई नहीं नहीं हम आपकी कोई पोल नहीं खोलेंगे शिवम जी, आप ऐसे ही एंजॉय करें, खूब मस्ती करें। और कहते हैं ना, जो भी आपने लास्ट में बोला था शायरी में अपने कि भाई कीमत प्यार की नहीं उसके विश्वास की होती, तो सच में उस विश्वास को आप बनाए रखें, यही एक विश्वास है जो आपको आगे तक लेके जाएगा, आपको भी और उनको भी। तब तक इस गाने को एंजॉय करें। और जी, और अगर कोई दिल की बात आपकी भी हो तो 9837896896 पे हम बात करेंगे। 10 बजने में अभी पूरे 10 मिनट हैं और आपकी कॉल ली जा सकती है, जो दिल की बात है ना वो बताई भी जा सकती है। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं और दिल की बात भी।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। रिश्ते वो नहीं जो हर रोज बात करें, रिश्ते वो हैं जो खामोशी भी समझे। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और पता ही नहीं चलता कब वो जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी बात है और प्यारा सा एक सवाल है जो आप अपने आप से भी करते हैं कभी कभी, कि हर इंसान के लिए है ये बात कि जिसके पास कोई ना कोई अपना होता है, अगर आपके जीवन में भी कौन सा ऐसा इंसान है जो एक फ़ोन कॉल पर आपका मूड ठीक कर सकता है, तो ये तो आप ही को पता होगा। नाम बताना ज़रूरी नहीं है, बस हमें ये भी बता सकते हैं कि कौन है, माँ है, पापा है, दोस्त है, भाई है, बहन है या फिर कोई ख़ास। तो कोई ना कोई आपके आसपास ज़रूर ऐसा होता है। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ अपने किसी पहचान के मोहताज नहीं होते, बस एक एहसास काफ़ी होता है कि कोई है जो हमारे साथ है। तो चलिए हमारे साथ भी एक हमारे लिसनर जुड़े हुए हैं, करते हैं उनसे बात। शो का अब होने वाला है टाइम, क्योंकि बज गए हैं 10 और जब है हमारे साथ कोई खास तो पूछते हैं क्या है उनके हाल चाल। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान शाहगुप्ता की पीछे नदी पे से मुरादाबाद से बोल रहे हैं। और हिंदुस्तानी का गाना सुनना है।
0: क्या बात है, आज तो आप बिल्कुल आप उफान पे हैं, मतलब जैसे नदी उफान पे होती है वैसे ही उस्मान जी आप भी उफान पर हैं। एकदम एकदम पूरी बातें बोल दी हैं आपने,
1: बस सब आपकी मेहरबानी है साहब। छोटा बहुत खुश रहते हैं आपसे, बढ़िया प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, बहुत बढ़िया अंदाज से।
0: मुझे लगता है आप ही अपनी कॉलोनी में सबसे शैतान बच्चे हैं जो साइकिलों में हवा निकाल देते हैं ना, जैसे ऐसे कभी चुपचाप किसी की साइकिल घर के बाहर खड़ी है, चुपचाप उसकी साइकिल की हवा निकाली और फिर जाते हुए देखते हैं खिड़की में से कि भाई वो अब हवा भरवाने आ रहा है या पहले थोड़ी सी चीख पुकार मचा रहा है। अच्छा आप बिल्कुल सीधे बच्चे थे एकदम, है एकदम बिल्कुल चुपचाप से एकदम दाढ़ी बनाई और गली से निकल लिए। तो उस्मान जी आज कोई शायरी सुनाएंगे आप?
1: जब तेरा लगता है जहाँ तेरे वजूद का इत्र होता है, घड़ियां इंतजार की मोहब्बत के हसीन पलों में कैद होना चाहती है, ख्वाहिशें बेकरार की तेरी बाहों में मदहोश होना चाहती है।
0: क्या बात है, क्या बात है, लगता है आपने पूरा एक गिलास पानी पी लिया है पहले शायरी बोलने से पहले। तभी इतनी बढ़िया सी मस्त सी शायरी करी है आपने एक बार में, इतनी अच्छी। लास्ट वाली लाइन तो और भी अच्छी थी, मदहोश होना चाहती है।
1: ये सब आपकी मेहरबानी है साहब, आप जरूर शायरी जरूर उगलवाने से होते
0: हैं। हम उगलवाते नहीं, हम निकलवाते हैं। हम तो बड़े प्यार से कहते हैं कि भाई दिल की बात है उसे निकालो बाहर, उगलवाना काम नहीं है हमारा। तो उस्मान जी बहुत अच्छा लगा आपने कॉल करी, और जो आप हंसते हंसते बात करते हैं ना, ये पूरा पता है कि हमें आप बिल्कुल दिल खोल के हंसते हैं, तो इसलिए कभी दिल खोलना नहीं पड़ेगा आपका।
1: मैंने कहा आप वॉइस वैसे जितने भी आप दिन में भी प्रोग्राम फरमाइशी करते हैं और रात को प्रोग्राम फरमाइशी करते हैं, श्रोताओं का मन जीत लेते हैं सब।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद। नहीं ये आप लोगों का प्यार है जो आप एकदम खुशमिजाज होके अपनी दिल की बात रखते हैं, हम चाहे दिन में हो चाहे शाम को हो आप भी पूरा अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, तो हमें और भी अच्छा लगता है।

0: हैं चलते चलते, नाम बता दीजिए आप।
1: अरे बस हम दो जने हैं, शाह गुप्ता और मोहम्मद उस्मान।
0: शाह गुप्ता?
1: आप लोग के साथ
0: शाह गुप्ता जी, कभी कभी गुस्सा नहीं होती कि ये क्या कभी कभी कोई सी शायरी बोल देते हो, किसके लिए बोल देते हो?
1: कैसे गुस्सा हो गए?
0: वो गुस्सा नहीं होती ना? ठीक है ठीक है, तो चलिए कम से कम उन्हें भी। नहीं, बहुत बढ़िया। आप उस्मान जी, आप ऐसे ही हंसते रहें और खूब मस्त रहें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो श्रोताओ, हमारे साथ जुड़े थे उस्मान जी, नदी के उफान के पास रहते हैं, नदी है इनके आसपास इनके घर के, और खूब मस्ती बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं जी, कभी कभी जो शायरी है ना इनकी, एकदम उल्टू शो का आती है, एकदम ऐसी बाउंसर आती है कि अगर आप समझ गए, आप खेल गए उसे, तो बस आपसे ही बड़ा कोई शायर थी। तो दोस्तों, अब एक घंटा कैसे निकल गया सच में पता ही नहीं चला। चलने से पहले हम एक मैसेज पढ़ना चाहेंगे जो हमारे लिसनर्स हैं वो मैसेज करते हैं हमें, कहते हैं कि सर हमारी भी बात कभी कभी रख ली तो ज़रूर आपकी बात क्यों नहीं रखी जाएगी। गुड इवनिंग अखिल सर, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका दिल से दिल तक शो गाड़ी चलाते चलाते सुन रहा हूँ, और सच कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। आप जब अच्छे अच्छे गाने प्ले करते हैं तो ड्राइव का मज़ा और भी बढ़ जाता है। धन्यवाद। और अखिल सर, जब आप अपना शो ख़त्म करके चले जाते हैं उसके बाद जो दो ढाई घंटे गाने बजते हैं ना, वो तो पूछिए मत। हर किस्म के गाने, नए भी और पुराने भी चलते हैं, उन गानों के साथ गाड़ी ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है और एक अच्छा सा फील होता है। तो ज़रूर आसिफ जी, ये जो आपने बात कही ना, गाड़ी चलाते समय अगर आपको अपने पसंद के गाने मिल जाए तो भाई साहब, उस गाड़ी में ना वो पेट्रोल वाली से ज़्यादा जान आपकी पड़ जाती है उसमें। अगर उसमें अब एक लीटर भी बचा होगा ना, तो आप उस एक लीटर से ज़्यादा ही डबल चला दोगे भाई साहब। अगर 15 किलोमीटर चल रही है तो 30 किलोमीटर पहुँचा दोगे, गाना बढ़िया चल रहे होते हैं। और हाँ अखिल सर, मेरी एक छोटी सी फरमाइश भी है, अगर मुमकिन हो तो शो के हिसाब से ठीक लगे तो मेरी इस फरमाइश को ज़रूर पूरा कीजिएगा। सर आपकी फरमाइश है, और जहाँ हमें लगता है ना शो के बीच में, हम उसे अपने हिसाब से अपने तरीके से हम उसे कर देते हैं प्ले, आपने सुन भी लिया होगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड पीसफुल स्लीप, मे टुमारो ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड ब्यूटीफुल मोमेंट्स, आसिफ फ्रॉम इटली। क्या बात है साहब, तो आसिफ जी आप इटली में खूब मस्त रहें, ऐसे ही ड्राइव करते रहें, जिंदगी भी और वो गाड़ी भी जिसे आप कितने मन से चलाते हैं। गाड़ी भी कहते हैं ना एक सेकेंड होम होता है, तो वो जो आपका सेकेंड होम है ना, वो खूब अच्छे से, मतलब एक एंजॉय की तरह जब भी आप चलाएं, तो एक सफ़र जो है हमेशा एक नए सफ़र की तरह रहे। तो अब श्रोताओं, हमारा चलने का हो गया है समय, चलते चलते जाने से पहले एक शायरी आप लोगों के लिए। कल की फिक्र में आज मत खो जाना, जो पल मिला है उसे मुस्कुरा कर बिताना, जिंदगी बहुत छोटी सी कहानी है, इसे शिकायतों में नहीं यादों में सजाना। तो मैं हूँ आपका अखिल, बस आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जहाँ प्यार मिले उसे संभालिए, जहाँ सम्मान मिले उसे अपनाइए, जहाँ खुशी मिले ना वहाँ थोड़ा सा रुक जाइए। यार हाँ, जब खुशी मिल रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा रुक जाना चाहिए, वहाँ पे उस खुशी को पूरा एंजॉय करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग, मैं फिर मिलूँगा नई बातें लेकर, नई शायरी लेकर, नई एनर्जी लेकर। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हाँ जी साहब, मंडे को मिलेंगे, आपकी भी कॉल का आएगा जवाब, खूब सारी करेंगे बातें, और मंडे को एक नया, एक कहते हैं ना, कुछ नया आपको मिलेगा सुनने को, तो उसको तैयार रहिएगा उस दिन बात करने के लिए भी, अपने लोगों के दिल के करीब भी रहिए साहब। गुड नाइट मुरादाबाद, हैव अ रॉकिंग फ्राइडे नाइट, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद, उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

समझे, अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अरे

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।